0: श्रोते हो नमस्कार, मी प्राध्यापक योगेश सोमण. आपण ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग.
1: इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की. वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने. ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में. कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में. कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की.

0: गेले रेडिओ मन भावन 90.8 एफएम ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, जरा सोचिए कि आपके घर में कोई चोर घुस आए, वह आपकी तिजोरी का ताला तोड़े, आपका सारा कीमती सामान सोना चांदी लूट ले और बड़े आराम से आपके सामने से निकल जाए। लेकिन कमाल की बात यह हो कि आप अपनी आँखों से सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी आप उस चोर को पकड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह चोर आपको दिखाई ही नहीं दे रहा, वह बिल्कुल अदृश्य है, उसका कोई रूप रंग या शरीर नहीं है। क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा ही निराकार और अदृश्य चोर आज हम सबके भीतर बैठा हुआ है? वह रोज हमारी सबसे कीमती पूंजी यानी हमारी शांति, हमारा आनंद और हमारा विवेक लूट रहा है, लेकिन हम उसे पकड़ना तो दूर, पहचान भी नहीं पा रहे हैं। कबीर साहब आज हमें इसी अदृश्य चोर का पता बताने आए हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह दार्शनिक सूत्र। तीन लोक चोरी भई, सबका सिर सर बस लीन। तीन लोक चोरी भई, सबका सर बस लीन। बिना मुंड का चोर वा, परा न काहू चिन्ह।

श्रोताओं, कबीर साहब ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहते हैं, तीन लोक चोरी भई। इस पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों में एक बहुत बड़ी चोरी हो गई है। सबका सर बस लीन, और उस चोर ने किसी एक को नहीं बल्कि संसार के सारे जीवों का सर्वस यानी सर्वस्व, उनकी आत्मिक पूंजी और होश को लूट लिया। यह चोर कौन है और कैसा दिखता है? अगली पंक्ति में कबीर एक अद्भुत पहेली बुझाते हैं। बिना मुंड का चोर हुआ, वह चोर इतना अजीब है कि उसका कोई मुंड यानी सिर या शरीर ही नहीं है। वह रूपहीन और निराकार है, प्राण काहु चिन्ह। और चूंकि उसका कोई भौतिक शरीर नहीं है, इसलिए काहु यानी कोई भी साधारण इंसान उसे चिन्ह नहीं पा रहा है, उसे पहचान नहीं पा रहा है। लोग बाहर की दुनिया में चोर ढूंढ रहे हैं, जबकि असली चोर भीतर छिपा बैठा है। यह दोहा माया और अहंकार के सूक्ष्म रूप की सबसे सटीक व्याख्या है। वेदांत दर्शन में माया को अनिर्वचनीय कहा गया है, यानी जिसका कोई ठोस अस्तित्व नहीं है, फिर भी वह पूरे संसार को नचा रही है। यह बिना मुंड का चोर हमारा वह भ्रमित मन और अहंकार है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारी चेतना पर पूरी तरह कब्जा करके बैठ जाता है। यह चोर हमें लगातार बाहरी संसार के प्रपंचों, लालच और ईर्ष्या में उलझाए रखता है और हमसे हमारी आत्म शांति छीन लेता है। कबीर समझा रहे हैं कि जब तक आप ज्ञान और होश का दीपक नहीं जलाते, तब तक इस बिना सिर वाले चोर को पकड़ा नहीं जा सकता। इसे पकड़ने का एकमात्र तरीका आत्मनिरीक्षण है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा शांत होकर अपने भीतर मची इस लूटपाट को देखिए। हमारे भीतर अचानक गुस्सा उठता है जब हमारे भीतर लालच या नफरत पैदा होती है, तो सोचिए कि हमारी शांति को किसने चुराया। वह यही अदृश्य चोरवा है जो हमारे ही भीतर से उठकर हमारी चेतना को लूट लेता है। आज कोशिश कीजिए इस भीतरी चोर को पहचानने की। सजग बनिए, अपने विचारों के प्रति जागृत रहिए। जैसे ही आप होश का पहला पहरा बढ़ाएंगे, यह बिना शरीर का चोर अपने आप विलीन हो जाएगा। अपनी चेतना को उस राम नाम के प्रकाश से भर दीजिए। अज्ञान का कोई चोर पैर भी नहीं रख सकता। जब आप इस भीतरी संपत्ति को सहेज लेंगे, तो आपका जीवन परम आनंद से भर जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो, 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम।

कृपा तथागता, तेरा ध्यास तेरा अभ्यास, गहरा बहुत गहरा तेरे शाश्वत अन्वेषण में रुकावट बने मानवीय विकार जैसे द्वेष, क्रोध, सब व्यवधान, मोह माया, काम वासना, सबकी डोर काट दी तुमने। कामावचार, रूपावचार, अरूपावचार, लोकोत्तर और पुनः पुनः तनकर खड़ा तू अनित्य की गवाही में। बा तथागता, शाक्य कोलियों की पानी समस्या का हल निकला यह आनंद वार्ता कलह समाप्ति की तूने सुनी, परंतु तेरी खोज यात्रा मात्र नहीं थम सकी। छे छे बिल्कुल नहीं, तूने चिंतन किया है, पुनः पुनः पुनः जुड़ गया तू इस कार्य में, नए सिरे से खोजा सत्य का मार्ग, शाश्वत तत्व ज्ञान प्राप्ति के आकलनार्थ। राजा बिंबिसार ने देखा तेरा रूप, कहने लगे नहीं है तेरा यह रूप परिव्राजक का, तेरे विलोभनीय तन की 32 लक्षण, वह अजानु बाहु, वह सुंदर दंत पंक्तियां और सुवर्ण कांति, एक वीर पुरुष सम्राट की। कहा उन्होंने छोड़ दे यह मार्ग, भौतिक सुख ऐशो आराम, बनेगी तेरे चरणों की दासी। उस पर हे तथागता, तूने दृढ़ता से दिया उत्तर, विश्व का कलह और दुख सामने अन्वेषणार्थ खड़े, ऐसी स्थिति में भौतिक सुख ऐशो आराम की चिंता किसे पड़ी है। राजा बिंबिसार अवाक हुआ, तेरी ज्ञान प्राप्ति के बाद मुझे मिल, ऐसा उसने कहा। परिव्राजक सिद्धार्थ भृगु ऋषि के आश्रम पहुंचे, पारंपरिक साधना पद्धति का अवलोकन किया, वैशाली के आलर कलामा के आश्रम तू पहुंचा, उद्धक राम पुत्ता से मिले, सांख्य तत्वज्ञान के निरीक्षण से गौतम की खोज यात्रा शुरू हुई। उन्होंने देखा समाधि मार्ग की शिक्षा, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, वैराग्य साधना का कठिन अभ्यास, शरीर को कष्ट पहुंचाया तूने, कांटों पर सुलाया खुद को, जाड़ों के दिन खुली ठंड हवा में, ग्रीष्म ऋतु की कड़ी धूप में, वर्षा ऋतु की धो धो बारिश में शरीर को तपाया, कष्ट पहुंचाया, परंतु ये सारे मार्ग देह को कष्ट पहुंचाने के, मन की वासनाओं पर विजय प्राप्ति में ज्ञान दुर्लभ। बा तथागता, तूने अपने विचार और तत्व ज्ञान की पुष्टि में अनेक ऋषि मुनियों से चर्चा की, जांच पड़ताल की, मंत्र तंत्र कर्मकांड, अंधश्रद्धा श्रद्धा का अंतर और भेदाभेद, निसर्ग में निहित विविध घटक और उनकी पूजा पद्धति की। सांख्य तत्वज्ञान का प्राचीन तत्ववेत्ता कपिल ने कहा, सत्य के अन्वेषण में प्रमाण चाहिए, तभी दृश्यमान होता है सत्य। उसके लिए अन्वेषण के दो मार्ग बताए हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुमान। शेष तो होते हैं कल्पना, कर्मकांड, अंधश्रद्धा की मार, ये मन के खेल, अपनी अपनी क्षमता के। ब्राह्मणे वेद उपनिषद तुझे ज्ञान साधना की दृष्टि से अनावश्यक लगे सारे, वेद का मंत्र और उपनिषद का तंत्र, और उपनिषद का तंत्र तुझे निरर्थक लगा। बा तथागता, तेरा समकालीन पूर्ण कश्यप क्रियावाद का पुरस्कर्ता कहता था, कर्म का आत्मा पर कोई परिणाम नहीं होता, हत्या करना करवाना, व्यभिचार करना करवाना, झूठ बोलना बुलवा लेना, इससे पाप नहीं लगता आत्मा को और पुण्य भी नहीं लगता, मृत्यु के बाद रहता ही नहीं कुछ शेष, ऐसा कथन।

0: बोलू।
1: तुमच्या प्रतिक्रिया कळवण्यासाठी या व्हॉट्सअप नंबरवर मेसेज किंवा कॉल करा। संपर्क क्रमांक 92 84 49 94 33। ऐकत रहा रेडिओ मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।

0: ओम शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। एक नई श्रृंखला के साथ इन दिनों हम आपके साथ हैं और हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स की, यानी कि मेरी खुशी कितनी बार दिन में ऊपर होती है कितनी बार नीचे। तो क्या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि मेरी जो हैप्पीनेस है या मेरा खुशी का जो क्वेश्चन है वो स्टेबल रहे, ये कैसे संभव है? इन्हीं सब बातों के बारे में आज फिर चर्चा शुरू करते हैं। हमारा सौभाग्य है हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जब खुशी की बात करते हैं तो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। हमने बहुत सी बातें की जो जीवन से जुड़ी थी, मेरी खुशी से जुड़ी थी। हमने ये देखा कि खुशी जब लोगों पर डिपेंड कर रही थी कि वो खुश होते हैं, चाहे वो मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरा बॉस है, तो मैं खुश हो रही थी। अगेन वो डिपेंडेंसी जो थी, और वो कहीं ना कहीं उनका खुश होना या ना होना मेरे किसी बात से मेरा अपना फेलियर बन रहा था, और मेरी अपनी जो खुशी थी वो छिन रही थी। और दूसरा, हमने जो पिछली कड़ी को देखा था उसमें बात की थी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की। दे वर एक्चुअली गिविंग मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस टिल द टाइम यू टोल्ड मी कि वो पर्टिकुलर चीज़ें खुशी नहीं दे रही, मैं खुशी का थॉट क्रिएट कर रही हूँ। यहीं पर हम बात थी, वंडरफुल। अभी यहाँ तक हम बात पहुँची थी कि वो थॉट मैंने क्रिएट किया कि ये मुझे मिल गया है तो मुझे खुशी हुई। लेकिन अभी तक बात ये हो रही थी, ज़्यादातर लोग जो हम जो सोचते हैं वो ये कि खुशी एक फीलिंग है, तो क्रिएट करना और नॉन क्रिएट करना थॉट कैसे होगा फिर? सो यहाँ से आज हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कि खुशी क्या है, एक फीलिंग है या एक थॉट है?
1: गुड वन। खुशी क्या है, एक फीलिंग है या एक थॉट है? खुशी ओब्वियसली एक फीलिंग है, इट इज़ एन एक्सपीरियंस दैट आई गो थ्रू। अब लेकिन ये फीलिंग क्रिएट करने के लिए सोर्स तो चाहिए ना। फीलिंग कहाँ से क्रिएट हो रही है? यस, इट्स अ फीलिंग। आई एक्सपीरियंस बहुत सारी फीलिंग्स सारा दिन के अंदर, कभी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, कभी आई एक्सपीरियंस पेन, कभी आई एक्सपीरियंस एंग्जाइटी। लेकिन ये फीलिंग्स किस आधार पर मैं अनुभव करती हूँ, इट इज बेस्ड ऑन उस पल मैंने कौन सा थॉट क्रिएट किया है।
0: ओके, आई सी अ फ्लावर, बहुत सुंदर एक फूल देखा मैंने।
1: इट डजंट गिव, इट गिव्स यू अ गुड फीलिंग, राइट?
0: इट गिव्स मी सो मच ऑफ अ, यू नो, लाइक सच नाइस फीलिंग।
1: पहले आप एक थॉट क्रिएट करते हो, कितनी ब्यूटीफुल फ्लावर है,
0: मुझे तो पता भी नहीं कि मैं करती हूँ।
1: अगर किसी को वो थॉट नहीं क्रिएट करेगा, अब वही फ्लावर आपको बहुत अच्छी फीलिंग दे रहा है। आई मे बी कि मैं उसको क्रॉस करके चले जाऊं और मेरे को कुछ लगे ही ना। फ्लावर तो वही है, मुझे उसने कोई फीलिंग नहीं दी, यू नो। आई मे जस्ट नॉट इवन रियलाइज कि यहाँ पर बहुत सुंदर फूल पड़े हुए हैं, एंड आई विल जस्ट क्रॉस एंड आई विल गो अवे, क्योंकि मैंने उस फ्लावर को देख कर रुक कर उसके ऊपर थॉट नहीं क्रिएट किया, तो फीलिंग नहीं जेनरेट हुई उसके बाद। आप रुके, कॉन्शियसली एक थॉट क्रिएट किया कि ब्यूटीफुल फ्लावर, बहुत अच्छा कलर, फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी है, या यू नो कितना व्हाटएवर जो जो
0: लेकिन थॉट्स क्रिएट कर बोलते हैं हम, एक बार फीलिंग आ जाती है उसके बाद हम बोलते हैं,
1: राइट? तो पहले थॉट क्रिएट किया,
0: अच्छा,
1: फिर फीलिंग। एक दिन उसको ऑब्जर्व करना, क्या होता है, प्रोसेस तो यही चल रहा है, हमें तब रियलाइज आता है आफ्टर इट कम्स आउट इनटू वर्ड्स, राइट? प्रोसेस तो वही चल रहा है। अब उसी टाइम जो हमने पिछली बार भी देखा, वही फ्लावर है, वो फ्लावर अभी तक उतना ही सुंदर है, आप भी उन फूलों के सामने ही बैठे हैं, आप थॉट क्रिएट कर रहे हो सच फ्लावर्स, यू आर फीलिंग गुड, उतनी देर में आके किसी ने कुछ कह दिया,
0: माई फोकस शिफ्ट्स,
1: माई थॉट चेंजेस, माई थॉट चेंजेस, मुझे ऐसा क्यों बोला, फीलिंग चेंज हो गई।
0: हाँ, इनफैक्ट उसके बाद में ध्यान ही नहीं खत्म हो गया, yes.
1: थॉट चेंज हो गई ना,
0: yes, मैं फ्लावर को देखते देखते भी मुझे कुछ और याद आ जाता है, तो वो फ्लावर खत्म ही हो जाता है।
1: आपके आंखों में आंसू आ सकते हैं, आपको ये याद आ सकता है कि आपके हस्बैंड पहले व्हेन यू वर गोइंग अराउंड ही यूज्ड टू बाय सच ब्यूटीफुल फ्लावर्स फॉर यू,
0: स्टार्ट क्राइंग, यस ऑफ कोर्स,
1: अब तो वो नहीं लेकर आते हैं, व्हाटएवर। तो फ्लावर तो वही है ना, उस फ्लावर को ही देख देख के आप कितने अलग अलग अलग तरह के थॉट्स क्रिएट कर सकते हो, और जिस क्वालिटी का थॉट क्रिएट करते जाओगे उसी तरह की फीलिंग एक्सपीरियंस होगी। फीलिंग मेरा एक्सपीरियंस है, लेट्स से आई से कनुप्रिया इज अ वंडरफुल पर्सन, तो मुझे कैसा फील होगा?
0: ओह वेरी गुड,
1: वेरी गुड। इफ आई से कनुप्रिया सच अ चीट, तो कैसा फीलिंग क्रिएट होगा? तो वो फीलिंग की क्वालिटी किस पर डिपेंडेंट है, जो थॉट क्रिएट की, आप वही हैं, वो फूल वही है, दुनिया वही है, मैं उसके प्रति जो संकल्प क्रिएट करूंगी, मेरी फीलिंग उस हिसाब से चेंज होती जाएगी. एंड दैट्स व्हाई हम सारा दिन, पूरी जीवन कैसा फील करना चाहते हैं वो किस पर डिपेंड करेगा?
0: मेरे थॉट पर. लेकिन प्रॉब्लम पता क्या हो रही है एक्चुअली, इफ यू आर सेइंग दैट, क्योंकि मेरे सामने ऑब्जेक्ट आता है और फीलिंग आ जाती है, वो बीच का थॉट दिखता नहीं है मुझे. जैसे गाड़ी आई तो मुझे फीलिंग आई, वाओ दिस, लाइक यू गेट दिस फीलिंग, दिस इज माय, यू नो, कार. यस, उससे पहले मैंने थॉट तो क्रिएट किया, दिस इज माय कार,
1: आई हैव अचीव्ड द कार, दिस इज माय कार. तो थॉट तो क्रिएट किया ना. फीलिंग डिफाइंड नहीं होती है. फीलिंग होती है फीलिंग वेरी गुड, फीलिंग पेन. थॉट बहुत स्ट्रक्चर्ड डिफाइंड होती है. मैंने गाड़ी खरीद ली या कुछ भी, या ये गाड़ी मेरे पास नहीं है, सबके पास है, तो आई फील पेन. या मैंने तो ये गाड़ी इतनी मुश्किल से खरीदी, अब मेरी सिस्टर ने जाके मेरे से भी बड़ी गाड़ी खरीद ली.
0: जेलसी, यस,
1: फीलिंग,
0: वो थॉट आती है वो जेलसी. ओह,
1: सो फीलिंग इज जेलसी. लेकिन वो क्रिएट करने के लिए थॉट कौन सी मैंने क्रिएट की? अब मेरी सिस्टर ने बड़ी गाड़ी खरीद ली, आई कुड ऑल्सो क्रिएट अ थॉट, हाउ नाइस, शी इज बॉट अ गुड कार, आई विल फील गुड,
0: अप्रिशिएट.
1: गाड़ी वही है, सिस्टर वही है, मैं किस क्वालिटी के थॉट क्रिएट करती हूँ उससे मुझे एक्सपीरियंस होगी फीलिंग, फीलिंग गुड और फीलिंग पेन, जेलसी, व्हाटएवर. फिर नाउ अब जो मैं फीलिंग क्रिएट करूंगी उसके बेसिस पे फिर मैं और थॉट्स क्रिएट करते
0: जाऊं. हाँ, और वो हम अवेयर हो जाते हैं. yes.
1: आप सारा दिन किस अवेयरनेस के साथ चल रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान रखते चाहिए. अब जैसे सपोज हमें पहले नहीं पता था, लेट्स से कि थॉट पहले आती है या फीलिंग, अब सपोज हमें पता चला, अब हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, लेकिन सारा दिन आज जैसे जैसे हम लोगों से मिलते हैं, जैसे जैसे हम मार्केट में जा रहे हैं, एक एक चीज़ देख रहे हैं, आप अगर न्यूज़ में देख रहे हैं कि कहीं किसी के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, कहीं किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है दुनिया में, कहीं एक बहुत इलाके में अकाल पड़ गया है, कहीं बाढ़, तो यू एक्सपीरियंस पेन. यू नो, हम एक्सपीरियंस करते हैं पेन. लेकिन पेन एक्सपीरियंस करने से पहले मैंने क्या किया? मैंने वो इन्फॉर्मेशन ली थी और उसके बेसिस पे थॉट क्रिएट किया था कि अब इन लोगों का क्या होगा, या इन लोगों के साथ ऐसा कैसे हो गया, या इनका अब फ्यूचर क्या है, व्हाटएवर. आई हैव क्रिएटेड अ थॉट एंड दैट बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट इज नाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग द फीलिंग.
0: बट अमेजिंग थिंग इज, सिस्टर शिवानी, वी डोंट इवन रिमेम्बर.
1: एक बार हम अपने अंदर के प्रोसेस को समझ लेते हैं, कुछ भी, सारा दिन, कल अगर आप अपनी रूटीन को देखें कि दिन कैसे शुरू होता है, लेट्स से अलार्म लगाया था, बजा, या आपने स्नूज पर लगा दिया, या जो भी उठे, फर्स्ट थॉट क्रिएट होती है, ओ माय गॉड, इट्स लेट. नाउ दिस इज वन थॉट. अब इसके बाद मेरा पूरा एनर्जी लेवल एक अलग हो जाता है. यू नो, अब टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, या अब जल्दी जल्दी बच्चों को उठाओ, या सो सारा, फिर एक सीरीज ऑफ थॉट्स उसके बाद क्रिएट होती है. इसलिए कहते हैं ना, आज का दिन अच्छा नहीं बीता, सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, तो वो किसी के चेहरे देखने की बात नहीं,
0: थॉट क्रिएट किया था.
1: क्या थॉट क्रिएट किया था?
0: ओके, अगर लेट भी हो गए तो हम क्या फोर्सफुली एक थॉट क्रिएट करें कि आज दिन अच्छा जाएगा, कोई बात नहीं, या कुछ नहीं होता?
1: क्या होता है अगर एक नेगेटिव थॉट क्रिएट किया
0: तो उसके बाद चेन. हाँ, वो तो मैं बता रही हूँ, फीलिंग आती, जैसे मैंने फीलिंग नोट की ना, वो थॉट तो फटाफट दिख जाता.
1: तो फिर उसके बाद आप सडनली फील करेंगे कि पूरे घर का एनर्जी लेवल एक केओस में जाने लगता है. फिर बच्चों को बिना बात के डांट देना, फिर बच्चों ने भी फिर ऊपर से रिएक्ट कर देना, फिर तो वो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्रिएट होता गया, जस्ट बिकॉज आई स्टार्टेड द डे विद अ रॉन्ग थॉट. तो इसलिए हम हमेशा ट्राई करते हैं कि सुबह उठकर जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मिनट तो अपने साथ बैठे एंड स्टार्ट द डे विद वेरी पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ थॉट्स, क्योंकि ये दिन की फाउंडेशन है, इसके ऊपर पूरा दिन बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. तो जैसे हम डे का टाइम टेबल बनाते हैं, उस तरह से अगर डे की शुरुआत का टाइम टेबल के थॉट्स कैसे क्रिएट करनी है, और वो करने से हमें अवेयरनेस भी आ जाती है कि आई क्रिएट माय थॉट्स,
0: वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है. यस,
1: आई क्रिएट, आई हैव द पावर एंड आई कैन चूज
0: एंड आई कैन एक्चुअली एनी टाइम चेंज देम आल्सो. You know, but then, अगर मैं सपोज लेट उठी हूँ तो तब भी मैं वो 5 मिनट अपने साथ जरूर दूँ.
1: एक्चुअली वो आपको हेल्प करेगा. एक्चुअली हेल्प करेगा. हम सोचते हैं कि 5 मिनट अब कहाँ से निकाले. फिर उससे क्या होता है, भले आप 5 मिनट नहीं निकालो, लेकिन आप सारा काम तो वही करोगे, लेकिन कैसे करोगे, और ये सब प्रोसेस करते करते एक्चुअली आपको ज्यादा टाइम लग रहा है अपना काम करने में. लेकिन अगर आप दो मिनट भी रुक जाओ, चलो आपके पास पांच मिनट नहीं है, एक मिनट तो है, एक मिनट कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है, एक मिनट थॉट क्रिएट करे, ठीक है आई एम लेट बट मैं इसका इफेक्ट अब नहीं क्रिएट करने वाली हूँ, सिचुएशन इज स्टिल इन माई कंट्रोल. क्यों? क्योंकि माई स्टेट ऑफ माइंड इज इन माई कंट्रोल. मैं स्टेबल रहकर अब अपने दिन की शुरुआत करूंगी. आई ओनली हैव टू क्रिएट दिस थॉट.
0: इट्स एक्चुअली इट्स अ कंप्लीट कन्वर्सेशन विद माईसेल्फ.
1: इट इज अ कन्वर्सेशन.
0: थॉट इज बेसिकली अ कन्वर्सेशन विद माईसेल्फ.
1: थॉट इज कि मैं अपनी प्रोग्रामिंग कर रही हूँ ना बार बार. मैं थॉट क्रिएट कर रही हूँ कि हाँ लेट हो गया है. But it's okay.
0: This is what I want to know. Ki what is my thought? It's like it's a conversation with my own self.
1: It is. I'm creating, na. तो वो सारा दिन आप सारा दिन भी देखो आपके thoughts क्या हैं. एक inner conversation ही तो चल रही है सारा दिन. ये बहुत बुरे हैं. इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था. ये बहुत अच्छे हैं. इनके पास जो है मैं. ये क्या हो रहा है अंदर? हम किससे बातें कर रहे हैं? Thoughts मतलब जो हम एक inner conversation ही चल रही है सारा दिन. तो अगर late हो भी गया है, वो एक loss हो गया है कि मेरा एक छोटा सा नुकसान हो गया सुबह सुबह कि मैं लेट हो गई. बट लेट दैट बी द लास्ट वन फॉर द डे. इसका इफेक्ट मेरे नेक्स्ट पर ना आए. तो एक मिनट रुक के सिर्फ कॉन्शियसली राइट थॉट क्रिएट कर दो उस टाइम. अगर हमने थॉट क्रिएट किया लेट हो गया अब तो सब कुछ गड़बड़ होने वाला है.
0: अब तो बहुत मुसीबत.
1: इट्स माई क्रिएशन.
0: No, another thing which I really like, you know, creating thought was something, you know, like very difficult, but conversation because हमें आदत है. See, conversation क्या हमें आदत है?
1: अब suppose आप सामने बैठे हो और मैं कहूँ लेट हो गया सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा अब. This is a conversation with yourself, with you. लेकिन I'm alone in the room and मैंने कहा लेट हो गया अब तो आज कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है. दिस इज अ कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ. यही मैं अपने साथ अच्छी वाली कन्वर्सेशन भी तो कर सकती हूँ.
0: कोई बात नहीं. इट्स ओके. सी आप अगर मैं लेट हुई होती या आप लेट हो जाए तो आपको मैं ये बोलती ना कोई बात नहीं. इट्स ओके. आई कैन डू इट विद माई सेल्फ.
1: आई कैन डू इट विद माई सेल्फ.
0: बट विल इट इफेक्ट?
1: इट विल चेंज योर डे. आपका पूरा दिन बदलेगा. जिस जिस क्वालिटी अगर आपने अपने आप को कह दिया अब तो सब कुछ गड़बड़ होने वाला है
0: तो गड़बड़ होता ही है. फिर
1: होता ही है क्योंकि आप पूरा एनर्जी लेवल ही आपने कहा अब तो सब गड़बड़ होने वाला है. अब तो क्या होगा आज बच्चे भी लेट हो जाएंगे. और थॉट्स का ये है कि एक जो क्वालिटी क्रिएट होती फिर वो सीरीज कंटिन्यू होती जाती है. एंड स्पेशली अगर नेगेटिव जो क्वालिटी क्रिएट होती ना हम अवेयर नहीं है वो बहुत फास्ट चलती है.
0: एक के बाद एक.
1: अब कुछ नहीं होगा. अब बच्चे उठेंगे कि नहीं बस तो नहीं आ जाएगी जल्दी करो ना.
0: वो फीलिंग ऑफ क्योस हो जाती है. अगेन आई एम सेइंग कि वो क्योंकि वो थॉट्स इतने फास्ट हैं कि उसके बारे में और फीलिंग जब हिट करती है तब हमें रियलाइज होता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है.
1: But by that time, we have already Crossed. drained ourselves of a lot of energy. And ये सिर्फ सुबह late उठने के लिए नहीं. ये आप कहीं भी try कर सकते हो कि suddenly office में कुछ ऊपर नीचे हो गया. आप देख रहे हैं कि लोग बहुत chaos में जा रहे हैं. Computer crash हो गया. उस पर कुछ बहुत data था. तुरंत just take that one minute and say, okay, this has happened. But I will take charge of what I have to do now. ये नहीं. मतलब आप कॉन्शियस होंगे कि आप कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट कर रहे हैं. जितना हम धीरे धीरे ये करेंगे हमें अवेयरनेस आएगी ये तो मैं क्रिएट करती हूँ. तो जो हम फर्स्ट चीज क्रिएट करते हैं अंदर वो थॉट होती है. और जो क्वालिटी की थॉट उसी क्वालिटी की फीलिंग. ये दोनों में कभी डिफरेंस नहीं आएगा. मतलब आप पॉजिटिव थॉट पॉजिटिव फीलिंग, नेगेटिव थॉट अ पेनफुल फीलिंग. ये कभी भी नहीं होगा कि पॉजिटिव थॉट एंड पेनफुल फीलिंग. ये तो मैच ही नहीं करता बिल्कुल.
0: So, जहां पे भी हमारी कोई फीलिंग नेगेटिव हो रही है हमें ढूंढना है कि वो थॉट क्या.
1: एब्सोल्युटली. सी यू गेट द क्रक्स ऑफ इट. अब क्या होगा बाहर परिवर्तन लाने की बजाय अगर मैं दर्द में हूँ. इवन अगर मुझे लगे कि आपने ऐसा किया इसलिए मैं दर्द में हूँ. आपने किया लेकिन मैं थॉट क्रिएट कर रही हूँ. तो अगर मुझे अपने दर्द से बाहर निकलना है मुझे सिर्फ धीरे से बैठकर प्यार से अपनी थॉट की क्वालिटी को चेंज करना है आपके प्रति. मैं आपके बारे में सोच रही हूँ. जैसे जैसे मैं अपनी क्वालिटी को चेंज करती हूँ.
0: कोई बात नहीं. उन्होंने कह भी दिया तो कुछ नहीं होता बिकॉज उन्होंने एक बार ऐसे भी तो कहा था. यू नो लाइक
1: सेल्फ काउंसलिंग.
0: या दिस इज अ फुल फ्लेज्ड कन्वर्सेशन.
1: एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली.
0: एंड आई जस्ट हैव टू डू दैट.
1: आई जस्ट हैव टू डू दैट. जैसे ही मैंने अपनी थॉट की क्वालिटी को चेंज करना शुरू किया
0: तो उसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा.
1: हाँ. और सारा दिन जो दर्द में जीते हैं उसका क्या हो रहा है.
0: यू नो लाइक अगेन. एंड कई बार ये भी कहते हैं कि अपने आप को धोखा नहीं दे रहे.
1: क्या धोखा तो नहीं दे रहे. अपनी क्वालिटी ऑफ थॉट्स को चेंज कर रहे हैं. सामने जो व्यक्ति है वो वैसा ही है. परिस्थिति वैसी ही है. मेरा उसके प्रति क्या परसेप्शन है उस हिसाब से आई विल क्रिएट द थॉट.
0: एंड अनदर थिंग इज कि वो हर व्यक्ति में पॉजिटिविटी तो है ही.
1: वो तो कोई
0: तो मेरे को उधर ने कितना भी धोखा दे दिया हो, कितना भी किया हो, इफ आई एम एबल टू यस
1: एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज नॉट अबाउट अदर पीपल
0: इट्स माय
1: इट्स मोर अबाउट हाउ आई वांट टू फील. अब मैं क्या सपोज अभी लेट्स लुक एट इट लाइक दैट कि सपोज मेरे आसपास सारे जो लोग हैं वो गंदे हैं, खराब है, यू नो लाइक वी से कि इनके तो सारे ही खराब हैं सारे, तो उनकी वजह से मैं दर्द में रहूं क्या सारी जीवन? I still have the control. I can create the right kind of thought if I want to feel good. Or सारे लोग भी मेरे साथ आस पास अच्छे होंगे लेकिन मेरी ही thinking अगर negative है तो मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगने वाला. लोग वही हैं. And actually तो लोग वही होते हैं जो हैं, with all their ups and their downs, their strengths and their weaknesses. लेकिन मेरा दृष्टिकोण मेरी thought को determine करेगा, फिर मेरी फीलिंग उससे जेनरेट होगी. एंड जैसी जैसी मेरी फीलिंग्स जेनरेट होंगी उन लोगों के प्रति, मेरा एटीट्यूड बनता जाएगा. ये तो है ही ऐसे.
0: वो एक पूरा पूरा का पूरा एक मैंने वो बना लिया, यू नो, एक यस आई कैन अंडरस्टैंड.
1: एक चेन बनती जाती है ना. ये है हमारा प्रोसेस, एक प्रोडक्ट का प्रोसेस जो अंदर चल रहा है सारा दिन. एंड समटाइम्स वी आर नॉट अवेयर कि ये प्रोसेस अंदर चल रहा है, कि मैं एक थॉट क्रिएट करती हूँ, एक संकल्प, उसके बेसिस पे फीलिंग्स मेरे अंदर जेनरेट होती हैं. एंड जो फीलिंग्स मैं किसी के भी प्रति या परिस्थिति के प्रति क्रिएट करती रहती हूँ,
0: एटीट्यूड. किसी ने मुझे एक बार पेन दी, फिर दूसरी
1: किसी
0: बार
1: ने मुझे
0: दी.
1: एक बार पेन नहीं दी,
0: अगेन मैंने क्रिएट किया.
1: मैंने नहीं, अगेन नहीं, बहुत डिफरेंस है दोनों चीजों में.
0: मतलब मुझे फीलिंग आई, ओके लेट्स टेक दिस,
1: यू नो दिस आवर वोकैबुलरी मेक्स ऑल द डिफरेंस. नाउ यू आर सेइंग किसी ने मुझे एक बार पेन दी, दो बार दी, किसी ने नहीं दी. मैंने एक बार पेन क्रिएट की,
0: ली भी नहीं, क्रिएट की. Oh yes, it's very important how I, you know, I have to understand.
1: This is also your conversation, na? ये आपकी conversation चल रही है. अगर आप बोलोगे किसी ने मेरे को एक बार पेन दी, दो बार दी, तो आप अपने आप को क्या कह रहे हो?
0: कोई और बाहर से ही देता है हमेशा मुझे. Yes.
1: Change your conversation. मैंने एक बार पेन क्रिएट की, इट्स ओके, आई एम क्रिएटिंग, लेकिन मुझे अवेयरनेस होगी. मैंने एक बार पेन क्रिएट की, दो बार की, तीन बार की, अब मेरा धीरे धीरे वो एटीट्यूड बन गया.
0: और उस व्यक्ति के प्रति, और वो फिर गुस्से का, हेट्रेड का, मतलब हर्ट का, जो भी चीजें हैं वो बनती है,
1: जो डिपेंडिंग ऑन मैंने उनके प्रति क्या सोच क्रिएट की, फिर मेरे अंदर जो फीलिंग जेनरेट की, फिर मैंने एटीट्यूड उनके बारे में बता दिया. वो तो जैसे हैं
0: वैसे ही हैं वो.
1: अब उसी इंसान को लेकर कोई और व्यक्ति बहुत अच्छी फीलिंग जेनरेट कर सकता है. वो व्यक्ति तो वही है. सपोज आप एक वही हैं, लेकिन आप ही को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग फीलिंग्स क्रिएट करते होंगे, और फिर अलग अलग लोगों का आपके प्रति अलग अलग वृत्ति या एटीट्यूड है. आप तो वही हैं, तो आप उनके अंदर घुस के नहीं क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपके बारे में जो सोच रही हूँ, अब मेरा एटीट्यूड आपके बारे में बन गया. तो थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड, और अब जैसे मेरा एटीट्यूड होगा वैसे फिर मैं आपसे बात करूंगी, वैसे मेरा व्यवहार होगा ऑटोमेटिकली. तो वो मेरा एक्शन में आया. मुझे दिखाई तब देता है जब एक्शन में आ जाता है.
0: मैं बोल देती हूँ यस.
1: जब मेरा एक्शन में आता है, जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं मैं हमेशा ही उनसे अच्छी तरह से बात करती हूँ. वो आज गुस्सा भी कर रहे होंगे ना, मैं फिर भी उनको समझूंगी, कोई बात नहीं ना. क्यों? क्योंकि मेरा एटीट्यूड उनके प्रति है ये बहुत अच्छे हैं. लेकिन अगर मेरा एटीट्यूड आपके प्रति है कि ये मुझे उतने पसंद नहीं है
0: और
1: या
0: आज अच्छे
1: नहीं होंगे
0: आपके लिए, तब भी मैं कहूंगी इसमें कुछ, यू नो लाइक
1: So my behavior will change. तो वो जो मेरा एक्शन है वो बेस्ड है मेरे एटीट्यूड पर जो मैंने आपके प्रति क्रिएट किया. तो हम जब एक दूसरे को या अपने आप को देखते तो हम एक्शन लेवल पर देखते हैं, वर्ड्स या कर्म पे. ये तीन प्रोसेस पहले ही अंदर हो गए होते हैं, थॉट, फीलिंग और एटीट्यूड. और कोई भी एक्शन बार बार जब रिपीट होता जाएगा तो वो बन जाएगा हमारे
0: Habit.
1: एक बार मैंने आपसे गुस्से से बात की, दूसरी बार गुस्से से बात की, चार बार की, अब मेरी आदत बन गई है गुस्से से बात करना.
0: आपके साथ तो करना ही, या जनरली भी बन जाएगी.
1: जनरली भी फिर वो जब एक के साथ बनेगी, आदत बन रही है ना,
0: तो वो सिचुएशन कभी भी आई तो मुझे गुस्सा ही आएगा.
1: और धीरे धीरे वो मेरी आदत बन रही है. अभी क्या हुआ, हमने ऑफिस में कहा कि गुस्से से ही काम कराना पड़ता है, एटीट्यूड है, गुस्से से ही काम होता है. तो मैंने गुस्से से बात की, गुस्से से बात की, काम होता गया. लेकिन वही आदत लेकर मैं घर जाती हूँ शाम को, तो फिर बच्चों से भी कैसे बात करूंगी?
0: गुस्से के बिना तो काम नहीं होता.
1: गुस्सा करेंगे ना तभी ये पढ़ेंगे, क्योंकि आदत बन गई है. तो आदत मेरे से सेपरेट होकर घर नहीं जाती है फिर. फिर वो मेरा आदत मेरा पैकेज है, मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है. ओ, मेरे साथ हर जगह जाएगी.
0: तो मैं ही खराब होगी फिर, इन द सेंस मैंने अपने लिए गलत कर लिया.
1: सबसे देख ले,
0: इट वॉज आदत मेरी उस पर्टिकुलर व्यक्ति या सिचुएशन के लिए नहीं रह गई. इट इज लाइक माई पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी.
1: दिस इज माई पर्सनैलिटी. अब मेरी जो सारी आदतें पुट टूगेदर इज माई पर्सनैलिटी. इट्स माई पर्सनैलिटी. तो मेरी पर्सनैलिटी कहाँ से बनी? जो मैं एक एक थॉट क्रिएट करती
0: हूँ. ओहो, तो गलती तो उनकी थी, पर्सनैलिटी मेरी खराब हुई.
1: गलती उनकी थी, लेकिन मैंने थॉट किस क्वालिटी की क्रिएट की?
0: वो मैं, ओके.
1: See, again,
0: वो कुछ भी करते रहे,
1: मैं जो थॉट क्रिएट करता हूँ वो मेरी पर्सनालिटी बनती है. जिस दिन मुझे ये रियलाइज हो गया तो मेरा सारा अटेंशन किस पर चला जाएगा?
0: जो मैं थॉट क्रिएट कर रहा हूँ. ऑफ कोर्स
1: हम कर क्या रहे हैं, दूसरे की पर्सनालिटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन दूसरे की पर्सनालिटी को क्रिटिसाइज करते करते
0: अपनी पर्सनालिटी खराब हो गई है. तो
1: क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होती गई ना.
0: तो वो तो मैं जो एक विक्टिम बन रहा था, तो मैं एक्चुअली विक्टिम बन गया, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनालिटी को ही खराब कर
1: दिया. इमोशनल अब्यूज ये हुआ ना सारा. तो मेरी पूरी पर्सनालिटी अंदर कमजोर हो गई. कमजोरियां देखते देखते देखते देखते, औरों के ऊपर ब्लेम करते करते करते अपना पावर खत्म हो गई. ये मेरी पर्सनालिटी बन गई.
0: यस,
1: स्टार्टेड विद माई thoughts.
0: And which was justified, you know, my feeling at that time.
1: Now the last stage, which is even more important, कि जो आपकी personality बन गई, उसी तरह से तो आप interact करोंगे लोगों के साथ. वही energy तो आप बाहर दुनिया में भेजेंगे, और वैसे ही फिर outcome आपके साथ होते जाएंगे. अगर आप sensitive personality हैं, तो आपके साथ फिर जो होता जाएगा, वो भी किस basis पर होगा?
0: कि आप कैसे हो? हाँ.
1: So जिसको हम कहेंगे, जो कर्म आप करेंगे, उसी का रिटर्न आपको मिलेगा. मतलब जो आपकी क्वालिटी ऑफ पर्सनालिटी है, दैट विल देन क्रिएट योर डेस्टिनी. क्योंकि जो आप फिर सेंड आउट करेंगे, उसी का रिटर्न आपको मिलेगा. तो डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी है कि मेरे साथ जो होता जाता है, हाँ, उसी को हम डेस्टिनी कहते हैं.
0: मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है?
1: हाँ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? मेरे साथ ये, मेरे भाग्य में है, तो ये मेरी डेस्टिनी है. लेकिन हम आज दिन तक एक स्लीपिंग मोड में जो चल रहे थे, कि वो कि मेरी डेस्टिनी कहीं और लिखी जा रही है, कोई और लिख रहा है. लेकिन मेरी डेस्टिनी तो हर स्टेप पे मैं क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि जो कर्म मैं करती, उसी का फल मुझे मिलता. जब फल मिलता तो हम कहते हैं ये मेरी डेस्टिनी है, ये मेरा भाग्य है. लेकिन दैट इज ओनली अ रिजल्ट ऑफ
0: माय
1: जो मैंने भेजा है बाहर.
0: ओ, सो मतलब जैसी मेरी पर्सनालिटी है, वैसा ही मुझे मेरी डेस्टिनी हो जाएगी.
1: डेस्टिनी मेरी कहाँ से शुरू हुई? फिर
0: कहीं ना कहीं पर्सनालिटी मेरी अलग थी और डेस्टिनी मेरी कुछ और होती थी एक्चुअली.
1: हाँ, जैसे कि
0: मतलब प्रोफेशनली मुझे कहाँ कहाँ मिलेगा. हम भाग्य की जहाँ बात करते हैं, वो हम कुछ और बातें करने लग जाते हैं. लेकिन मेरी पर्सनालिटी जो है वो तो अगेन यू नो लाइक आई यूजुअली
1: यू नीड टू थिंक. वी कुड प्रोबब्ली डिस्कस ऑन दिस लॉन्गर, बट जस्ट टर्न ऑन इट. इसको आप सोचते जाओ कि जब हमने एक बार एक लॉ तो हमें समझ में आ गया कि जो कर्म हम करेंगे उसी का फल हमें मिलेगा. कर्म अब हमें समझ में आया हमारी सोच से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनैलिटी, जो करेंगे उसी का फल मिलेगा. डेस्टिनी मीन्स जो फल मिल रहा है. इट कुड बी ऑफ द कर्म जो मैंने आज किया, इट कुड बी ऑफ बहुत पहले का, लेकिन मिल वो ही रहा है
0: जो मैंने किया हुआ.
1: जो मैंने किया है, राइट? जब वो मिलता है, तुरंत नहीं पता चलता कि ये जो मैंने अभी अभी किया था उसी का मिल रहा है. लेकिन अगर ये मुझे क्लियर है कि जो मिल रहा है इट्स ओनली अ रिजल्ट ऑफ जो मैंने बाहर भेजा था, तो आई अंडरस्टैंड कि मेरी डेस्टिनी कौन क्रिएट कर रहा है. मैं क्रिएट कर रहा हूँ. और कर्म मैं किस क्वालिटी का क्रिएट कर रहा हूँ? जिस क्वालिटी की मेरी थॉट है.
0: थॉट है. तो अगेन एक डिस्क्रिपेंसी अभी है जिसमें हम डिस्कस करना बाकी है, वो हम करेंगे कि पर्सनालिटी जो मैं हूँ, जो मेरा एटीट्यूड है, जो मेरी हैबिट्स हैं, जो मेरी पर्सनालिटी है, वो मेरी डेस्टिनी कैसे क्रिएट करती है, इसको अभी हम करेंगे. लेकिन उससे पहले का आई थिंक आई एम प्रीटी क्लियर, आई थिंक लोग भी क्लियर हैं. तो ये कि जहाँ मुझे फीलिंग आई, चलिए हम अभी थॉट पे जाते भी नहीं, मुझे फीलिंग आई, उससे पीछे अगर मैं जाके देखती हूँ कि वो कौन सा थॉट था जिसने मुझे वो फीलिंग क्रिएट की, तो मेरा वो थॉट मेरे सामने आ जाएगा.
1: एक चीज करेक्ट करो, फीलिंग आई नहीं, अभी ऐसा
0: फीलिंग. हाँ,
1: फीलिंग आई.
0: फीलिंग जो यहाँ से आई, जो फीलिंग यहाँ से आई. अच्छा, फॉरगेट अबाउट यहाँ से आई या यहाँ से.
1: नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट.
0: देयर इज अ फीलिंग. आई एम फीलिंग. आई एम फीलिंग बैड. आई एम फीलिंग गुड.
1: इट्स एन एक्सपीरियंस.
0: यस, यू नो. सो वो जो अनुभव है, वो हम सब अनुभव कर रहे हैं. हम हर्ट का, हम जेलसी का, हम हैप्पीनेस का, हम एक्साइटमेंट का, सबका अनुभव कर रहे हैं. वो अनुभव आते ही हम रुक जाएं और हम उस थॉट के पास जाएं कि किसने वो थॉट क्रिएट किया. वो थॉट मेरी फीलिंग के साथ जुड़ा और फिर वो एटीट्यूड बना, दैट वी कैन एक्चुअली सी, दिस कैन बी, दिस इज विजिबल, चाहे वो मेरे बॉस के साथ था, मेरे बच्चों के साथ था, मेरे हस्बैंड के साथ था, किसी के साथ भी था, वो एटीट्यूड मेरे साथ रहा, मेरे हर बार में, हर इंटरेक्शन में भी रहा,
1: तो एक्शन में आ गया ना,
0: हाँ
1: एक्शन में,
0: हर इंटरेक्शन में उनके साथ आते ही मेरा वो एटीट्यूड, चाहे वो गुस्से का था, प्यार का था, यू नो इमोशनल का था, हर्ट का था, जेलसी का था, वो इंटरेक्शन में आ जाएगा, दैट बिकम्स माई कर्म,
1: फिर हाँ वो तो एक्शन में आ गया, एंड वही एक्शन बार बार करने से हैबिट बन गई,
0: और वो हैबिट सिर्फ उसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ नहीं रह गई, वो मेरी एक्चुअली दिस इज अमेजिंग, यू नो कि ये मेरी पूरी सबके साथ इंटरेक्शन में ऐसा होने लग गया,
1: नेचुरल है ना, मेरी आदत बन जाएगी उस,
0: क्योंकि वो एंगर मैंने एक के साथ किया तो वो हर बार सिचुएशन आती है, मुझे आदत यही हो गई कि इसी को सॉल्व ऐसे ही करना है, सो इट बिकम्स माई हैबिट,
1: राइट,
0: एंड देन माई हैबिट ऑफ कोर्स इज माई पर्सनैलिटी कंसोलिडेटेड, लाइक सारी जो हैबिट्स को मिला लेती हूँ, वो ये तो पता है हमें कि वो पर्सनैलिटी जो है मीन्स व्हाट आर माई हैबिट्स, यू नो हाउ आई हैंडल एवरी सिचुएशन इज माई पर्सनैलिटी, बट how my personality actually becomes or writes my destiny is what I need to explore. Lekin usse pehle ye jo puri cycle humne dekhi hai, aur thought, feeling, attitude and then habit and then personality, ye jo chhe cheeze hamare samne aayi, teen andar teen bahar, you know, inke upar hum kaam kar sakte hain. Thank you so much, it's amazing, you know,
1: because
0: yes, we have been talking about it, but then to really, you know, go deep into it and try to understand meri practical life mein, meri practical situation mein kahan kahan ye cheez aayi. Om Shanti.
1: Om Shanti.
0: कोई बात, कोई सवाल आपके पास है, खुला मंच है, खुलकर बात कर सकते हैं, आप हमें फोन करिए या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं. हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555. हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org. Awakening with Brahma Kumaris में इन दिनों हैप्पीनेस इंडेक्स को हम देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर मेरी हैप्पीनेस डिपेंड कर रही थी और कैसे मैं उस डिपेंडेंसी को वापस लेकर अपने हाथ में ले सकता हूँ. बहुत सी बातें अभी बाकी करनी है. मेरी पर्सनैलिटी जो कई चीजों से बनी है, कई प्रोसेस से गुजरी है, वो पर्सनैलिटी कैसे मेरा भाग्य लिखती है, कैसे मैं अपना भाग्य खुद लिख सकता हूँ, इस पर बातचीत करेंगे आने वाली कड़ी में. आपका साथ इंतजार करेंगे और अभी आपसे विदा लेते हैं. ओम शांति.

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है मोहन किशोर नामदास। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा और महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

भारतीय ज्ञान परंपरा के आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र उदित हुए हैं जिनका प्रकाश समय की सीमाओं को लांघकर पीढ़ियों का मार्ग आलोकित करता रहा है। आयुर्वेद के पुनरुत्थान से जुड़े एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति। जब परंपरा और आधुनिकता के बीच संवाद की आवश्यकता थी, तब उन्होंने आयुर्वेद की सनातन चेतना को नए युग की धड़कनों से जोड़ा। उनके लिए आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं थी, बल्कि वो आयुर्वेद को भारतीय संस्कृति की जीवंत आत्मा मानते थे। उसे जीवन को संतुलन, स्वास्थ्य और समरसता प्रदान करने वाली एक संपूर्ण दृष्टि मानते थे। ज्ञान उनकी साधना था, सेवा उनका धर्म और आयुर्वेद का उत्थान उनका संकल्प। वो आधुनिक भारत में आयुर्वेद चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सबसे प्रमुख प्रणेताओं में से एक थे। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति का जन्म 3 मार्च सन 1880 को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के माधोवरम गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अचंता रमैया था। परिवार के आध्यात्मिक वातावरण ने उनके व्यक्तित्व की नींव रखी। पिता की प्रेरणा से ही उन्होंने वेद पुराण और संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। उनके बाल्यकाल पर उनके दादा सुब्बा रायडू और प्रसिद्ध समाज सुधारक कुंदुकुरी वीरेश लिंगम का गहरा प्रभाव पड़ा। इन दोनों विभूतियों के सानिध्य ने उनके भीतर ज्ञान और समाज सेवा के बीज बोए। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उनकी माताजी गंभीर रूप से बीमार हुईं। उपचार के दौरान अचंता लक्ष्मीपति की भेंट राजमहेंद्रम के एक प्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर सीतारमैया से हुई। ये केवल एक वैद्य से भेंट नहीं थी, बल्कि आयुर्वेद से उनका पहला सटीक परिचय था। डॉक्टर सीतारमैया ने उन्हें आयुर्वेद के व्यावहारिक सूत्रों से परिचित करवाया और उनके मन में इस भारतीय चिकित्सा परंपरा के प्रति आदर भाव जागृत किया। इस तरह भारत की इस अमूल्य विरासत को नई प्रतिष्ठा दिलवाने का संकल्प उनके मन में जागा।

ये वो समय था जब भारत में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा था। अचंता लक्ष्मीपति ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को समझने का निश्चय किया। सन 1904 में उन्होंने बीए की शिक्षा पूरी की तथा छात्रवृत्ति प्राप्त कर मद्रास मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। इस तरह सन 1909 में उन्होंने एलोपैथी चिकित्सा में प्रामाणिक डिग्री हासिल की। सन 1910 में उन्होंने मद्रास में अपनी प्रैक्टिस शुरू की और वो वेंकटगिरी के राजा जैसे संभ्रांत वर्ग के पारिवारिक चिकित्सक बने। लेकिन सन 1914 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित किया गया, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद को गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति घोषित करना था। इसके विरोध में डॉक्टर लक्ष्मीपति ने अपना नाम एलोपैथी के मेडिकल रजिस्टर में दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार के इस कदम को उन्होंने केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं माना, उन्होंने इसे भारतीय ज्ञान परंपरा के सम्मान का प्रश्न समझा। ये उनके पेशेवर जीवन के लिए जोखिमपूर्ण समय था, लेकिन इसी समय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का प्रवेश हुआ, वैद्य रत्न पंडित देवी गोपाल चारलू। वो मद्रास के सुप्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान थे जिन्होंने अचंता लक्ष्मीपति की प्रतिभा को पहचाना तथा अपने संरक्षण में उन्हें आयुर्वेद के गहन अध्ययन का अवसर दिया। सन 1914 से 1919 तक अचंता लक्ष्मीपति ने उनसे गहन ज्ञान प्राप्त किया। सन 1919 में विश्व स्पेनिश फ्लू नामक घातक महामारी की चपेट में आ गया। इस महामारी ने दुनिया की एक तिहाई आबादी को अपनी चपेट में ले लिया था। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ये महामारी फैली थी। ऐसे कठिन समय में डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से हजारों रोगियों को राहत पहुंचाई। इस अनुभव ने उनके इस विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता है। इसके बाद उन्होंने एलोपैथी इलाज पूरी तरह से छोड़ दिया और स्वयं को आयुर्वेद के लिए समर्पित कर दिया। सन 1920 में उनके गुरु वैद्य रत्न पंडित देवी गोपाल चारलू का निधन हो गया और गुरु का दायित्व शिष्य के कंधों पर आ गया। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को मद्रास आयुर्वेदिक कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। सन 1920 से 1928 तक उन्होंने इस संस्था को केवल एक शिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि उसे आयुर्वेदिक चेतना का केंद्र बिंदु बना दिया। इस कॉलेज को चलाने के लिए मुंगला के राजा ने भी बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति स्वास्थ्य को जीवन पद्धति का विषय मानते थे। यही कारण है कि उन्होंने सन 1926 में मद्रास के पास स्थित आवड़ी में आरोग्य आश्रम समिति की स्थापना की। ये केवल एक आश्रम नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य और प्रकृति के समन्वय का प्रयोग था। एक ऐसा स्वास्थ्य ग्राम जहां उपचार के साथ साथ जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने युवा वैज्ञानिक डॉक्टर यल्ला प्रगदा सुब्बाराव की प्रतिभा को पहचान कर उनके प्रारंभिक शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया और उनकी उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्हें चमत्कारिक औषधियों का जनक माना जाता है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति पर रमण महर्षि के आध्यात्मिक विचारों का गहरा प्रभाव था, जिन्होंने उनके चिंतन और विचारधारा को एक सार्थक दिशा प्रदान की। वो गांधी जी के विचारों से भी अत्यधिक प्रभावित थे तथा स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।

सन 1933 में डॉक्टर अजंता लक्ष्मीपति की सेवाओं और नेतृत्व क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई। बीकानेर में आयोजित ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे देश में फैल रही थी। लोग उन्हें केवल एक चिकित्सक के रूप में नहीं बल्कि आयुर्वेद का पुनरुत्थान करने वाले मनीषी के रूप में देख रहे थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी यात्रा अभी शेष थी, एक यात्रा जो उन्हें गांधी जी के और निकट ले गई, एक यात्रा जिसने गांव गांव जाकर स्वास्थ्य संदेश पहुंचाया। सन 1938 का साल भारत की स्वाधीनता के स्वप्न से आंदोलित साल था। महात्मा गांधी ग्रामोदय और स्वावलंबन के विचार को जन जन तक पहुंचा रहे थे। इसी समय डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने एक अभिनव अभियान आरंभ किया जिसका नाम था आरोग्य यात्रा। वो लगभग 100 चिकित्सकों के साथ पैदल चलते हुए गांव गांव पहुंचे। उन्होंने लोगों को स्वच्छता, संतुलित जीवन शैली और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सिद्धांतों का महत्व समझाया। वो पंच शुद्धि प्रणालिका के 5 नियमों का संदेश लिए आगे बढ़ते रहे। अपने इस अभियान में उन्होंने प्रत्येक गांव में कम से कम 1 एकड़ भूमि पर औषधीय पौधों का उद्यान विकसित करने हेतु लोगों को प्रेरित किया। उनका मानना था कि स्वास्थ्य अस्पतालों से नहीं बनता, वो विकसित होता है स्वच्छ विचारों, संतुलित आहार और प्रकृति के सानिध्य में। डॉक्टर लक्ष्मीपति के इन प्रयासों से गांधी जी अत्यंत प्रभावित हुए। सन 1939 में गांधी जी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सेवाग्राम आश्रम आने का निमंत्रण दिया। वर्धा का सेवाग्राम आश्रम उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था। सेवाग्राम पहुंचकर उन्होंने केवल एक चिकित्सक की भूमिका नहीं निभाई बल्कि उन्होंने स्वास्थ्य और ग्राम विकास के गांधीवादी स्वप्न को मूर्त रूप देने में सहयोग दिया। गांधी जी ने उन्हें आश्रम में एक विशाल उद्यान विकसित करने का दायित्व सौंपा। इस उद्यान का उद्देश्य केवल औषधियां उगाना नहीं था बल्कि ये सिद्ध करना था कि भारत के गांव अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मीपति की धर्मपत्नी श्रीमती रुक्मिणी लक्ष्मीपति भी राष्ट्र सेवा को समर्पित रहीं। वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं और सन 1946 में मद्रास प्रांत की सरकार में वो सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बनी। इस तरह पति पत्नी ने साथ मिलकर भारतीय चिकित्सा के विकास की एक नई धारा प्रवाहित की। सन 1947 में भारत की आजादी के बाद भी वो राष्ट्र सेवा को समर्पित रहे। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर वो समाज सुधार के कार्य में भी निरंतर संलग्न रहे। डॉक्टर लक्ष्मीपति अंतरजातीय विवाह के प्रबल पक्षधर थे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपनी जाति से बाहर एक गैर ब्राह्मण युवक से किया। इसके साथ ही वो पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के भी पक्षधर थे। सन 1960 में भारत सरकार ने उन्हें योजना आयोग में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया जहां उन्होंने रोग प्रतिरोधक चिकित्सा और जीवन शैली सुधार पर विशेष बल दिया। उन्होंने तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में चिकित्सा पद्धतियों पर लगभग 100 पुस्तकें लिखीं, जिनमें से 63 पुस्तकें विशुद्ध रूप से भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और आयुर्वेद के अनुवादों पर आधारित थीं। उनकी आत्मकथा आयुर्वेद के पुनरुत्थान का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को देश भर में भिषग रत्न, प्राणाचार्य तथा आयुर्वेद वाचस्पति जैसी कई उपाधियों से विभूषित किया गया था। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 6 अगस्त सन 1962 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है लक्ष्मण प्रसाद दुबे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, जबलपुर से वृंदा हिंगनीकर और उज्जैन से संजीव जैन। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारतीय स्वाधीनता का इतिहास ऐसे अनेक राष्ट्रभक्तों की कहानी कहता है जो समय की प्रचंड आंधियों के बीच दीप नहीं दिशा बनकर उभरे। भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले एक ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे गणेश घोष। उनकी यात्रा उस नदी की तरह थी जो चट्टानों से टकरा कर भी अपना मार्ग बनाना जानती है। उनका संकल्प उस अग्नि की तरह था जो स्वयं तप कर भी अपने आसपास उजाला बिखेरती है। गणेश घोष का जन्म 22 जून सन 1900 को अविभाजित भारत के जैसोर नामक स्थान पर हुआ था जो बांग्लादेश के खुलना जिले के पास स्थित है। उनके पिता का नाम विनोद बिहारी घोष था। गणेश घोष बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे तथा अपने आसपास की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति देखकर बहुत अधिक उद्वेलित हुआ करते थे। उनकी शिक्षा आगे बढ़ती रही और आरंभ में उन्होंने ब्रिटिश रेलवे में काम भी किया, लेकिन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसी दौरान कोलकाता के बंगाल तकनीकी संस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए उन्होंने चिटगांव में एक स्वदेशी कपड़े की दुकान भी खोली थी। उन्होंने जो मैकेनिकल और तकनीकी कौशल की शिक्षा ग्रहण की थी वो शिक्षा केवल आजीविका के लिए नहीं थी, बल्कि इस कौशल का प्रयोग वो देश को आजाद कराने के लिए हथियार और बम बनाने के लिए भी करने का विचार करने लगे। भारत की आजादी उनकी आंखों का पहला सपना था। अंग्रेजों की गुलामी से वो अत्यधिक आक्रोशित रहा करते थे तथा मन ही मन क्रांति पथ पर चलने का उन्होंने संकल्प ले लिया। उन्हें विश्वास था कि भारत बहुत जल्द आजाद होगा।

कलकत्ता में पढ़ाई के दौरान ही गणेश घोष बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन युगांतर के संपर्क में आ गए थे। वो बहुत जल्द इस संगठन के सक्रिय सदस्य बन गए। चटगांव में रहते हुए ही उनकी भेंट मास्टर सूर्यसेन से हो चुकी थी। सूर्यसेन की सादगी और दृढ़ संकल्प से वो अत्यधिक प्रभावित हुए और उनके सहयोगी बन गए। बहुत जल्द चटगांव में क्रांतिकारियों का समूह बना, जिसमें सूर्यसेन के साथ गणेश घोष, अनंत सिंह और लोकेन बल शामिल थे। इन्हें चटगांव में क्रांतिकारियों की त्रिमूर्ति कहा जाता था। गणेश घोष ने चटगांव के युवाओं को व्यायाम शालाओं के माध्यम से संगठित करना शुरू किया। वो युवाओं को शारीरिक रूप से

चिंगारी भड़काना। इस तरह इस क्रांतिकारी संगठन ने मजबूत आकार ले लिया। सन 1930 आते आते चटगांव की धरती पर एक बड़ी योजना आकार लेने लगी और इसके सूत्रधार थे मास्टर सूर्यसेन, गणेश घोष और अनंत सिंह। इन्होंने निश्चय किया कि अंग्रेजी शासन को सीधे चुनौती दी जाए। योजना बनी कि चटगांव के दोनों शस्त्रागारों पर कब्जा कर लिया जाए, संचार व्यवस्था को ठप्प कर दिया जाए, रेलवे संपर्क काट दिया जाए ताकि ब्रिटिश सेना की सहायता वहां तक न पहुंच सके। 18 अप्रैल सन 1930 गुड फ्राइडे का दिन था। रात करीब 10 बजे भारतीय रिपब्लिकन आर्मी की वर्दी पहने क्रांतिकारियों ने हमला बोल दिया। गणेश घोष ने पुलिस शस्त्रागार पर हमला करने वाले दस्ते का नेतृत्व किया। उन्होंने बड़े ही साहस और चतुराई से वहां मौजूद पहरेदारों को निष्क्रिय कर दिया तथा भारी मात्रा में बंदूकें और मस्कट जब्त कर लिया। उधर अनंत सिंह के समूह ने सहायक बल शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। शस्त्रागार पर पूरी तरह कब्जा करने के बाद सभी क्रांतिकारी पुलिस शस्त्रागार के बाहर इकट्ठा हो गए। वहां मास्टर सूर्यसेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, सैन्य सलामी दी गई और अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा कर दी गई। गणेश घोष इस नवगठित क्रांतिकारी व्यवस्था में महत्वपूर्ण दायित्वों के साथ संलग्न हुए, लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कुछ ही दिनों में ब्रिटिश सेना ने चटगांव को चारों ओर से घेर लिया। परिस्थिति देखकर क्रांतिकारी दल जलालाबाद की पहाड़ियों की ओर बढ़ चला।

22 अप्रैल सन 1930 को ब्रिटिश सेना ने जलालाबाद की पहाड़ियों को घेरकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस युद्ध में गणेश घोष ने युवाओं का ऐसा हौसला बढ़ाया कि क्रांतिकारियों की सटीक फायरिंग के सामने ब्रिटिश सेना टिक नहीं पाई, उसे पीछे लौटना पड़ा। इसके बाद मास्टर सूर्यसेन ने क्रांतिकारियों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर गांवों में छिपने का आदेश दिया। गणेश घोष, अनंत सिंह, लोकेन बल और आनंद गुप्ता हुगली जिले के चंदन नगर में पहुंचे, जो उस समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, इसलिए ये स्थान ब्रिटिश पुलिस के सीधे अधिकार क्षेत्र से बाहर था। यहां क्रांतिकारी सुहासिनी गांगुली और शशधर आचार्य ने पति पत्नी होने का नाटक कर एक घर किराए पर ले लिया, जहां गणेश घोष और उनके साथी छिपे हुए थे। ब्रिटिश खुफिया विभाग को इस ठिकाने का पता चल गया। पुलिस ने इसे घेरकर भयंकर गोलाबारी शुरू की। इस मुठभेड़ में गणेश घोष के साथी मखनलाल घोष शहीद हो गए और गणेश घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। अपनी जेल यात्रा में भी वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने जेल में दो बड़ी भूख हड़ताल भी की थी। उनकी रिहाई के लिए देशव्यापी आंदोलन चले। महात्मा गांधी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और अन्य शीर्ष नेताओं ने ब्रिटिश सरकार पर लगातार दबाव बनाया और अंततः 1946 में वो रिहा हुए। आजादी के बाद उन्होंने शस्त्र छोड़कर जन आंदोलन और चुनावी राजनीति का रास्ता चुना। वो पश्चिम बंगाल के गरीब और शोषित वर्ग की आवाज बनकर उभरे। आजादी के बाद वो लगातार 3 बार पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य चुने गए। सदन में वो अपनी प्रखर वाणी और शोषितों की आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे। सन 1967 में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। वो दक्षिण कलकत्ता की सीट से चुनाव जीतकर 4th लोकसभा के सदस्य बने। अपने जीवन के अंतिम 2 दशकों में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि चटगांव विद्रोह और उनके शहीदों का इतिहास आने वाली पीढ़ियों तक अवश्य पहुंचे। उन्होंने इसी उद्देश्य से बंगाली और अंग्रेजी में कई संस्मरण, लेख और पुस्तकें लिखीं। उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है चट्टग्राम विप्लवेर बन्ही शिखा। ये उस दौर का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। वो जीवन के अंत तक कोलकाता के एक छोटे से मकान में बहुत ही सादगी से रहे। उन्हें जो भी पेंशन या भत्ते मिलते थे, उसे वो जन कल्याण हेतु दान कर दिया करते थे। अपने जीवन का पल पल भारत भूमि को समर्पित करते हुए उन्होंने 16 अक्टूबर सन 1994 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

18वीं सदी का सुधार युग। उस युग के प्रमुख समाज सुधारक थे राजा राममोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस आदि। उन्होंने अपने अपने प्रयासों से समाज कल्याण का बीड़ा उठाया था। इन महापुरुषों के पदचिन्हों का अनुसरण कर स्वामी विवेकानंद ने समाज और देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई। पश्चिमी देशों को भारत की एक नई पहचान मिली। भारतीय ज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता से उनका परिचय हुआ और सारा विश्व इस तरुण सन्यासी के प्रति आकर्षित हो गया।

0: आपने 19वीं सदी के भारत और मुख्यतः बंगाल के बारे में भी जाना। हमने सुना वो कितना अशांत युग था, समाज दिशाहीन तथा अंधकारमय था। कुछ समाज सुधारकों ने समाज को कुछ हद तक सुधारा, दिशा दी, परंतु सदियों की रूढ़िवादिता, धर्मांधता तथा कदाचार पर संपूर्ण रूप से विजय पाना संभव न था।
1: उसी अशांत कालखंड में स्वामी विवेकानंद का आविर्भाव हुआ। अपने ज्ञान, कर्मयोग, भक्ति एवं वैदांतिक राष्ट्रवाद से उन्होंने समूचे भारत का ही नहीं बल्कि पूरे संसार का दिल जीत लिया। दिशाहीन भारत को एक सच्चा पथ प्रदर्शक मिला। जाति, प्रांत और भाषाई अंतर को भुलाकर भारतवासियों ने उन्हें अपने प्रेरणा पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा से लोग मुग्ध हुए।
0: ऐसे दिव्य महापुरुषों की जीवन कथा बहुत ही रोचक है। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने हजार वर्षों का काम कर दिखलाया था। इतने सारे गुणों से धनी स्वामी विवेकानंद को संस्कार अपने परिवार से मिले थे। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत थी, अतः विवेकानंद को जानने से पहले उनके परिवार के बारे में जानना बेहद जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता नगरी के उत्तरी भाग में सिमुलिया या सिमला मोहल्ले में गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट पर दत्त परिवार का विशाल भवन अपनी संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। आज भी उस भवन का जीर्ण द्वार अतीत वैभव का साक्षी बना खड़ा है। दत्त वंश का ऐश्वर्य और ख्याति, उनके 12 महीने के 13 उत्सव पर्व का आडंबर उस समय के कलकत्ता के धनी समाज में चर्चा का विषय रहा।
1: कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील राममोहन दत्त के समय में सिमुलिया के दत्तों ने नगर में काफी प्रभाव और प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। राममोहन दत्त के पुत्र दुर्गाचरण ने उस समय की प्रथानुसार संस्कृत तथा फारसी भाषा में शिक्षा प्राप्त की और राजभाषा अंग्रेजी भी सीखी। उन्होंने भी वकालत प्रारंभ कर दी, परंतु पिता जैसी धनोपार्जन की प्रवृत्ति उनमें न थी। तत्कालीन धनी संतानों के समान नवीन नागरिक सभ्यता के भोग विलास भी उन्हें आकर्षित न कर सके।
0: ये धर्मानुरागी युवक अवसर और मौका पाते ही धर्म शास्त्रों की चर्चा तथा सत्संग किया करता था। उत्तर पश्चिम प्रदेशों से आए हुए हिंदी भाषी वेदांती साधुओं से प्रभावित होकर दुर्गाचरण ने 25 वर्ष की उम्र में ही सारा ऐश्वर्य और सम्मान त्याग कर सन्यास ले लिया।
1: सन्यासियों के नियमानुसार 12 वर्ष के बाद दुर्गाचरण एक बार अपने जन्मस्थान का दर्शन करने आए थे और अपने एकमात्र पुत्र विश्वनाथ को आशीर्वाद दे गए थे। उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। उनके आगमन के एक वर्ष पहले ही उनकी पत्नी यानी विश्वनाथ की माता का निधन हो गया था। सन्यासी पुत्र विश्वनाथ ही सन्यासी विवेकानंद के पिता थे।
0: विश्वनाथ ने अपने दादा राममोहन का अनुसरण कर वकालत करना प्रारंभ किया। वे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वकालत में व्यस्त रहते हुए भी अध्ययन में उनका प्रबल अनुराग था। वे फारसी जानते थे, हाफिज की कविताएं पढ़ते थे, अंग्रेजी साहित्य और इतिहास आदि पढ़ने के कारण धार्मिक कट्टरता उनमें ना थी। कई ऊंचे खानदान के मुस्लिम उनके मुवक्किल थे तथा लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, लाहौर आदि स्थानों की यात्रा करने के कारण वे उस समय के अनेक खानदानी मुस्लिम परिवारों के संपर्क में आ चुके थे। अतः वे उनके रीति रिवाजों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे और उनकी पाबंदी भी करते थे। बाइबल के अध्ययन के कारण वे ईसाई धर्म के भी प्रेमी थे, अर्थात धर्म, ईश्वर आदि के बारे में कोई भेदभाव नहीं रखते थे। वे काफी धनोपार्जन करते थे और खर्च भी वैसा ही करते थे। रिश्तेदारों दोस्तों का आदर सत्कार करना तथा ठाट बाट से रहना वे पसंद करते थे। उनके घर में अनेक आश्रित पलते थे और उस विशाल भवन में किसी चीज की कमी ना थी।
1: परंतु विश्वनाथ की पत्नी भुवनेश्वरी देवी एक पारंपरिक महिला थी। इस बुद्धिमती कुशल गृहिणी की देखरेख में उनके विराट परिवार के सभी कार्य बड़ी कुशलता से संपन्न होते थे। वे बंगला पढ़ना लिखना भली भांति जानती थी। रामायण, महाभारत, पुराण, भागवत आदि का नियमित पाठ करती और साथ ही अपने पति पुत्र के साथ चर्चा करके तत्कालीन विचारधारा से भी परिचित रहती थी। आस पड़ोस के लोग उन्हें श्रद्धा करते थे। वो मीठा बोलने वाली गंभीर धर्म परायणा महिला प्रतिदिन शिव पूजा करती थी।
0: भुवनेश्वरी देवी के मन में एक दुख था। दो कन्याओं की माता तो वे थीं, पर उनका कोई पुत्र ना था। पुत्र मुख देखने की लालसा ने उन्हें धीरे धीरे बहुत ही व्याकुल कर डाला। वे प्रतिदिन सुबह शाम शिव मंदिर में प्रार्थना करती और शिव को संतुष्ट करने के लिए कठोर व्रतों का पालन करती।

ॐ कैलाशपति भुजंगेश्वराय नमः। हे देवाधिदेव, मैं भक्ति पूर्वक तन मन से तुम्हारी सेवा में रत हूँ। सभी कठोर व्रतों का नियम पूर्वक पालन करती हूँ। तुमसे आज्ञा या आशीर्वाद लिए बिना मैं कोई भी काम नहीं करती प्रभु। फिर तुम्हारी कृपा कब होगी? कब आप प्रसन्न होंगे? कब मेरी गोद में एक पुत्र आएगा प्रभु? कब तुम्हारी दया होगी? बोलो बोलो ना, कब होगी दया? कब कब होगी तुम्हारी दया?

0: इतने व्रत उपवास पूजा अर्चना के बाद भी उनके मन को शांति न हुई। शिव को और भी अधिक तुष्ट करने के लिए उन्होंने काशी में रहने वाली एक रिश्तेदार महिला को पत्र लिखा।
1: आपको तो मालूम है कि मैं शिव की पूजा नियमित रूप से करती हूँ, उनके नाम का व्रत उपवास भी करती हूँ, पर उनकी कृपा मुझ पर आज तक नहीं हुई। मेरी पुत्र कामना अधूरी ही रह गई। आप तो भाग्यवती हैं, शिव की नगरी में ही निवास करती हैं। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप हर दिन मेरी ओर से बाबा विश्वेश्वर के मंदिर में पुत्र कामना करते हुए पूजा एवं होम यज्ञ आदि की व्यवस्था कर दें। मुझे आशा है आप मुझे निराश नहीं करेंगी।
2: ये जानकर कि उनकी इच्छा के अनुसार पूजा पाठ हो रहा है, माता भुवनेश्वरी प्रफुल्लित और आश्वस्त हुई। वे शिव अर्चना में और भी ज्यादा डूब गईं। ग्रह देवता शिव मंदिर में ही उनका अधिकतर समय व्यतीत होने लगा।
0: एक दिन प्रातः काल शिव अर्चना के बाद वे ध्यान मग्न हो गईं। परिवार के लोगों ने और दास दासियों ने उन्हें कई बार आवाज दी, पर वे सब कुछ भूलकर बेसुध बैठी रहीं। सारा दिन बीत गया, सांझ हो आई। पति विश्वनाथ के अदालत से लौटने पर उन्हें ये समाचार मिला। वे पत्नी से बेहद प्यार करते थे। व्याकुल होकर पूजा कक्ष में आए और भुवनेश्वरी को आवाज दी।
3: भुवन, ओ भुवन, भुवन, क्या हो गया है तुम्हें? सुना है सुबह से यहां ऐसी ही बैठी हो, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भुवन, तुम सुन रही हो ना? मेरी ओर देखो, जवाब दो भुवन, भुवन।
0: भुवनेश्वरी ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे वहीं पर थककर सो गईं। किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें छूने या जगाने की। सूर्योदय के समय अचानक घर वालों की नींद खुली। उन्हें पूजा घर से घंटा बजने और मंत्रोच्चार की आवाज आई। सब दौड़ते हुए वहां जाकर एकत्रित हुए। भुवनेश्वरी होश में आ गई थी और जोर जोर से मंत्र पढ़कर शिव को प्रणाम कर रही थी।
1: हे शिव, हे शंकर, हे करुणामय, तुमने मुझे ये क्या दिखाया, क्या दिखाया? क्या ये निरा सपना था या सच का पूर्वाभास? कहो देव, कहो ना। अरे अरे, सुना तुमने? तुम लोगों ने सुना? मेरे इतने दिनों की तपस्या पूरी होने वाली है। हाँ हाँ, शिव ने मुझ पर दया की है। हे शिव, हे शंकर, हे शिव, हे प्रभु।
3: भुवन, भुवन, शांत हो जाओ, सब ठीक तो है ना? क्या देखा तुमने, कहो, इतनी खुश क्यों हो, कहो तो।
1: मैं क्या कहूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। मैंने ये कैसा सपना देखा? हाँ,
3: क्या देखा तुमने, कहो भुवन।
1: ओह, मैंने देखा, मैंने देखा, तुषार धवल पर्वत श्रृंग से कैलाशपति शिव उतर कर आ रहे हैं। हाँ, और वो ठीक मेरे सामने आकर खड़े हो गए। वो मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे, तुम्हारी कठोर तपस्या का फल तुम्हें मिलेगा भुवनेश्वरी। और कहते कहते शिव एक छोटे से शिशु का रूप धारण कर मेरी गोद में आ गए। हाँ हाँ, वो मेरी गोद में आ गए और मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। हाँ, सच। ओह, हे शिव, हे शंकर, हे शिव, हे शिव,
2: हे शिव, हे शंकर कहती हुई वे बारंबार माथा टेकती रहीं। परिवार वाले हतप्रभ रह गए।
0: उस दिन 1863 ईस्वी की 12 जनवरी थी, पौष संक्रांति का पुण्य प्रभात। शीत से ठिठुरते हुए नर नारी स्नान के लिए भागीरथी की ओर जा रहे थे। इसी समय सूर्योदय से 6 मिनट पूर्व 6:33:33 पर भुवनेश्वरी देवी ने विश्व विजयी पुत्र को जन्म दिया।

0: आनंद उल्लास और हर्ष से दत्त भवन मुखरित हो उठा। मंगल शंख बजने लगे। बंगाल के हर घर में पौष पर्व का आनंदोत्सव मनाया जा रहा था, मानो नवजात शिशु को सादर अभ्यर्थना करने प्रत्येक गृह प्रांगण मुखरित हो उठा।
1: नामकरण का दिन। बालक की आकृति बहुत कुछ उसके सन्यासी पितामह की तरह देखकर परिवार के कुछ लोगों ने शिशु का नाम दुर्गादास रखने की इच्छा प्रकट की, परंतु माता ने अपने स्वप्न को स्मरण कर कहा,
2: जी इसका नाम शिव के नाम पर वीरेश्वर रखा जाए। ठीक है, वे ही तो शिशु का रूप धरकर मेरे घर आए हैं। ये मेरा शिव, मेरा शंभू, मेरा महेश और मेरा शंकर है, मेरा बच्चा।
0: सभी ने उनका कहना मान लिया। वे उसे वीरेश्वर से मिले और अंततः मिले कहने लगे। अंत में अन्नप्राशन के समय बालक का नाम रखा गया नरेंद्रनाथ, और भविष्य में यह बालक नरेंद्रनाथ या नरेन नाम से ही परिचित हुआ।
1: बचपन में नरेंद्रनाथ बहुत ही नटखट थे। उनके उधम से घरवाले हमेशा परेशान रहते थे। वे माँ को बहुत तंग करते थे। एक दिन बालक नरेन आंगन में दौड़ दौड़ कर माँ को सता रहा था।
2: बिले, अरे ओ बिले, आना इधर आ, बात सुन मेरी बिले। ओहो आना, कपड़े बदल ले। ओहो
3: नहीं नहीं बदलूंगा कपड़े, लो पकड़ो मुझे।
2: अरे सुन ना।
3: नहीं पकड़ पाई ना, मैं अभी पेड़ पर चढ़ने जा रहा हूँ, नहीं आऊंगा तुम्हारे पास।
2: ठहर, पकड़ती हूँ तुझे। बस ये पकड़ लिया। बोल अब कहाँ जाएगा। हाँ ठहर ठहर, मैं मजा चखाती हूँ। नहीं सुनेगा ना मेरी बात। हाँ नहीं सुनेगा, चल चल आ इधर आ, ये इधर आ, इधर आ, ये ले ये ले, ये शिव, ओ शिव, शिव शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू, ले। अब तेरा माथा कुछ ठंडा हुआ ना, चल चल अब अंदर चल, चल बेटा सर पोंछ दूं, फिर कपड़े बदल लेना। ओह शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर।
1: पिता विश्वनाथ बरामदे में खड़े होकर माँ बेटे का ये नाटक देख रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा,
4: भुवन तुम क्यों हमेशा बिले के पीछे पड़ी रहती हो, अरे खेलने दो ना उसे। देखो ना, नाहक उसके सर पर ठंडा पानी डाल दिया, अगर उसे जुखाम हो गया तो जाओ जल्दी से पहुंचो उसका सर।
2: हाँ हाँ, तुम्हें तो हमेशा मेरी ही गलती दिखाई देती है, बेटे की शरारत तुम्हें दिखती ही नहीं। अरे देखो तो, दौड़ा दौड़ा कर मेरा तो दम निकाल दिया, और उसे भिगोने में देखो ना, ये देखो मैं पूरी तरह भीग गई। अरे बिले चल ना, चल जल्दी चल चल।
4: पर तुमने दोबारा उसे नहलाया क्यों, और वो भी ठंडे पानी से।
2: क्या आप नहीं जानते कि आशुतोष शिव जलाभिषेक से ही संतुष्ट होते हैं, और मेरा बिले भी तो शिव का ही अंश है, इसलिए जब मैं इसे किसी भी तरह से शांत नहीं कर पाती तो ठंडा पानी डालकर शिव शिव की जाप करती हूँ, और ये भी शांत हो जाता है।
4: तुम माँ बेटे की महिमा अपरंपार है, मुझे समझ में नहीं आता। अरे बच्चा है अभी, शरारत तो करेगा ही।
2: ए देखो जी, वकालत करते हो उसी को संभालो, हम माँ बेटे के बीच ना आना, ठीक है। ए, ए, ए, अरे अरे अब फिर भाग गया। अरे देखो तो, ओहो फिर भाग गया बिले।
4: लो संभालो अब।
2: ओ मांगो माँ, मैं तो इसकी शरारतों से तंग आ गई हूँ। ओ अरे अरे, ओ राधा, शामू, अरे देख तो किधर भाग गया। वो भाग रहा है, वो जा पकड़। पकड़ लिया ना, ले आ इधर, इधर ले आ। मांगो मां, महादेव शिव ने स्वयं ना आकर जाने कहां से एक भूत को भेज दिया है, सबको परेशान कर रखा है। ओह अरे तू तो फिर से रोने लगा, देखा देखा जी अपने लाडले की करामत। हाँ हे देख देख बिले, अगर तू ज्यादा उधम मचाएगा ना तो महादेव तुझे कैलाश में नहीं आने देंगे। हाँ
3: सच कह रही हो ना माँ, शिव जी मुझे कैलाश नहीं आने देंगे तो मैं नंदी बैल की सवारी कैसे करूंगा।
2: अच्छा बच्चा बनो बेटा, तो शिव जी तुझे खुद वहां ले जाएंगे, खूब प्यार करेंगे, समझा। अच्छा अच्छा अब चल, तो चल भीगे कपड़े बदल ले। हाँ चल चल बेटा, चल चल आजा आजा आजा आजा, चल चल।
4: तुम दोनों माँ बेटे की बातें तुम दोनों ही जानो, और जाने तुम्हारे शिव जी। भाई मैं तो चला। नरेंद्रनाथ सबके प्रिय थे, मोहल्ले के धनी निर्धन सभी परिवारों के साथ उन्होंने संबंध स्थापित कर लिया था। यदि उनके परिचितों में से किसी लड़के के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती तो उसे सांत्वना देने वे ही पहले रहते थे। हर घर में आना जाना उनके परिवार जनों को पसंद ना था। एक दिन
5: ए ए ए बिले, क्यों रे बिले, तू कहाँ गया था, तेरी माँ तुझे ढूंढ रही थी।
3: अरे मैं तो देवू के घर गया था, आपको मालूम नहीं पड़ा क्या, आज देवू के दादाजी गुजर गए। देवू बहुत रो रहा था, उसी के साथ बैठा था।
5: हे भगवान, इस लड़के को जात पात का कोई ध्यान नहीं है, तूने देवू के दादाजी के शव को छुआ तो नहीं। हे ईश्वर,
3: छुआ नहीं, सब दादाजी को आखिरी बार प्रणाम कर रहे थे, सो मैंने भी किया।
5: तूने प्रणाम किया, चल आज तेरी अच्छी पिटाई होगी, चल माँ के पास।
3: आप मुझे डांट क्यों रहे हैं, देवू मेरा दोस्त है, उसके दादाजी को मैं भी दादाजी कहता था, और दादाजी को प्रणाम करने में क्या बुराई है, माँ ही तो कहती है बड़ों का आदर करना चाहिए।
5: अरे अरे अरे अरे अरे, इस मलेच्छु को कौन समझाए, चल चल तू तो अंदर चल, फिर देखना क्या होता है तेरा। ए ए ए, ए किसी चीज को छूना मत, पहले नहा ले, चल पहले नहा।
3: ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, आपको छू दिया, क्या हो गया, कुछ भी तो नहीं हुआ, आप तो वैसे ही हैं।
5: हाय हाय हाय हाय हाय, ये क्या कर दिया, मैं तो नहा धोकर घर से बाहर जा रहा था, छू दिया ना, अब फिर से नहाना पड़ेगा, राम राम राम।
3: तो जाइए फिर से नहाइए।
5: राम राम राम राम राम।
0: और नरेंद्र हंसते हुए अंदर चले गए। चाचा जी के गुस्से का अंदाजा तो आप खुद लगा सकते हैं।

0: नरेंद्र बचपन से ही बहुत हाजिर जवाब और शरारती थे, पर उनकी बाल सुलभ शरारतों से अधिकतर लोगों का मनोरंजन होता था। उनकी मजेदार बोलचाल और मनगढ़ंत किस्से कहानियों को सुनकर गंभीर स्वभाव वाले बड़े बूढ़े भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। उनके दोस्त तो नरेंद्र से कहानियां सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, और नरेंद्र भी मौका मिलते ही कहीं भी मंडली जमाकर बैठ जाते और दोस्तों को तरह तरह की कहानियां सुनाते। रामायण महाभारत की कथा कहानियां तो सुनाते ही थे, साथ ही अलिफ लैला की कहानियां, ईसप की नीति कथाएं तथा देश विदेश की परिकथाएं भी सुनाया करते थे।
1: नरेंद्र को किसी प्रकार का संकोच न था। अगर कोई कहानी याद न आती तो मनगढ़ंत पात्रों की काल्पनिक कहानियां दोस्तों को सुनाया करते। उनकी काल्पनिक कहानियां भी इतनी मजेदार हुआ करती थीं कि दोस्त यह समझकर भी कि नरेंद्र झूठी कहानियां सुना रहे हैं घंटों मंत्रमुग्ध हो सुनते रहते थे। बचपन से ही उनकी कल्पना शक्ति अद्भुत थी।
0: जीवन के आरंभ में ही देखा गया था कि अपने हम उम्र साथियों के साथ झुंड बनाकर क्रीड़ा कौतुक करते समय नरेंद्र ही इन सब आयोजनों के नेता होते। नेतृत्व सुलभ गुण तब से ही उनके चरित्र में प्रस्फुटित होकर धीरे धीरे समुचित रूप धारण कर रहा था।
1: उन दिनों पाठशाला में मकर संक्रांति के दिन गंगा की वंदना के गीत गाकर गंगा के तट पर जाकर पूजा अर्चना करने की प्रथा थी। नरेंद्र के पिता विश्वनाथ बाबू मकर संक्रांति के दिन गुरुजी एवं छात्रों को नई धोती कुर्ता दिया करते थे एवं गुरुजी छात्रों को गाजे बाजे के साथ गंगा पूजा कर आने की अनुमति देते थे।
0: लौट कर आने पर प्रथा अनुसार घर पर बनी मिठाइयां खाने को मिलती थीं। नरेंद्र ने पिता से छात्रों के साथ गंगा पूजन की अनुमति मांगी। बाजा गाजा और पताका आदि की व्यवस्था पिता के खर्चे से सहज ही हो गई। अतः गंगा की महिमा गाते हुए बच्चे जुलूस बनाकर गंगा तट पहुंचे। वहां केले के पेड़ के छिलकों से नाव बनाकर उनमें दिया जलाकर रख दिया गया और फूल मालाओं से सजाकर नावों को गंगा जल में बहा दिया गया।
1: छोटे छोटे नाव धीर गति से गंगा में बहने लगी। संध्या के झुरमुट अंधेरे में जगमगाती हुई नाव दियों के साथ साथ धीरे धीरे लहरों के साथ झूमती हुई सागर की ओर बढ़ चली। बच्चे ढोल मंजीरों के साथ गाते रहे।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आलेख डॉक्टर पापिया दास गुप्ता, निर्देशन चैतन्य भट्ट, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वरा संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
1: श्रोते हो, आताच आपण युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद ऐकलात। हा कार्यक्रम स्वराज संस्थान संचालनालय यांच्या सहकार्याने विद्यावाणी सामुदायिक रेडिओवरून प्रसारित करण्यात आला। ऐकत रहा विद्यावाणी 107.4 FM।

0: विवेकानंद की पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप परिचित हुए। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप अलग थलग रूप से विकसित नहीं होता। व्यक्ति आज जो है वो उसकी वंश परंपरा और पारिवारिक तथा सामाजिक वातावरण का फल है। विवेकानंद को एक संस्कारवान परिवार मिला था, जिसके फल स्वरूप उन्हें उपयुक्त गुरु श्री रामकृष्ण देव मिले और उनके चहुमुखी व्यक्तित्व और शौर्य का विकास हुआ। उनकी प्रतिभा बचपन से ही दिखने लगी थी। निराला था उनका बचपन। बालक नरेंद्रनाथ की सभी बातें निराली थीं। वे चंचल, नटखट, शरारती तो थे, पर साथ ही भावुक भी थे। अगर बालक नरेंद्रनाथ के मन में कोई बात घर कर जाती तो उसे पूरा किए बिना वे नहीं मानते। कभी कभी वे चुपचाप किसी सोच में उलझ जाते। उन्हें समय, भूख, प्यास का ध्यान नहीं रहता था। उनका सबसे ज्यादा मनपसंद काम था गाड़ी पर सवार होकर घूमने जाना। उस समय घोड़ा गाड़ी यानी बग्घी का जमाना था।
1: माँ की गोद में बैठकर गाड़ी में से दोनों ओर की चीजें देखते हुए एक के बाद दूसरा प्रश्न पूछते हुए बालक माता को हैरान कर डालता था।
2: माँ, माँ, उधर वह सुंदर बंगला किसका है?
3: वो तो मजुमदार महाशय का है। बड़े नामी वकील हैं वे।
2: अरे अरे, देखो तो माँ, वो आदमी क्या बेच रहा है?
3: उस फल को जामरूल कहते हैं। एक दिन ना मैं तुम्हें वो फल खरीद कर खिलाऊंगी, ठीक है?
2: अच्छा माँ, माँ वो आदमी ऐसे फटे गंदे कपड़े पहनकर लोगों से क्या मांग रहा है?
3: अरे वो तो गरीब भिखमंगा है बेटा, लोगों से पैसे मांग रहा है।
2: क्यों, उसके पास पैसे नहीं है?
3: नहीं बेटा। अरे कोचवान, कोचवान जरा गाड़ी तो रोको जल्दी। लो बिले, उसे ये पैसे दे दो, भूखा लग रहा है।
2: हाँ दो, ये लो बाबा, कुछ खा लेना।
3: चलो चलो कोचवान, चलो।
2: माँ, लोग गरीब क्यों होते हैं? मेरे पास जब ढेर सारा पैसा हो जाएगा तो मैं इन सबको बांट दूंगा, कोई भूखा नहीं रहेगा।
3: हाँ बेटा, हमेशा मन में ऐसा ही दया भाव बनाए रखना, गरीबों की मदद करना।
2: अच्छा माँ।
3: ओ बिले, दो घड़ी चुप नहीं रह सकता, चुपचाप बैठे रहो।
0: गाड़ी से नरेन को इतना प्रेम था कि रोज अपने घर के सामने बैठकर आते जाते हर एक गाड़ी को बड़े ध्यान से देखा करते। कोचवान का छाती फुलाकर बैठना, तेज दौड़ते घोड़े की लगाम को खींचकर उसे हांकने का कौशल, उसकी खास पोशाक, चपरास, जरीदार पगड़ी आदि का उसके बालक मन पर विशेष प्रभाव पड़ा। तभी तो एक दिन पिता के ये पूछने पर,
4: बड़ा होने पर क्या बनेगा नरेन, बोल तो।
2: घोड़े का कोचवान बनूंगा।
0: पिता हंसने लगे। कोचवान बनने की आशा से बालक ने अपने पिताजी के बूढ़े कोचवान के साथ मित्रता कर ली थी और मौका मिलते ही अस्तबल में जाकर वो सईफ और कोचवानों के कामों को देखा करता और हजारों सवाल किया करता। सईफ से पूछता,
2: तुम रोज रोज घोड़े की मालिश क्यों करते हो?
5: भैया, इससे घोड़ा ताकतवर और तेज दौड़ने वाला बनता है।
2: अच्छा, तो मालिश करवाने पर मैं भी ताकतवर और तेज तर्रार बन जाऊंगा?
5: हाँ बेटा, खूब मालिश और कसरत करना, फिर देखना तुम्हारा शरीर कितना गठीला बन जाएगा।
1: बालक विवेकानंद को शरीर मजबूत बनाने का पहला पाठ शायद यहीं से मिला था। वो कोचवान से भी सवाल पूछता।
2: कोचवान जी, तुम हर दिन ये किस भगवान की पूजा करते हो?
6: बेटा, ये भगवान राम जी और सीता मैया हैं बेटा, और ये है हनुमान जी।
2: तुम इनकी पूजा क्यों करते हो? हमारे घर के पूजा घर में तो ये मूर्तियाँ नहीं है।
6: अरे तो क्या हुआ बेटा, मालकिन शिव शंकर की भक्त हैं, इसीलिए शिव पूजा करती हैं। पर वे रोजाना रामायण का पाठ तो करती हैं, यही उनकी पूजा है।
0: दत्त भवन में प्रायः प्रतिदिन दोपहर को रामायण तथा महाभारत की कथा होती थी। भुवनेश्वरी देवी स्वयं या कोई और महिला

0: घर का काम खत्म कर दूसरी स्त्रियां पाठिका को घेर कर बैठ जाती। इसी छोटी सी महिला सभा में बालक नरेन शांत होकर माँ की गोद में बैठा रहता। अक्सर भुवनेश्वरी देवी बेटे को गोद में बैठाकर सीताराम की कहानी, महाभारत की कथा या अन्य पौराणिक कहानियां सुनाया करती।
1: इसमें संदेह नहीं कि पुराणों की कहानियों का बालक के मन पर गंभीर प्रभाव पड़ा था। सुदूर अतीत युग के धर्मवीरों की पवित्र जीवनियां सुनकर उसके शिशु हृदय में ना मालूम भावों की क्या क्या लहरें उठा करती, जिससे वह अपनी स्वाभाविक चंचलता छोड़ घंटों मंत्रमुग्ध जैसा बैठा रहता था। रामायण सुनते सुनते नरेन का सरल शिशु हृदय भक्ति रस से परिपूर्ण हो उठता।
0: एक बार उनके घर के पास ही मेला लगा था। बालक नरेन अपने घर के पुराने नौकर रामू और दोस्तों के साथ मेला देखने गया था।
2: झूला झूला तो आने में झूला झूला ये पेर पेर सी रसभरी जली मिले लो, ये रसभरी जली मिले लो तो कई जली मिले लो।
3: अरे अरे मुन्ना जरा इधर तो आ, झूला बाद में झूल लेना।
4: अरे तू इधर आ जा।
3: नहीं मुझे उस ऊंची चक्री पर नहीं घूमना, तू पहले इधर आ। ये देख कितनी सुंदर मूर्तियाँ बिक रही हैं। ये शिव की मूर्ति? नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, घर में है तो। ये किसकी है? लक्ष्मी नारायण की? नहीं ये भी नहीं, मुझे वह दिखाओ। ये कौन है?
5: राम जी और सीता मैया हैं।
3: दिखाओ दिखाओ। हाँ मुझे यही मूर्ति चाहिए। रामू काका इसे पैसे दे दो ना, मुझे यही मूर्ति खरीदनी है।
6: क्या करोगे बेटा इस मूर्ति का? चलो जलेबी खरीद देते हैं तुम लोगों को।
3: जलेबी वलेबी मुझे नहीं खाना, तुम खाओ, मुझे तो बस यही मूर्ति चाहिए।
6: ठीक है। अच्छा बाबा अब जिद कर रहे हो तो ले लो, लो भैया ये पैसे ले लो। अच्छा कितने का है? हाँ 2 पैसा? अरे नहीं ये तो 1-1 पैसे में बिकता है।
3: रामू काका मांग रहा है तो दे दो ना 2 पैसे, गरीब है बेचारा।
6: हाँ गरीब है बेचारा, अरे बहू जी नाराज होंगी।
3: नहीं नहीं मैं माँ को समझा दूंगा, तुम तो ले लो।
6: अच्छा ले लो भैया 2 पैसे। हाँ नहीं तो लूट मार मचा रखा है, अब बच्चा जिद कर रहा है तो लेना ही पड़ेगा ना। हाँ चलो ठीक से कागज में लपेट कर बांध दो।
7: हाँ हाँ बांधता हूँ रुक जाओ।
6: अरे मिट्टी का है ना, टूट ना जाए। चलो दे दो, चलो बेटा ले लो, चलो चलो चलो चलो।
1: मूर्ति लाकर नरेन ने मकान के छत पर एक सुनसान कमरे में उसकी स्थापना कर दी। रोज उस मूर्ति के सामने ध्यान मग्न होकर बैठा रहता बालक नरेन। सीताराम के प्रति बालक का यह प्रेम उनके पश्चिम देशीय कोचवान मित्र को बहुत आनंददायक लगा। सीताराम के बारे में बालक के हजारों प्रश्नों का जवाब वह प्रसन्नता पूर्वक देता था।
3: अच्छा राम जी को राक्षसों से डर नहीं लगता था?
8: नहीं बेटा, वे तो बहुत वीर और साहसी थे। मुनि वशिष्ठ के आश्रम में उत्पात मचाने वाले सारे राक्षसों को राम जी ने मार भगाया था, और उस समय वे तुमसे थोड़े ही बड़े रहे होंगे।
3: अच्छा अगर मैं धनुष विद्या सीख लूं तो क्या मैं भी राक्षसों को मार सकूंगा?
8: हाँ हाँ मेरा राजा बेटा, बड़ा होकर न जाने कितने राक्षसों से लड़ेगा, उन्हें मार भगाएगा।
3: पर राम जी जंगल में क्यों चले गए? मना क्यों नहीं किया? उन्हें डर नहीं लगा क्या?
8: बेटा राम जी माता कैकेयी को बहुत प्यार करते थे, और पिता दशरथ को तो वे देवता समान पूजते थे। इन दोनों का कहा भला वे कैसे न मानते? माता पिता की भक्ति करना तो कोई राम जी से सीखे।
3: अच्छा जंगल में वो लोग खाते क्या थे? उनके साथ क्या कोई रसोईया भी गया था?
8: नहीं बेटा, वे तो खाली हाथ ही चले गए थे। जंगल में फल फूल खाकर ही गुजारा करते थे।
3: अच्छा, राम जी इतना अच्छा धनुष चलाते थे तो वे सोने के हिरण को पकड़ क्यों नहीं पाए?
8: बेटा, अब वो कोई असली हिरण थोड़ा ही था, वह तो माया थी माया। और राम जी को रावण का वध करना होगा, लोगों को उसके अत्याचार से बचाना होगा। यह सब तो पहले से ही तय था, तभी तो यह माया हिरण का दिखना, सीता हरण और राम रावण का युद्ध हुआ।
3: अगर राम जी सीता को साथ ना ले जाते तब तो यह सब झंझट ही नहीं होता।
0: कोचवान किसी कारणवश शादी विवाह के खिलाफ था, उसने नरेन को समझाया।
8: अब क्या बताएं बेटवा, ये औरतें ही तो सारी मुसीबत की जड़ है। न जाती सीता मैया तो राम जी को इतना परेशान ना होना पड़ता।
1: कोचवान ने विवाहित जीवन की अशांति का ऐसा जीता जागता वर्णन किया

0: शादी नहीं करूंगा।
1: क्यों अचानक ऐसी बातें, क्यों क्या हुआ?
0: मुझे मालूम है शादी होने के बाद आदमी को अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।
2: नरेन ने माँ को कोचवान से सुनी हुई सारी बातें कह दी।
1: ठीक है बाबा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। और अभी कौन तेरी शादी करवा रहा है, जब बड़ा होगा तो देखी जाएगी। जा अब जाकर खेल, ये कोचवान भी।
0: मेरी शादी की बात कौन कर रहा है, मैं तो दूसरी बात से परेशान हूँ।
1: अब कौन सी बात लेकर परेशान है?
0: मैं राम सीता की पूजा कैसे करूँ, सीता तो राम की पत्नी थी ना।
1: अरे बिले, तू तो मुझे पागल ही कर देगा। तू और तेरे सवालों का जवाब देते देते तो मैं आ इधर आना मेरे पास, आजा आंसू पोंछ ले, आ ला मैं पोंछ देती हूँ। ले बेटा आजा आजा मेरा बच्चा। राम सीता की पूजा न भी करो तो क्या है, कोई बात नहीं मेरा बच्चा।
2: नरेन कमरे से निकल आया, उसका मन अब तक शांत नहीं हुआ था। वो छत के कमरे से अपनी प्रिय राम सीता की मूर्ति को हाथों में उठा लाया और छत पर आकर खड़ा हो गया। संध्या हो चली थी, नरेन हाथों में मूर्ति लिए कुछ सोच रहा था। अंततः वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचा और कहा,
0: माफ करना राम जी, माफ करना सीता मैया, मैं आप दोनों का भक्त हूँ, श्रद्धा भी रखता हूँ, पर विवाहित जीवन वो मेरा आदर्श नहीं है, मैं आप दोनों की पूजा नहीं कर सकता।
2: कहते कहते वो व्याकुल हो उठा और मूर्ति को माथे से लगाकर नीचे फेंक दी।
3: दत्त भवन में अरसे से माने जाने वाले देशाचार और लोकाचार के छोटे छोटे नियमों को नरेन बचपन से ही नहीं मानता था। माँ के डांटने पर वो तुरंत उन नियमों का कारण पूछ बैठता।
1: ए बिले, अरे अरे अरे, ये क्या कर रहा है? भात खाते खाते बदन पर हाथ लगा रहा था।
0: क्यों क्यों नहीं लगा सकता, इस थाली में क्या बुराई है?
1: अरे वो भात की थाली है, झूठा है ना?
0: झूठा? भात थाली में डालने से थाली झूठी हो जाती है?
1: हाँ।
0: तो भात पेट में जाकर शरीर को भी झूठा कर देता है, फिर तुम मेरे झूठे शरीर को गोद में लेकर प्यार कैसे करते हो?
1: बिले बकवास मत कर, जो कहती हूँ सुना कर।
0: अच्छा माँ, तुम भी तो भात खाती हो, फिर उस झूठे शरीर से शिव जी की पूजा कैसे करती हो?
1: सुन लो इसकी बातें, चल खा लिया ना, चल चल उठ उठ, चल पानी पी ले। अरे अरे अरे अरे अरे अरे, बाएं से नहीं दाहिने हाथ से गिलास पकड़।
0: क्यों, अब बाएं हाथ में क्या हुआ, खाना तो दाहिने हाथ से खाया ना, और फिर बाएं दाएं में क्या फर्क है?
1: बहुत फर्क है, कोई भी अच्छा काम बाएं से नहीं किया जाता, समझे, हमेशा दाहिने हाथ से ही पानी पिया जाता है।
0: नहीं मैं तो बाएं से ही पीऊंगा, देखता हूँ क्या होता है, क्या तुम्हारे शिव जी नाराज हो जाएंगे?
1: ओह, अब तेरे साथ कौन मुंह लड़ाए, चल उठ जा, उठकर दोनों हाथों को अच्छी तरह धो ले, चल चल चल चल चल आ जा।
2: बालक नरेंद्र का मन एक ही तरह के खेल कूद में नहीं लगता था, वो हमेशा वैचित्र में नए नए खेलों की इजाद करते रहते थे। उनके साथी भी प्रबल उत्साह के साथ अपने नेता के साथ नए खेलों में जुट जाते। एक बार नरेंद्र का मन पुराने खेल से ऊब गया, उन्होंने झिल्ली कागज का एक रंगीन लालटेन बनाया और उसके अंदर मोमबत्ती जलाकर दीवार पर तरह तरह की आकृतियां बनाकर दोस्तों का मनोरंजन करने लगे। शाम को जब घरों में लालटेन जलाया जाता तो वे भाई बहनों को दीवार पर हाथों की परछाई से कई तरह के जानवरों और चिड़ियों की आकृतियां बनाकर

0: चाहते थे।
1: इसी समय उनके मन में पाक विद्या सीखने का विचार आया। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि जिससे जितना बन सके रसोई का सामान इकट्ठा कर लाए। सभी एक दो आलू बैंगन आदि घर से ले आए। ज्यादातर सामान चूल्हा कड़ाही बर्तन और तेल मसाला नरेंद्र अपनी रसोई से मांग लाए। दोस्तों ने मिलकर बड़े उत्साह से खाना पकाया और उस अधपके भोजन को बड़े चाव से खाया। कहना ना होगा कि नरेंद्र ही प्रधान रसोईया बने और दूसरे बच्चों ने उनकी सहायता की।
0: यद्यपि बालक नरेंद्र नाथ शरारत करने में सबसे आगे थे, पर उनमें अशुभ या अन्याय की कोई मनसा नहीं होती थी। उनका सहज सरल स्वभाव सांसारिक कुटिलताओं से दूर रहता था। सत्यवादिता उनके जीवन का सार था। भले ही वे दिन भर विभिन्न खेलों और हास्य विनोद में मग्न रहते, पर रात को उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया था। शीघ्र ही उन्हें कुछ अद्भुत दर्शन प्राप्त होते, जिक्र उन्होंने बड़े होने पर किया था। जैसे जैसे नरेंद्र की उम्र बढ़ी, उनकी मानसिकता में एक सुस्पष्ट परिवर्तन देखा गया। वे अब बौद्धिक कार्यों को प्राथमिकता देने लगे। उन्होंने पुस्तकों का अध्ययन प्रारंभ किया, नियमित रूप से अखबार पढ़ने लगे और किसी के साथ भी सार्वजनिक भाषण सुनने जाते, और जो कुछ सुनाते उसका सार अपनी मौलिक आलोचना के साथ अपने दोस्तों को सुनाते। वे लोग कुछ समझते कुछ नहीं समझते, पर नरेंद्र की बातें वे चमत्कृत होकर सुनते। इस तरह उन्होंने एक ऐसी तर्क शक्ति का विकास किया जिसका सामना कोई नहीं कर सकता था।
1: बचपन में एक बार नरेंद्र के साथ उनके एक सहपाठी की मारपीट हो गई थी। नरेंद्र टिफिन में मिठाई लाए थे। उनके सहपाठी ने, जो उनसे उम्र और ताकत में बड़ा था, नरेंद्र के हाथ से मिठाई छीन ली। मारा मारी शुरू हो गई। नरेंद्र मिठाई वापस नहीं ले पाए और भयंकर नाराज हो गए। मास्टर साहब को शिकायत करने पर उन्होंने समझाया,
2: छी छी छी छी छी छी नरेंद्र, तुम इतने बड़े घर के बेटे हो, तुम्हें एक मिठाई के लिए मारामारी करना शोभा नहीं देता। फिर वह लड़का किस घर का है, उसकी छीनी हुई मिठाई क्या तुम दोबारा खा सकते थे?
3: क्यों क्यों नहीं खा सकते थे? वह मुझसे ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैं जीत नहीं पाया। नहीं तो क्या मैं उसे वह मिठाई खाने देता?
2: नरेंद्र, कहा ना, उसका छुआ तुम नहीं खा सकते।
3: क्यों, क्या है उसके हाथों में? उसके साथ एक ही क्लास में पढ़ सकता हूँ, खेल सकता हूँ, तो उसका छुआ खा क्यों नहीं सकता?
0: नरेंद्र नाथ ने अपने संपूर्ण जीवन में ये सब आचार व्यवहार छुआ छूत कभी नहीं माना। बड़े होने पर एक बार इस दाएं बाएं झूठा और छुआ छूत के प्रसंग में भयंकर नाराज होकर कहा था,
4: आप लोगों का पूरा ध्यान इन्हीं तुच्छ विषयों में ही लगा है कि हम पानी किस हाथ से पिए, किस किस को हम छू सकते हैं और इन नियमों के भंग होने पर कौन कौन से प्रायश्चित होने चाहिए। पहले तो हम भगवान का निवास ऊपर स्वर्ग में या नीचे मानव हृदय में समझते थे, पर अब जान पड़ता है कि वे रसोई घर व रसोई के बर्तनों में निवास करने लगे हैं। हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है उदार बनना और कूप मंडूकता को त्याग कर बाहर आना, आत्मसात करना और खुद को सार्वभौमिक बना देना। पर हम तो अपने को नित्य लघुतर बनाते जा रहे हैं और शास्त्रों के आदेश के विपरीत अपने को सबसे अलग करते जा रहे हैं। हम अपने देशवासियों से ही नहीं जुड़ पा रहे हैं। अलग अलग टुकड़ों में बंटकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? मुक्ति? मुक्ति अलगाव में नहीं जुड़ाव में है। अपनी मुक्ति चाहते हो तो इन संकीर्णताओं से ऊपर उठो, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी, देश की समाज की मुक्ति होगी, देश की समाज की मुक्ति होगी।

पिछले कार्यक्रम में नटखट विवेकानंद के बाल्यावस्था की बातें जानकर आपको भी हंसी आ गई होगी। बचपन से ही वे किसी बात को बिना सही तरह से समझे नहीं मानते थे। प्रश्न पे प्रश्न कर वे अगर जवाब से संतुष्ट होते तो ही बात को मानते थे। छुआछूत जातिगत भेदभाव से वे घृणा करते थे। शरारती तो वे थे पर मनपसंद की बातें हो तो घंटों ध्यान लगाकर सुनते या करते थे। आइए उनके बचपन की कुछ और बातें जानें।

0: एक पेशावरी मुस्लिम नरेंद्रनाथ के पिता विश्वनाथ बाबू के मुवक्किल थे। वे नरेंद्र के प्रति विशेष स्नेह रखते थे। उनके आने का समाचार पाते ही नरेंद्र उनके पास आ जाता और उनकी गोदी में बैठकर पंजाब और अफगानिस्तान के घोड़े और ऊंट की सवारी की भ्रमण कहानियां एकाग्र चित्त से सुनता।
1: चाचा जी, वहाँ लोग ऊंट की सवारी क्यों करते हैं? वहाँ बग्गियाँ नहीं चलती क्या?
2: ओए नहीं मेरा बेटा, मेरा बच्चा, ओए वहाँ तो रेगिस्तान है, रेगिस्तान। ओए सड़कें ज्यादा है नहीं, सो लोग ऊंट पर ही एक जगह से दूसरी जगह को जाती है।
1: हाँ, पर ऊंट तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं ना।
2: ओ इसीलिए तो मेरा बच्चा, वहाँ पहुँचने में बहुत महीना लग जाते।
1: फिर वो खाते पीते क्या है? लंबे सफर से थक जाते होंगे।
2: ओए वहाँ बीच बीच में सराय बना होती, वहीं पर हम रुकते है, आराम करता है, ओए फिर चलना शुरू करते है। और सफर भी रात को ठंडा ठंडा में करते है। दिन में बहुत तेज गर्मी होते है और तेज धूप होते है।
1: पर बड़ा मजा आता होगा ना चाचा जी? आप मुझे वहाँ ले चलेंगे ना? मैं भी ऊंट की सवारी करूँगा।
2: ओए हमारा बच्चा, ओए तुम अभी बहुत छोटा है, बस दो उंगल बड़ा होने को मांगते है, फिर हम तुमको जरूर ले जाएगी।
0: आग्रह की अधिकता से वो कभी कभी दूर से ही बोलता।
1: चाचा जी देखिए, मैं रात भर में दो उंगल बढ़ गया हूँ, अब आप मुझे ले चलिए।
2: ओए देखूं तो, ओए हमारा बच्चा वाकई में बहुत बड़ा हो गई, अरे तुम तो दो उंगल ऊंची हो गई। ओए अब तो ले जाना ही पड़ेगी। ओए हमारा बच्चा मिठाई खाएगा, ओए तब तक ये मिठाई खा लो बच्चा, ओए तुम्हारे ही वास्ते लाए है, तुमको पसंद है ना?
1: लाइए, कहाँ है, मैं दोनों ही खाऊंगा।
0: नरेन बड़े चाव से चाचा की गोद में बैठकर मिठाई खाते और वहां बैठे दूसरे लोग इस अनाचार को देखते और सिहर जाते। परिवार में भी इस बात को लेकर बवंडर मचता, पर विश्वनाथ बाबू कट्टरपंथी ना थे, वे इस बात को हंसकर टाल देते।
3: विश्वनाथ बाबू के दफ्तर में भिन्न भिन्न समाज के मुवक्किल आते थे, उनके लिए अलग अलग हुक्के की व्यवस्था थी। एक दिन कमरा खाली देखकर नरेंद्र वहां आया और हुक्के की नली में मुंह लगाकर कश खींचने लगा। विश्वनाथ ने मुवक्किलों के साथ कमरे में दाखिल होकर नरेंद्र को हुक्का पीते देख लिया।
4: बिले, ये क्या हो रहा है?
1: बाबा, सब कहते हैं दूसरी जाति के लिए रखा हुआ हुक्का नहीं पीना चाहिए। मैं तो देख रहा था ऐसा करने पर क्या होता है, मैं तो वैसा ही हूँ। ये छत टूट तो नहीं पड़ी, मैं तो परीक्षा कर रहा था कि अगर मैं जाति भेद ना मानूं तो क्या होगा।
5: नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते, पाप लगता है।
1: क्यों, क्या होगा, क्या वह मर जाएगा? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हाथ का क्यों नहीं खाता? बाबा कहिए ना, क्या होता है?
0: विश्वनाथ बाबू ने हंसते हुए उसे प्यार से कहा,
4: बिले तू बड़ा दुष्ट हो गया है रे।
3: नरेंद्र ने सीताराम की मूर्ति को तोड़कर दूसरे ही दिन उसके स्थान पर एक शिव मूर्ति की स्थापना कर दी। माता का अनुकरण कर वे प्रतिदिन शिव पूजा करते थे, कभी पद्मासन में बैठकर ध्यान लगाते तो कभी अपने साथियों को बुलाकर सब मिलकर शिव मूर्ति को घेर कर ध्यानस्थ होकर बैठे रहते। यह खेल नरेंद्र को बहुत भाता था। उस समय उनके मन में क्या चलता था वही जाने। एक दिन ध्यान से उठकर उदास होकर माँ के पास गया और कहा,
1: माँ मुझे शिव जी के दर्शन क्यों नहीं होते? सचमुच क्या मैं दुष्ट हूँ? इसीलिए शिव जी ने मुझे अपने पास से हटा दिया है।
6: ऐसा किसने कह दिया रे तुझे?
1: मैं अगर साधु हो जाऊं तो क्या शिव जी मुझे अपने पास लौट आने देंगे?
6: हाँ हाँ, क्यों नहीं।
3: यह बात परिवार की महिलाएं सुन रही थीं, वे अवाक रह गईं।
7: बहू, ये तुमने क्या कह दिया है बेटे से? एक ही तो बेटा है तुम्हारा, उसे भी संन्यास लेने को कह रही हो? कैसी माँ हो तुम?
3: यह बात अनजाने में कह जाने के बाद माँ का हृदय किसी अनजान डर से कांप उठा। उसी पर किसी के टोकने पर वह और विचलित हो उठी। अपने दादा की तरह अगर नरेंद्र भी संसार छोड़कर चला गया तो? पर मन ही मन शिव का ध्यान लगाकर उन्होंने इस डर को मन से हटा दिया और कहा,
6: देखो भाई, अब भगवान की जो इच्छा होगी वही तो होगा ना। अब मैं उसमें बाधा देने वाली कौन हूँ?
1: तब तो मैं सन्यासी ही बनूंगा।
0: बचपन से ही लगातार रामायण और महाभारत सुनते सुनते उन ग्रंथों का बहुत सा भाग उन्हें याद हो गया था। वे कभी कभी सुमधुर स्वर में उन्हें सुनाकर श्रोताओं को मुग्ध कर देते थे। कभी कभी भिक्षु गायकों से सीखे हुए राधा कृष्ण या सीताराम के गीतों को गाकर घर वालों और अपने पिता के मित्रों को आनंद प्रदान करते। लाड़ प्यार से पले नरेंद्र स्वतंत्रता प्रिय होने पर भी उनके बाल चरित्र में अपने माता पिता के नाना प्रकार के सद्गुणों का समावेश हो गया था। घर में नीति शास्त्र एवं लोकाचार का कठिन नियम ना होने पर उनका चरित्र अपनी स्वाभाविक मधुरता के साथ स्वतः ही विकसित हो रहा था।
3: श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हनुमान के अलौकिक कार्यों की कथाएं सुनना नरेंद्र को बहुत अच्छा लगता था। माता से उन्होंने सुना कि हनुमान जी अमर हैं, वे अभी भी जीवित हैं। तब से उन्हें देखने के लिए नरेंद्र के प्राण छटपटाने लगे। एक दिन वे माता के साथ कथा सुनने गए। कथाकार पंडित जी नाना प्रकार से हास्य रस मिलाकर हनुमान जी के चरित्र का वर्णन कर रहे थे। कथा खत्म होने पर नरेंद्र धीरे धीरे उनके पास गया और उनसे पूछा,
1: पंडित जी, आपने कहा हनुमान जी केला खाना पसंद करते हैं और केले के बगीचे में ही रहते हैं, तो क्या मैं वहां जाकर उनके दर्शन पा सकूंगा?
8: हाँ बेटा, केले के बगीचे में ढूंढने पर तुम उन्हें पा सकते हो।
3: फिर क्या था, दूसरे ही दिन घर के पास वाले केले के बगीचे में केले के पेड़ के नीचे बैठ गए और हनुमान जी की प्रतीक्षा करने लगे। काफी समय बीत गया पर हनुमान जी नहीं आए। अंत में लाचार होकर शाम ढलते घर वापस आए। माँ को सारी घटना सुनाकर इसका कारण पूछा। बालक के विश्वास पर चोट न करना ही माता ने उचित समझा और बेटे को प्यार से चूम कर कहा,
6: ओले बेटा, बेटा तुम दुखी मत हो। शायद देखो, शायद आज हनुमान जी वो राम जी के किसी काम से कहीं दूसरी जगह पर चले गए होंगे। हाँ, इसीलिए वो तुम्हें नहीं मिले। किसी और दिन मिल जाएंगे। ठीक है बेटा। ओ बेटा मेरा।
0: बालक शांत हुआ। उसने फिर कभी हनुमान जी से मिलने की कोशिश की या नहीं ये तो ज्ञात नहीं, पर हनुमान जी के प्रति गंभीर श्रद्धा भाव उनके मन से कभी लुप्त नहीं हुआ। ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करने के इच्छुक प्रत्येक युवक को विवेकानंद कहा करते थे।
9: महावीर के चरित्र को आदर्श बनाओ। हर घर में महावीर हनुमान जी की पूजा होनी चाहिए। इस दुर्बल जाति के सम्मुख उन्हीं का आदर्श रखना चाहिए। शरीर में शक्ति नहीं, हृदय में साहस नहीं, क्या होगा मांस के लोदों से। मैं चाहता हूं हर युवा महावीर जैसा ताकतवर हो।
3: बोध या विचार शक्ति के कुछ और बढ़ने के बाद उनमें साधु या भिखारियों के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण दिखाई पड़ा। उनके आने पर वे उनके निकट दौड़ जाते, उन्हें कोई रोक नहीं पाता और जो भी मिलता उन लोगों को दे देते थे। एक दिन नई धोती पहनकर साथियों के साथ खेल रहे थे, तभी दरवाजे पर आवाज हुई।
10: नारायण हरि, नारायण हरि, अरे कोई है?
1: आओ बाबा, अंदर आओ।
10: बेटा, कुछ पहनने ओढ़ने का मिल जाए तो।
1: हाँ हाँ, लो ना, मेरी यह धोती बिल्कुल नई है, आज ही तो पहना है, ये ले लो।
10: तुम्हारी ये छोटी सी धोती मैं कैसे पहनूंगा बेटा? पर तुम्हारा दिया दान मेरे सर आंखों पर, लाओ मैं से अपने माथे पर लपेट लूं। जीते रहो, जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो।
0: साधुओं के आने पर नरेन को किसी कमरे में बंद कर दिया जाता था, पर खिड़की से वे उन्हें बुलाकर जो कुछ मिलता दे देते थे और घर के लोगों को हरा दिया समझकर खुश हो जाते।
3: दोनों बड़ी बहनों हरमोहिनी और स्वर्णमयी को वे हमेशा छेड़ा करते। दोनों हैरान परेशान होकर नरेंद्र को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ती, पर पकड़ न पाती। उन्हें और भी तंग करने के लिए नरेंद्र किसी गंदे नाले में उतर जाता या किसी कूड़े के ढेर पर चढ़ जाता। बहनें उनका पीछा करती।
7: रुक जा बिले, इधर आ, आज तुझे अच्छा मजा चखाऊंगी। मेरे कपड़े में अपना गंदा हाथ क्यों पोछा, बोल।
11: ओह, मेरी किताब तूने ही छुपाई है, निकाल निकाल दे जल्दी, नहीं तो मैं माँ को कह दूंगी।
7: एक बार पकड़ लूं तो तेरी खैर नहीं बिले। स्वर्ण, तू उधर से जा, उधर जाकर पकड़, मैं इधर से इसका रास्ता रोकती हूँ।
1: आओ आओ ना, आओ पकड़ो मुझे, इस गंदी नाली में उतरो, तब तो पकड़ पाओगी मुझे। अच्छा चलो, मैं ही निकल आता हूँ, पर मेरे कपड़े और पैर गंदे हो गए हैं, मुझे छुओगी क्या?
7: हाँ हाँ पकड़ूंगी, रुक, बिल्कुल पकड़ूंगी।
1: पकड़ोगी तो ये लो, मैं कूड़े के ढेर पे चढ़ गया, अब आओ यहाँ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
12: देखो ना, परेशान कर रहा है माँ, किताब माँ, देखो ना माँ।
3: दोनों बहनें हार कर रोते रोते अंदर चली जाती हैं।
0: दत्त भवन में अनेक पालतू जानवर थे। नरेन को उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। विलायती सफेद चूहा, बंदर, बकरा, कबूतर, काकातुआ और अनेक तरह तरह की चिड़िया थीं। घर की गाय के साथ नरेन की पक्की दोस्ती थी। उसके गले में माला पहनाकर, माथे में सिंदूर लगाकर, शरीर पर हाथ फेरकर वे उसके साथ कितनी मीठी मीठी बातें किया करते थे, और वो गाय भी उनके शरीर पर मुंह रगड़कर प्यार जताती थी।
3: सन्यासी होने की इच्छा उन्हें बचपन से ही थी। एक दिन एक गेरुआ वस्त्र को कॉपीन की भांति लपेटकर वे घूम रहे थे। उसे देखकर माँ ने पूछा,
7: क्यों रे बिले, है ये क्या कर रहा है?
1: माँ, मैं शिव हो गया हूँ, अब मैं ध्यान करने जा रहा हूँ।
7: अरे क्यों भला?
1: मैंने सुना है कि ध्यान में बैठे ऋषि मुनियों के बालों की जटा बढ़कर धरती को छूने लगती है और धीरे धीरे बरगद के पेड़ की जटा की तरह धरती में घुस जाती है। पर मैं तो कल भी ध्यान करने बैठा था, मेरे बाल तो बड़े ही नहीं, ना ही जमीन में घुसे। क्यों माँ?
7: बेटा, एक आध घंटा या एक दो दिन में जटाएं नहीं बढ़ती, कई साल लग जाते हैं।

0: नरेंद्रनाथ के पास खेलों की कमी ना थी। उनका एक प्रिय खेल था राजा बनने का खेल। अपने संगी साथियों के साथ पूजा घर जाने वाली ऊंची सीढ़ी पर यह खेल चलता था।
1: मैं राजा हूँ, इसीलिए मैं सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठूंगा। तू मंत्री है, इस पर बैठ। तू तो कोतवाल है, वहाँ बैठ। सेनापति, तुम इधर आकर बैठो। और तुम सब सभासद हो, नीचे बैठो। अब दरबार शुरू होगा, सब लोग मुझे प्रणाम करो।
2: प्रणाम महाराज।
1: मंत्री, राज्य का क्या समाचार है?
3: प्रजागण परम सुखी है महाराज।
1: सेनापति, कहो क्या कहना है?
4: महाराज, एक डाकू बड़ा उत्पात करता है, आए दिन हमला करके प्रजा को लूट लेता है।
1: उस दुष्ट आत्मा का सर काट दो।
0: तुरंत कुछ बच्चे डाकू को पकड़ने दौड़ते और वो सदर दरवाजे से भागकर जान बचाता। राजा सिंहासन पर बैठे बैठे मुस्कुराते रहते।
3: वोरा, पकड़ो उसे, पकड़ो।
5: इसी तरह खेलते खिलाते नरेंद्र बड़ा हो रहा था। साथियों ने सर्वसम्मति से उसे नेता मान लिया था। जहाँ भी जाते, जो भी करते, सब बच्चे नरेंद्र का ही कहा मानते। उम्र में बड़े बच्चे भी उसी को नेता मानते थे।
0: नरेंद्र बचपन से ही निर्भीक और साहसी थे। उसके एक सहपाठी पड़ोसी के घर चंपा का एक पेड़ था। अक्सर नरेंद्र उस पेड़ पर चढ़कर डाली में पांव फंसाकर और सिर नीचे लटकाकर झूलता था। एक दिन उस घर के मालिक दादाजी राम रतन बसु ने उसे ऐसा करते देख लिया। उन्हें लगा चंपा की नरम डाली टूट जाने पर नरेन को चोट लग जाएगी। वो बाहर आकर नरेन को समझाते हुए कहते हैं,
6: बेटा नरेन, इस तरह चंपा की डाली पर नहीं झूलते, नीचे आ जाओ, मत चढ़ो पेड़ पर।
1: क्यों क्यों, इस पेड़ पर चढ़ने से क्या होता है?
6: नीचे तो उतरो, बतलाता हूँ।
1: ये लीजिए, आ गया, अब बताइए।
6: उस पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस रहता है, भयानक गुस्सेल है, पेड़ पर चढ़ने वाले की गर्दन मरोड़ देता है।
1: अच्छा दादाजी।
0: दादाजी के अंदर जाते ही नरेन फिर से पेड़ पर चढ़ने लगा।
7: नरेन, सुना नहीं दादाजी ने क्या कहा? ब्रह्म राक्षस गर्दन मरोड़ देगा।
1: अरे आने दे ब्रह्म राक्षस को, मैं उसके शरीर पर थूक कर उसे वशीभूत कर दूंगा।
7: नहीं बाबा, मुझे तो डर लगता है, मैं तो चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ।
1: तू भी जैसे गधा है। कोई आकर एक बात कहके डरा गया और तू उसी पर विश्वास करने लगा।
7: तो तू नहीं मानता ब्रह्म राक्षस को?
1: तेरे दादाजी की बात अगर सही होती तो वो बहुत दिनों पहले ही मेरी गर्दन मरोड़ देता। मैं तो अक्सर झूलता हूँ, मुझे तो कभी नहीं दिखा वो। जा जा जा, डरपोक कहीं का।
0: बच्चे की बुद्धि का विकास माता पिता की गोद में बैठकर ही होता है। विशेषकर नरेंद्र के माता पिता का था अपूर्व उदार हृदय और ज्ञान समृद्ध प्रगतिशील मन, अतः उनका मानसिक विकास और भी तेजी से और समृद्ध हुआ था। रामायण और महाभारत की कहानी, देवी देवताओं की कथा एवं भारत की सांस्कृतिक परंपरा के स्वरूप को उन्होंने इसी बचपन में लाड़ प्यार के माध्यम से ही ग्रहण करना शुरू किया। उनकी सुकुमार मन में इन सब की गंभीर रेखा चित्र खिंच गई थी, इसलिए परवर्ती काल में अपने व्याख्यान के प्रसंग में इन सब बातों का उल्लेख कर एवं सुंदर भाषा में उनकी व्याख्या कर श्रोताओं को मुग्ध कर देते थे।
5: रामायण पर उनका इतना अधिकार हो गया था कि एक बार घर के पास रामायण गायकों के एक दल द्वारा एक पद विशेष को गाते समय कई पंक्तियां भूल जाने से अशुद्ध रूप से गाने पर नरेंद्र ने पदों को शुद्ध रूप से गाकर सभी लोगों से प्रशंसा पाई थी। गायकों ने भी अपनी भूल मानकर श्रोताओं से माफी मांगी थी और नरेंद्र को मिली थी ढेर सारी मिठाइयां।
0: उनके महाभारत पाठ के संबंध में भी एक मर्मस्पर्शी घटना जानी जा सकती है। सन 1869 में दत्तग्रह के तत्कालीन मुखिया नरेंद्रनाथ के छोटे दादाजी काली प्रसाद दत्त मृत्युशैया पर पड़े थे। आखिरी समय में उनमें एक अंतिम इच्छा जगी कि मृत्यु पूर्व परिवार के बच्चों में से किसी के मुख से महाभारत का पाठ सुनेंगे। लज्जावश कोई भी बालक या बालिका पाठ करने के लिए राजी नहीं हुआ। सबने सबसे छोटे नरेंद्र से पाठ करने के लिए कहा। वे तुरंत अपने छोटे छोटे हाथों में विशालकाय महाभारत को समाहित किए हुए दादाजी के कमरे में आए और अपनी मधुर वाणी में महाभारत के कई पन्ने पढ़कर सुना दिए।
5: केवल अंतिम घड़ी में ही नहीं, उसके पहले भी दादाजी ने नरेंद्र के मुख से कई दिनों तक संपूर्ण रामायण का पाठ सुना था। पाठ के समय माँ भुवनेश्वरी देवी भी उपस्थित रहा करती थी।
0: परलोक की ओर आंखें पसारे हुए वृद्ध ने अपने इस कुल तिलक के महाभारत पाठ से उल्लासित होकर आशीर्वाद दिया।
8: बेटा, समय आने पर तुम निश्चय ही बड़े आदमी बनोगे। हाँ
9: मेरे बेटे को यही आशीर्वाद दें कि वो हमेशा सच के पथ पर चले और मानवता की सेवा करे।
8: तुम्हारी जैसी माँ पाई है इस बालक ने, इसे कौन रोक सकेगा? अवश्य ही ये हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा।
9: बिले बेटा, दादाजी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, उन्हें प्रणाम नहीं करोगे?
1: हाँ माँ, दादाजी प्रणाम।
8: जीते रहो बेटा, जीते रहो, खुश रहो, चुप चुप जियो, चुप चुप जियो।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आलेख डॉक्टर पापिया दास गुप्ता, निर्देशन चैतन्य भट्ट, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वरा संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे प्रत्येक बुधवार और रविवार इसी समय अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

विवेकानंद के बचपन की कथाओं में उनका साहस, स्वाभिमान, तर्कपूर्ण मस्तिष्क और बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है। बचपन के गुणों को देखकर भावी मंगलमय जीवन का भी एक सुंदर पूर्वाभास पाना संभव होता है। कम से कम नरेंद्रनाथ के संबंध में ये बात निसंकोच कही जा सकती है। नरेंद्र की सुगठित सुंदर देह थी, दोनों नेत्र बड़े बड़े और उज्जवल थे, गौर वर्ण, अंग प्रत्यंग लावण्य मंडित और मुख मंडल पर प्रतिभा की दीप्ति, देखते ही प्यार करने की इच्छा होती।

0: बचपन में नरेंद्र को अपने साथियों के साथ शिव का ध्यान करने का खेल बहुत पसंद था। उनके साथी भी उनके साथ बदन पर राख मलकर आंख बंद करके ध्यान करने बैठ जाते थे। एक दिन सब बच्चे ऐसा ही खेल रहे थे, अचानक एक बच्चे ने आंख खोलकर देखा कि सामने एक काला नाग फन फैलाए हुए है। उस बच्चे के मुंह से चीख निकल गई।
1: पर नरेंद्र का ध्यान नहीं टूटा, वो वहीं बैठा रहा। बच्चों की चीख पुकार सुन बड़े बुजुर्ग दौड़े आए। उन लोगों ने आकर अत्यंत भयावह दृश्य देखा। आंखें मूंद कर बालक बैठा है और उसके सामने विषैला सांप भयंकर फन फैलाए डोल रहा है। देखकर प्राण सूख गए, सांसें थम गईं। आवाज करने पर सांप बालक को डस सकता था। इस भय से निरुपाय हो सभी चुपचाप खड़े रहे। थोड़ी देर बाद वो सांप स्वयं ही कहीं चला गया। ढूंढने पर भी वो सांप नहीं मिला। माता बेटे से लिपट गई और कहने लगी,
2: बेटा बेटा बिले, तू ठीक तो है ना? हाँ, तेरे दोस्तों ने तुझे इतना जगाया, तू उनके साथ भागा क्यों नहीं? बोल बोल, तू भागा क्यों नहीं?
3: क्या हुआ माँ, तुम सब लोग यहाँ क्यों भीड़ लगाए खड़े हो? तुम लोग रो क्यों रहे हो? ए ए ए निताई, तू इतना डरा हुआ क्यों है? क्या हुआ?
2: बिल्ले, तुझे क्या सचमुच होश नहीं था? हा? अरे इतना बड़ा सांप तेरे सामने फुफकार रहा था और तू आंखें मूंद कर बैठा था। बोल,
3: सांप कहाँ? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला।
2: हे भगवान, हे शिव शंकर, आज तुमने मेरे बेटे की रक्षा की है। भगवान ऐसे ही कृपा बनाए रखना देव।

0: नरेंद्र बचपन से ही अपने हम उम्र साथियों के साथ नई नई जगह जाने के लिए तैयार रहते थे, चाहे वो मकर संक्रांति के दिन गंगा किनारे जाकर दीप जलाकर पानी में बहा देने की बात हो या कोई मेला देखने जाना हो। दूसरों की मदद के लिए बालक नरेंद्र हमेशा तत्पर रहते थे। एक दिन जब वे सिर्फ 6 साल के थे, अपने दल बल के साथ चैत्र संक्रांति में होने वाले शिवजी का मेला, जिसे गाजन का मेला कहते हैं, देखने गए थे। लौटने में शाम हो गई थी। नरेंद्र मेले से खरीदी हुई शिवजी की मूर्ति हाथ में लिए जल्दी जल्दी घर वापस आ रहे थे। कुछ साथी पीछे रह गए थे। अचानक पीछे शोरगुल सुनकर नरेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा। उसका एक दोस्त हक्का बक्का सा सड़क के बीचों बीच खड़ा है और एक बग्घी तेजी से उसकी तरफ बड़ी चली आ रही है। कोचवान घोड़े का रास पकड़कर उसे रोकने की कोशिश भी कर रहा है, पर घोड़ा है कि बड़ा ही चला आ रहा है।
1: ए बच्चा, हट जा रे, हट जा, हट जा, हट जा, देख नहीं रहा, घोड़ा बेकाब हो गया है, हटो हटो हटो सब, हट जाओ यहाँ से।
2: अरे गया, ये तो गया,
3: अरे गया,
0: सब चिल्ला रहे थे, पर कोई आगे बढ़कर उस बच्चे को बचाने नहीं आ रहा था। नरेंद्र ने देखा, झट हाथ में धरी मूर्ति को किनारे पर रखा और बीच सड़क पर कूदकर अपने साथी को एक झटके से किनारे खींच लिया। बग्घी तेजी से निकल गई। भीड़ अवाक होकर देखती रही।
4: क्या कर रहा था बीच सड़क में? मरना था क्या? अब रो क्यों रहा है? वो घोड़ा तो गया। चल अब घर चल। ले ले मेरा हाथ पकड़। अरे अरे रुक तो जरा, मेरी मूर्ति तो उठा लूं। अब चल।
5: शाबाश बेटे, तुमने तो इसकी जान बचा ली, ना जाने क्या हो जाता आज।
6: वाह, बहुत बहादुर हो, किसके बेटे हो भाई?
4: विश्वनाथ दत्त का बेटा हूँ, अब खड़ा क्यों है, चल ना।
0: घर आकर नरेंद्र ने माँ को सारी बातें बता दी। माँ सांस रोककर सारी घटना सुनती रही, फिर बार बार भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद देती रही।
7: हे भगवान, हे शिव शंकर, तुमने आज मेरे बेटे को बचा लिया भगवान। बिले, आज कितना बड़ा अनर्थ हो सकता था तुझे अंदाजा भी है? तुम दोनों को वो घोड़ा कुचल भी सकता था बेटा।
4: माँ, मैंने अपने दोस्त को बचाकर क्या कोई गलती की?
7: ओह मेरे वीर पुत्र, नहीं बेटा, तुमने कोई गलत काम नहीं किया, पर माँ का दिल है ना, हमेशा डर लगा रहता है। बेटा, तुमने तो सच्चे इंसान का काम किया है, हमेशा ऐसे ही इंसान बने रहना। तुम्हें मालूम नहीं बेटा, उस बच्चे की माँ आज तुम्हें कितना आशीर्वाद दे रही होंगी। कितना आशीर्वाद आज मिला है तुझे। ओ बेटा, बेटा, ओ, मेरा राजा बेटा, राजा बेटा मेरा।

0: नरेंद्र के साहस और तत्परता के कई किस्से हैं। एक बार जब वे 7-8 साल के थे, अपने दोस्तों के साथ नाव से चांदपाल घाट से मटिया बुर्ज स्थित लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह का चिड़ियाघर देखने गए। लौटते समय एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई। उसने नाव में उल्टी कर दी। इससे नाराज होकर मल्लाहों ने उस लड़के को नाव साफ करने को कहा। लड़के ने किसी दूसरे से नाव साफ करवा लेने की बात कही, दुगना भाड़ा देने का वादा भी किया, पर मल्लाहों ने जिद नहीं छोड़ी। गाली गलौच करने लगे और किनारे पर आकर कहा,
1: ए, कोई कुछ नहीं बोलेगा, पहले नाव साफ करो फिर किनारे लगाएंगे, किसी को उतरने भी नहीं दूंगा।
2: बात झगड़ा और मारपीट में बदलने की नौबत आ गई। घाट के दूसरे मल्लाहों को भी इन मल्लाहों का साथ देते देख लड़के घबरा गए। नरेन उन सभी से उम्र में छोटा था, पर वो छलांग लगाकर किनारे पर आ गया और बचने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसने दो गोरे अफसरों को उधर आते देखा। नरेन बिना घबराए उनकी तरफ दौड़ा और अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा,
3: कम, सेव बोट, फ्रेंड्स, सेव।
2: गोरों ने परिस्थिति भांप ली और इस सुदर्शन बालक को स्नेह पूर्वक अंग्रेजी में कहा,
1: ओके, लेट्स सी व्हाट हैपेंड देयर।
2: गोरों का हाथ पकड़कर नाव की ओर ले चले। गोरों को देखकर ही मल्लाह डर गए और बिना कुछ कहे नाव किनारे लगा दी। बच्चे उतर गए। गोरों ने प्रसन्न होकर नरेन को प्यार से कुछ खिलाने पिलाने के लिए ले जाना चाहा, पर नरेन उसने मना कर दिया और कहा,
1: ओके किड, नाइस टू मीट यू, यू आर सच अ ब्रेव बॉय।
3: थैंक यू, लेट मदर, वेट, गोइंग,
1: बाय बाय,
3: थैंक यू।
2: और साथियों के साथ घर लौट आए।
0: एक और घटना का जिक्र करना चाहूंगी। नरेंद्र जब 12 साल के थे, तब इंग्लैंड के भावी राजा प्रिंस ऑफ वेल्स, जो बाद में सम्राट सप्तम एडवर्ड कहलाए, भारत दर्शन के लिए आए थे। उसी समय सिरापिस नाम का एक विराट जंगी जहाज कलकत्ते के बंदरगाह में आ रुका। नरेंद्र और उनके साथियों ने तय किया कि वे उस जहाज को देखने जाएंगे, पर उसे तो यूं ही नहीं देखा जा सकता। चौरंगी क्षेत्र में एक साहब अफसर के दफ्तर से अनुमति पत्र निकलवाना होगा, तभी जहाज में चढ़ा जा सकेगा।
2: नरेंद्र दलबल समेत चौरंगी पहुंचे, दफ्तर ढूंढ निकाला। सामने ही एक विशाल काय मूंछ वाला दरबान बैठा था। उसने बच्चों की टोली से पूछा,
4: यहां भीड़ क्यों लगा रखी है? क्या चाहिए? चलो हटो यहां से, साहब लोगों के आने जाने का रास्ता है ये, हट जाओ वहां से।
3: दरबान जी, हमें अंदर जाने दो ना, हमें साहब से जहाज देखने की पर्ची भी तो निकलवाना है।
4: कह दिया ना नहीं, अभी साहब नहीं मिल सकते, काम कर रहे हैं।

0: क्यों रोक रहे हो?
1: बहस मत करो, बच्चे हो, बच्चे की तरह रहो, नहीं जाना है तुम्हें, बस।
0: नरेंद्र आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने देखा लोग दो मंजिल के एक कमरे में जा रहे हैं और पर्ची लेकर वापस आ रहे हैं। वह समझ गया साहब दो मंजिल के कमरे में बैठे हैं। उसने और भी देखा, उस कमरे तक जाने के लिए मकान के पीछे से लोहे की घुमावदार एक सीढ़ी भी है। उसने साथियों से कहा,
2: चलो चलो चलो सब, दरबान जी मना कर रहे हैं तो चले जाओ।
1: बस
2: तुम लोग कुछ दूर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आया।
3: दूसरे बच्चे दूर जाकर खड़े हो गए। नरेंद्र चुपचाप पीछे वाली सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया और आवेदकों के दल में सम्मिलित होकर पंक्ति में लग गया और बारी आने पर साहब के कमरे में घुस गया। साहब माथा झुकाए आवेदनों पर दस्तखत करते जा रहे थे। नरेंद्र ने आवेदन साहब के सामने रखा, हस्ताक्षर हो गया। वो चुपचाप सामने की सीढ़ी से नीचे उतर आया और दरबान के सामने आवेदन फहरा कर कहा,
2: ये देखो मिल गई ना अनुमति, बड़े आए थे रोकने वाले।
1: ए छोकरा, तुम कैसे ऊपर आ गया, बताओ।
2: हम जादू जानता है।
3: सब बच्चे हंसते हुए दरबान को मुंह चिढ़ाते हुए जहाज देखने चले जाते हैं।
0: नरेंद्र नाथ के सोने की क्रिया भी अद्भुत थी। दूसरों की तरह सिर तकिए पर रखते ही वे सो नहीं जाते थे। उन्हें पेट के बल सोने की आदत थी। आंख मूंदते ही वे अपनी भौहों के बीच एक अपूर्व ज्योति बिंदु देखा करते थे। यह बिंदु धीरे धीरे बढ़ता और क्रमशः अंडे का आकार धारण कर लेता और अचानक फटकर रंग बिरंगे तारों की तरह बिखर जाता और चारों दिशाओं को आलोकित कर बालक को ज्योति सागर में डुबो देता था। उस आलोक सागर में डूबते डूबते वे सो जाते।
3: हर रात ऐसा ही होता था। वो सोचते थे कि शायद हर आदमी को नींद ऐसे ही आती है, इसीलिए इस अति साधारण दैनिक घटना का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया था। बहुत दिनों बाद बड़े होने पर एक बार उन्होंने अपने एक मित्र से पूछा था,
2: क्यों भाई सोने से पहले क्या तुम्हें एक ज्योति दिखाई देती है?
4: नहीं तो?
2: मैं देखता हूँ, रोज देखता हूँ। बिस्तर पर लेटते ही सो मत जाना, कुछ देर आंख मूंद कर ध्यान करना, तुम्हें भी दिखाई देगी।
3: उस मित्र को ज्योति दिखी या नहीं ये तो किसी को नहीं पता, पर बाद में सन 1882 में श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने इस ज्योति दर्शन की बात सुनकर कहा था,
5: जो लोग ध्यान सिद्ध होते हैं

0: बचपन से ही नरेंद्र अपने हम उम्र साथियों के साथ तरह तरह के खेल और दूसरे बाल सुलभ क्रियाकलापों में जुटे रहते। हमेशा वे ही इन सभी आयोजनों के नेता होते। उनका नेतृत्व गुण बचपन से ही देखा गया था। उनसे उम्र में बड़े बच्चे भी उन्हें निर्विवाद नेता मान लेते थे। वे अपने दल के साथ कभी घूमने जाते, कभी खाना पकाने का खेल खेलते, कभी घर के आंगन में ही नाटकों का मंचन करते। ज्यादातर रामायण या महाभारत के प्रसंगों का खुद ही नाट्य रूपांतर करते और साथियों के साथ मिलकर मंचन करते।
1: हनुमान जी के प्रसंग उन्हें बहुत प्रिय लगते थे। वे अक्सर लंका दहन, गंधमार्दन पर्वत कंधे पर ले आना, अशोक वाटिका में सीता से मुलाकात आदि प्रसंगों का मंचन किया करते थे।

0: और शायद यह बताने की जरूरत नहीं कि वे खुद हनुमान की भूमिका में होते थे। एक लंबी सी पूंछ लगाकर हनुमान जी की नकल करते हुए वे उछलते कूदते रहते थे।
1: अरे दुष्ट रावण, तेरी ये हिम्मत, तूने श्री राम की पत्नी सीता मैया का हरण किया। ठहर, तुझे मजा चखाता हूँ। तुझे अपनी सोने की लंका पर बहुत गर्व है ना? ले, अब बचा ले इसे। आज मैं तेरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दूंगा। देखूं कौन रोकता है मुझे।
2: देखो, कूद कर उधर चला गया। हाय हाय, सबको जला दिया उसने।
1: हा हा हा हा हा, आओ पकड़ो मुझे। क्यों रावण महाराज, कैसा लग रहा है?
3: मेघनाथ कहाँ है? कुंभकर्ण को बुलाओ। सब वीर योद्धागण क्या सो रहे हैं? अरे कोई तो मेरी लंका को बचाओ, बचाओ, बचाओ।
1: ये रही तेरी जलती हुई पूंछ, रख ले इसे। मैं तो अपनी पूंछ लेके ये चला।
0: और भी कई प्रकार के खेल थे। उन दिनों कलकत्ते में गैस बत्ती आई थी, जिसे पेट्रोमैक्स कहते हैं। अंग्रेजों ने सोडा लेमोनेट बनाना भी शुरू किया था। नरेन को लेमोनेट पीना बहुत अच्छा लगता था, सो उन्होंने घर के आंगन में ही गैस और सोडा लेमन का कारखाना बनाने का मन बना लिया था। फिर क्या था, पूरी सेना इकट्ठी हो गई। कलपुर्जे नुमा कबाड़ इकट्ठा करके कारखाना खुल गया। पुराने जस्ते के नल, मिट्टी की हांडी और घास फूस के साथ गैस घर का निर्माण हुआ। घास फूस के जलते ही धुआं होता और नल से होकर ऊपर उठता। नरेन कमर पर हाथ रखकर कुछ दूर खड़े होकर गंभीर दृष्टि से सब कुछ देखते और अपनी आविष्कार की सफलता पर आत्मतृप्त होते। दूसरे बच्चे भी ताली बजा बजा कर आनंदित होते और नरेंद्र को शाबाशी देते।
2: अरे नरेन, ये तो सचमुच का कारखाना बन गया रे, पर सोडा लेमोनेट कैसे बनेगा?
1: जरा चुप तो रहो, मुझे सोचने दो। इस हांडी में पानी लाओ, इसे गैस के पाइप से बांधो।
2: क्यों नरेन, ये बाजार वाले लेमोनेट जैसा ही होगा ना, मीठा मीठा।
1: होगा तो वैसे ही। अरे अरे, गैस कम क्यों निकल रही है? और आग दो, आग दो, घास डालो और अब फूको, फूंक लगाओ। अरे जोर से लगाओ, जोर से, और जोर से लगाओ।
0: वाह रे नरेन, धन्य है तुम्हारी कल्पना शक्ति।
4: एक बार नरेंद्र ने सर्कस देखने के बाद घर पर ही ट्रेपेज बनाने की ठानी। ट्रेपेज का खेल उन्हें बहुत पसंद आया था। कैसे खिलाड़ी हवा में झूलते हैं, छलांग लगाकर दूसरे झूले को पकड़ लेते हैं, बस सोचने भर की देर थी। साथियों को बुलाकर कहीं से रस्सी ले आए और बगीचे के पेड़ पर ट्रेपेज का झूला बांधने लगे। जितना काम नहीं हो रहा था, उससे ज्यादा हंगामा मच रहा था। देखते देखते बाहर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। बच्चों की हरकतें देख लोग मजा ले रहे थे, पर कोई मदद करने नहीं आ रहा था। बच्चे परेशान हो रहे थे, वे ट्रेपेज बांध नहीं पा रहे थे। इतने में नरेंद्र की नजर एक अंग्रेज पर पड़ी। वह हट्टा कट्टा जवान था, शायद किसी जहाज में नाविक का काम करता होगा, क्योंकि वह वैसे ही पोशाक पहने हुए था। नरेंद्र उनके पास जाकर बोला,
1: सेलर।
5: यस सर।
1: हेल्प।
5: ओके।
0: वो अंग्रेज ऊपर चढ़कर झूला टांगने में मदद करने लगा। अचानक उसका पांव फिसला और वो नीचे जमीन पे आ गिरा।
5: ओह माय गॉड,
0: वो बेहोश हो गया था। उसके सिर से खून बह रहा था। सब लोग थोड़ी देर के लिए सकते में आ गए। फिर सब ने एक साथ बोलना शुरू किया।
5: अरे इसका तो सिर फट गया,
3: मर तो नहीं गया,
5: क्या पता हिलडुल भी तो नहीं रहा।
3: तो अब क्या होगा?
5: होगा क्या, पुलिस आएगी और इन बच्चों को पकड़कर ले जाएगी।
3: ए पुलिस, अरे भागो भैया, पुलिस के झंझट में कौन पड़ेगा।
5: हाँ हाँ, तुम सच बोलते हो, चलो चलो भागते, भागो भागो भागो भागो।
4: देखते ही देखते सब भाग गए। बच्चे रोने लगे। नरेन आगे आया।
1: ए ए, कोई पानी लाओ, तुम मेरी मदद करो, मैं अपनी धोती फाड़ कर पट्टी बना देता हूँ। जरा इनका सर पकड़ तो लो, मैं पट्टी बांध देता हूँ।
0: बच्चों ने मिलकर उनका घाव धोकर पट्टी बांधी, मुंह पर पानी का छींटा दिया। थोड़ी देर में उस अंग्रेज को होश आ गया। कुछ देर तक आराम करके वह उठ बैठा। नरेन उसे पास वाले कमरे में ले गए, घर के बड़ों को बुलाया और डॉक्टर ने आकर उसकी मरहम पट्टी की। नरेंद्र ने परिवार वालों से मांग कर उसे कुछ पैसे भी दिए। वह धन्यवाद देकर चला गया।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आलेख डॉक्टर पापिया दास गुप्ता, निर्देशन चैतन्य भट्ट, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वरा संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है मोहन किशोर नामदास। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा और महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

ज्ञान परंपरा के आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र उदित हुए हैं जिनका प्रकाश समय की सीमाओं को लांघकर पीढ़ियों का मार्ग आलोकित करता रहा है। आयुर्वेद के पुनरुत्थान से जुड़े एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति। जब परंपरा और आधुनिकता के बीच संवाद की आवश्यकता थी, तब उन्होंने आयुर्वेद की सनातन चेतना को नए युग की धड़कनों से जोड़ा। उनके लिए आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं थी, बल्कि वो आयुर्वेद को भारतीय संस्कृति की जीवंत आत्मा मानते थे। उसे जीवन को संतुलन, स्वास्थ्य और समरसता प्रदान करने वाली एक संपूर्ण दृष्टि मानते थे। ज्ञान उनकी साधना था, सेवा उनका धर्म और आयुर्वेद का उत्थान उनका संकल्प। वो आधुनिक भारत में आयुर्वेद चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सबसे प्रमुख प्रणेताओं में से एक थे। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति का जन्म 3 मार्च सन 1880 को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के माधोवरम गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अचंता रमैया था। परिवार के आध्यात्मिक वातावरण ने उनके व्यक्तित्व की नींव रखी। पिता की प्रेरणा से ही उन्होंने वेद पुराण और संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। उनके बाल्यकाल पर उनके दादा सुब्बा रायडू और प्रसिद्ध समाज सुधारक कुंदुकुरी वीरेश लिंगम का गहरा प्रभाव पड़ा। इन दोनों विभूतियों के सानिध्य ने उनके भीतर ज्ञान और समाज सेवा के बीज बोए। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उनकी माताजी गंभीर रूप से बीमार हुईं। उपचार के दौरान अचंता लक्ष्मीपति की भेंट राजमहेंद्रम के एक प्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर सीतारमैया से हुई। ये केवल एक वैद्य से भेंट नहीं थी, बल्कि आयुर्वेद से उनका पहला सटीक परिचय था। डॉक्टर सीतारमैया ने उन्हें आयुर्वेद के व्यावहारिक सूत्रों से परिचित करवाया और उनके मन में इस भारतीय चिकित्सा परंपरा के प्रति आदर भाव जागृत किया। इस तरह भारत की इस अमूल्य विरासत को नई प्रतिष्ठा दिलवाने का संकल्प उनके मन में जागा।

ये वो समय था जब भारत में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा था। अचंता लक्ष्मीपति ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को समझने का निश्चय किया। सन 1904 में उन्होंने बीए की शिक्षा पूरी की तथा छात्रवृत्ति प्राप्त कर मद्रास मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। इस तरह सन 1909 में उन्होंने एलोपैथी चिकित्सा में प्रामाणिक डिग्री हासिल की। सन 1910 में उन्होंने मद्रास में अपनी प्रैक्टिस शुरू की और वो वेंकटगिरी के राजा जैसे संभ्रांत वर्ग के पारिवारिक चिकित्सक बने। लेकिन सन 1914 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित किया गया, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद को गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति घोषित करना था। इसके विरोध में डॉक्टर लक्ष्मीपति ने अपना नाम एलोपैथी के मेडिकल रजिस्टर में दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार के इस कदम को उन्होंने केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं माना, उन्होंने इसे भारतीय ज्ञान परंपरा के सम्मान का प्रश्न समझा। ये उनके पेशेवर जीवन के लिए जोखिमपूर्ण समय था, लेकिन इसी समय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का प्रवेश हुआ, वैद्य रत्न पंडित देवी गोपाल चारलू। वो मद्रास के सुप्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान थे जिन्होंने अचंता लक्ष्मीपति की प्रतिभा को पहचाना तथा अपने संरक्षण में उन्हें आयुर्वेद के गहन अध्ययन का अवसर दिया। सन 1914 से 1919 तक अचंता लक्ष्मीपति ने उनसे गहन ज्ञान प्राप्त किया। सन 1919 में विश्व स्पेनिश फ्लू नामक घातक महामारी की चपेट में आ गया। इस महामारी ने दुनिया की एक तिहाई आबादी को अपनी चपेट में ले लिया था। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ये महामारी फैली थी। ऐसे कठिन समय में डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से हजारों रोगियों को राहत पहुंचाई। इस अनुभव ने उनके इस विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता है। इसके बाद उन्होंने एलोपैथी इलाज पूरी तरह से छोड़ दिया और स्वयं को आयुर्वेद के लिए समर्पित कर दिया। सन 1920 में उनके गुरु वैद्य रत्न पंडित देवी गोपाल चारलू का निधन हो गया और गुरु का दायित्व शिष्य के कंधों पर आ गया। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को मद्रास आयुर्वेदिक कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। सन 1920 से 1928 तक उन्होंने इस संस्था को केवल एक शिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि उसे आयुर्वेदिक चेतना का केंद्र बिंदु बना दिया। इस कॉलेज को चलाने के लिए मुंगला के राजा ने भी बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति स्वास्थ्य को जीवन पद्धति का विषय मानते थे। यही कारण है कि उन्होंने सन 1926 में मद्रास के पास स्थित आवड़ी में आरोग्य आश्रम समिति की स्थापना की। ये केवल एक आश्रम नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य और प्रकृति के समन्वय का प्रयोग था। एक ऐसा स्वास्थ्य ग्राम जहां उपचार के साथ साथ जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने युवा वैज्ञानिक डॉक्टर यल्ला प्रगदा सुब्बाराव की प्रतिभा को पहचान कर उनके प्रारंभिक शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया और उनकी उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्हें चमत्कारिक औषधियों का जनक माना जाता है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति पर रमण महर्षि के आध्यात्मिक विचारों का गहरा प्रभाव था, जिन्होंने उनके चिंतन और विचारधारा को एक सार्थक दिशा प्रदान की। वो गांधी जी के विचारों से भी अत्यधिक प्रभावित थे तथा स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।

सन 1933 में डॉक्टर अजंता लक्ष्मीपति की सेवाओं और नेतृत्व क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई। बीकानेर में आयोजित ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे देश में फैल रही थी। लोग उन्हें केवल एक चिकित्सक के रूप में नहीं बल्कि आयुर्वेद का पुनरुत्थान करने वाले मनीषी के रूप में देख रहे थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी यात्रा अभी शेष थी, एक यात्रा जो उन्हें गांधी जी के और निकट ले गई, एक यात्रा जिसने गांव गांव जाकर स्वास्थ्य संदेश पहुंचाया। सन 1938 का साल भारत की स्वाधीनता के स्वप्न से आंदोलित साल था। महात्मा गांधी ग्रामोदय और स्वावलंबन के विचार को जन जन तक पहुंचा रहे थे। इसी समय डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने एक अभिनव अभियान आरंभ किया जिसका नाम था आरोग्य यात्रा। वो लगभग 100 चिकित्सकों के साथ पैदल चलते हुए गांव गांव पहुंचे। उन्होंने लोगों को स्वच्छता, संतुलित जीवन शैली और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सिद्धांतों का महत्व समझाया। वो पंच शुद्धि प्रणालिका के 5 नियमों का संदेश लिए आगे बढ़ते रहे। अपने इस अभियान में उन्होंने प्रत्येक गांव में कम से कम 1 एकड़ भूमि पर औषधीय पौधों का उद्यान विकसित करने हेतु लोगों को प्रेरित किया। उनका मानना था कि स्वास्थ्य अस्पतालों से नहीं बनता, वो विकसित होता है स्वच्छ विचारों, संतुलित आहार और प्रकृति के सानिध्य में। डॉक्टर लक्ष्मीपति के इन प्रयासों से गांधी जी अत्यंत प्रभावित हुए। सन 1939 में गांधी जी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सेवाग्राम आश्रम आने का निमंत्रण दिया। वर्धा का सेवाग्राम आश्रम उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था। सेवाग्राम पहुंचकर उन्होंने केवल एक चिकित्सक की भूमिका नहीं निभाई बल्कि उन्होंने स्वास्थ्य और ग्राम विकास के गांधीवादी स्वप्न को मूर्त रूप देने में सहयोग दिया। गांधी जी ने उन्हें आश्रम में एक विशाल उद्यान विकसित करने का दायित्व सौंपा। इस उद्यान का उद्देश्य केवल औषधियां उगाना नहीं था बल्कि ये सिद्ध करना था कि भारत के गांव अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मीपति की धर्मपत्नी श्रीमती रुक्मिणी लक्ष्मीपति भी राष्ट्र सेवा को समर्पित रहीं। वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं और सन 1946 में मद्रास प्रांत की सरकार में वो सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बनी। इस तरह पति पत्नी ने साथ मिलकर भारतीय चिकित्सा के विकास की एक नई धारा प्रवाहित की। सन 1947 में भारत की आजादी के बाद भी वो राष्ट्र सेवा को समर्पित रहे। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर वो समाज सुधार के कार्य में भी निरंतर संलग्न रहे। डॉक्टर लक्ष्मीपति अंतरजातीय विवाह के प्रबल पक्षधर थे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपनी जाति से बाहर एक गैर ब्राह्मण युवक से किया। इसके साथ ही वो पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के भी पक्षधर थे। सन 1960 में भारत सरकार ने उन्हें योजना आयोग में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया जहां उन्होंने रोग प्रतिरोधक चिकित्सा और जीवन शैली सुधार पर विशेष बल दिया। उन्होंने तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में चिकित्सा पद्धतियों पर लगभग 100 पुस्तकें लिखीं, जिनमें से 63 पुस्तकें विशुद्ध रूप से भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और आयुर्वेद के अनुवादों पर आधारित थीं। उनकी आत्मकथा आयुर्वेद के पुनरुत्थान का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को देश भर में भेषज रत्न, प्राणाचार्य तथा आयुर्वेद वाचस्पति जैसी कई उपाधियों से विभूषित किया गया था। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 6 अगस्त सन 1962 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है लक्ष्मण प्रसाद दुबे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, जबलपुर से वृंदा हिंगनीकर और उज्जैन से संजीव जैन। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

भारतीय स्वाधीनता का इतिहास ऐसे अनेक राष्ट्रभक्तों की कहानी कहता है जो समय की प्रचंड आंधियों के बीच दीप नहीं दिशा बनकर उभरे। भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले एक ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे गणेश घोष। उनकी यात्रा उस नदी की तरह थी जो चट्टानों से टकरा कर भी अपना मार्ग बनाना जानती है। उनका संकल्प उस अग्नि की तरह था जो स्वयं तप कर भी अपने आसपास उजाला बिखेरती है। गणेश घोष का जन्म 22 जून सन 1900 को अविभाजित भारत के जैसोर नामक स्थान पर हुआ था जो बांग्लादेश के खुलना जिले के पास स्थित है। उनके पिता का नाम विनोद बिहारी घोष था। गणेश घोष बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे तथा अपने आसपास की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति देखकर बहुत अधिक उद्वेलित हुआ करते थे। उनकी शिक्षा आगे बढ़ती रही और आरंभ में उन्होंने ब्रिटिश रेलवे में काम भी किया, लेकिन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसी दौरान कोलकाता के बंगाल तकनीकी संस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए उन्होंने चिटगांव में एक स्वदेशी कपड़े की दुकान भी खोली थी। उन्होंने जो मैकेनिकल और तकनीकी कौशल की शिक्षा ग्रहण की थी वो शिक्षा केवल आजीविका के लिए नहीं थी, बल्कि इस कौशल का प्रयोग वो देश को आजाद कराने के लिए हथियार और बम बनाने के लिए भी करने का विचार करने लगे। भारत की आजादी उनकी आंखों का पहला सपना था। अंग्रेजों की गुलामी से वो अत्यधिक आक्रोशित रहा करते थे तथा मन ही मन क्रांति पथ पर चलने का उन्होंने संकल्प ले लिया। उन्हें विश्वास था कि भारत बहुत जल्द आजाद होगा।

कलकत्ता में पढ़ाई के दौरान ही गणेश घोष बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन युगांतर के संपर्क में आ गए थे। वो बहुत जल्द इस संगठन के सक्रिय सदस्य बन गए। चटगांव में रहते हुए ही उनकी भेंट मास्टर सूर्यसेन से हो चुकी थी। सूर्यसेन की सादगी और दृढ़ संकल्प से वो अत्यधिक प्रभावित हुए और उनके सहयोगी बन गए। बहुत जल्द चटगांव में क्रांतिकारियों का समूह बना, जिसमें सूर्यसेन के साथ गणेश घोष, अनंत सिंह और लोकेन बल शामिल थे। इन्हें चटगांव में क्रांतिकारियों की त्रिमूर्ति कहा जाता था। गणेश घोष ने चटगांव के युवाओं को व्यायाम शालाओं के माध्यम से संगठित करना शुरू किया। वो युवाओं को शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाने, लाठी चलाने और अनुशासन सिखाने के प्रभारी थे। वो मास्टर सूर्यसेन द्वारा स्थापित चटगांव रिपब्लिकन आर्मी में सघन रूप से सक्रिय हो गए। ये एक सशस्त्र क्रांतिकारी संगठन था, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से चटगांव को मुक्त कराना तथा पूरे देश में विद्रोह की चिंगारी भड़काना। इस तरह इस क्रांतिकारी संगठन ने मजबूत आकार ले लिया। सन 1930 आते आते चटगांव की धरती पर एक बड़ी योजना आकार लेने लगी और इसके सूत्रधार थे मास्टर सूर्यसेन, गणेश घोष और अनंत सिंह। इन्होंने निश्चय किया कि अंग्रेजी शासन को सीधे चुनौती दी जाए। योजना बनी कि चटगांव के दोनों शस्त्रागारों पर कब्जा कर लिया जाए, संचार व्यवस्था को ठप कर दिया जाए, रेलवे संपर्क काट दिया जाए ताकि ब्रिटिश सेना की सहायता वहां तक न पहुंच सके। 18 अप्रैल सन 1930 गुड फ्राइडे का दिन था। रात करीब 10 बजे भारतीय रिपब्लिकन आर्मी की वर्दी पहने क्रांतिकारियों ने हमला बोल दिया। गणेश घोष ने पुलिस शस्त्रागार पर हमला करने वाले दस्ते का नेतृत्व किया। उन्होंने बड़े ही साहस

और चतुराई से वहां मौजूद पहरेदारों को निष्क्रिय कर दिया तथा भारी मात्रा में बंदूकें और मस्कट जब्त कर लिया। उधर अनंत सिंह के समूह ने सहायक बल शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। शस्त्रागार पर पूरी तरह कब्जा करने के बाद सभी क्रांतिकारी पुलिस शस्त्रागार के बाहर इकट्ठा हो गए। वहां मास्टर सूर्यसेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, सैन्य सलामी दी गई और अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा कर दी गई। गणेश घोष इस नवगठित क्रांतिकारी व्यवस्था में महत्वपूर्ण दायित्वों के साथ संलग्न हुए, लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कुछ ही दिनों में ब्रिटिश सेना ने चटगांव को चारों ओर से घेर लिया। परिस्थिति देखकर क्रांतिकारी दल जलालाबाद की पहाड़ियों की ओर बढ़ चला।

22 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश सेना ने जलालाबाद की पहाड़ियों को घेरकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस युद्ध में गणेश घोष ने युवाओं का ऐसा हौसला बढ़ाया कि क्रांतिकारियों की सटीक फायरिंग के सामने ब्रिटिश सेना टिक नहीं पाई, उसे पीछे लौटना पड़ा। इसके बाद मास्टर सूर्यसेन ने क्रांतिकारियों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर गांवों में छिपने का आदेश दिया। गणेश घोष, अनंत सिंह, लोकेन बल और आनंद गुप्ता हुगली जिले के चंदन नगर में पहुंचे, जो उस समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, इसलिए ये स्थान ब्रिटिश पुलिस के सीधे अधिकार क्षेत्र से बाहर था। यहां क्रांतिकारी सुहासिनी गांगुली और शशधर आचार्य ने पति पत्नी होने का नाटक कर एक घर किराए पर ले लिया, जहां गणेश घोष और उनके साथी छिपे हुए थे। ब्रिटिश खुफिया विभाग को इस ठिकाने का पता चल गया। पुलिस ने इसे घेरकर भयंकर गोलाबारी शुरू की। इस मुठभेड़ में गणेश घोष के साथी मखनलाल घोष शहीद हो गए और गणेश घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। अपनी जेल यात्रा में भी वो चुप नहीं बैठे। उन्होंने जेल में दो बड़ी भूख हड़ताल भी की थी। उनकी रिहाई के लिए देशव्यापी आंदोलन चले। महात्मा गांधी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और अन्य शीर्ष नेताओं ने ब्रिटिश सरकार पर लगातार दबाव बनाया और अंततः 1946 में वो रिहा हुए। आजादी के बाद उन्होंने शस्त्र छोड़कर जन आंदोलन और चुनावी राजनीति का रास्ता चुना। वो पश्चिम बंगाल के गरीब और शोषित वर्ग की आवाज बनकर उभरे। आजादी के बाद वो लगातार 3 बार पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य चुने गए। सदन में वो अपनी प्रखर वाणी और शोषितों की आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे। सन 1967 में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। वो दक्षिण कलकत्ता की सीट से चुनाव जीतकर 4th लोकसभा के सदस्य बने। अपने जीवन के अंतिम 2 दशकों में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि चटगांव विद्रोह और उनके शहीदों का इतिहास आने वाली पीढ़ियों तक अवश्य पहुंचे। उन्होंने इसी उद्देश्य से बंगाली और अंग्रेजी में कई संस्मरण, लेख और पुस्तकें लिखीं। उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है चट्टग्राम विप्लवेर बन्ही शिखा। ये उस दौर का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। वो जीवन के अंत तक कोलकाता के एक छोटे से मकान में बहुत ही सादगी से रहे। उन्हें जो भी पेंशन या भत्ते मिलते थे, उसे वो जन कल्याण हेतु दान कर दिया करते थे। अपने जीवन का पल पल भारत भूमि को समर्पित करते हुए उन्होंने 16 अक्टूबर सन 1994 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि नारायण मल्हार जोशी का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 5 जून। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश से प्रवीण कुमार झा और दमोह से किशन घीवाला। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

भारतीय स्वाधीनता इतिहास में ऐसे अनगिनत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को एक तपस्या की तरह जिया, जिन्होंने सेवा को साधना माना तथा राष्ट्र प्रेम को जीवन का सर्वोच्च धर्म। उन्होंने स्वतंत्रता को केवल स्वप्न नहीं माना, बल्कि गांवों जंगलों में घूम घूम कर उसे जन जन का विश्वास, संघर्ष और संकल्प बना दिया। अपने जीवन का प्रत्येक क्षण राष्ट्र को समर्पित करने वाले ऐसे ही महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे लक्ष्मण प्रसाद दुबे। वो एक दूरदर्शी शिक्षाविद और समाज सुधारक भी थे। चूंकि उनका पूरा जीवन एक शिक्षक के रूप में बीता और अपने इस कर्तव्य को उन्होंने एक साधना माना, इसलिए वो आम जन में गुरु जी के नाम से प्रसिद्ध हुए। लक्ष्मण प्रसाद दुबे का जन्म 9 जून 1909 को दुर्ग जिले में हुआ था। ये वो समय था जब देश में राष्ट्रवाद की लहरें हिलोरें ले रही थीं। सन 1905 में बंग भंग आंदोलन की आंच से पूरा देश सुलग रहा था। ऐसे वातावरण में लक्ष्मण प्रसाद दुबे का बचपन बीत रहा था। उनकी आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्तर पर ही आरंभ हुई और शिक्षा के साथ साथ वो समाज की विषमताओं को भी देख रहे थे। शोषण और पराधीनता के प्रभाव से वो अत्यंत आहत हो जाया करते थे। विद्यार्थी जीवन से ही उनके भीतर अध्ययन के साथ साथ सामाजिक सरोकारों के प्रति गहरी रुचि थी। यही कारण है कि वो केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि समाज और राष्ट्र की परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते रहे। फिर वो समय आया कि जब देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन नई दिशा प्राप्त कर रहा था। स्वदेशी और सत्याग्रह के विचार लोगों को आकर्षित कर रहे थे। लक्ष्मण प्रसाद दुबे भी इस राष्ट्रीय चेतना से अछूते नहीं रहे। उनके मन में देश की स्वतंत्रता और समाज के उत्थान का भाव निरंतर प्रबल होता गया।

अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। वो अध्यापन का कार्य तो करते ही थे, इसके साथ ही उन्होंने अनेक युवाओं को राष्ट्र सेवा हेतु प्रेरित किया। भिलाई में शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए उनका संपर्क जिले के वरिष्ठ सत्याग्रही नरसिंह प्रसाद अग्रवाल से हुआ। अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में उन्होंने मद्य निषेध आंदोलन चलाया, स्वदेशी का संकल्प लिया तथा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। विदेशी वस्तुओं के साथ साथ उन्होंने जॉर्ज पंचम का चित्र भी जलाया। 1930 का दशक भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का अत्यंत महत्वपूर्ण समय था, जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया। इसी समय लक्ष्मण प्रसाद दुबे सक्रिय राजनीति में शामिल हुए। वो अब राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। वो जनसंपर्क संगठन निर्माण के साथ ही लोगों के भीतर राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम करने लगे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत शांत, सरल और कर्मठ था। वो मानते थे कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं बल्कि समाज में जागृति और आत्मसम्मान का संचार भी है। यही कारण है कि वो शिक्षा पर अत्यधिक बल देते थे। वो विशेष रूप से नारी शिक्षा और नारी स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर थे। सन 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा आरंभ की, तब इस आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से हुआ। सन 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा आरंभ की, तब इस आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से हुआ। क्योंकि यहाँ कोई समुद्र तट नहीं था, इसलिए सविनय अवज्ञा की भावना से जुड़ते हुए ब्रिटिश शासन के अन्य दमनकारी कानूनों को चुनौती दी गई। मध्य प्रांत में जंगल सत्याग्रह आंदोलन का प्रमुख रूप बन गया। वन क्षेत्रों में रहने वाले किसानों, जनजातीय समाज के लोगों और ग्रामीणों पर अंग्रेजों ने जंगलों में चराई, लकड़ी, घास और वन उपज लेने पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे थे। इसलिए सत्याग्रहियों ने इन कानूनों का उल्लंघन करने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ का पोड़ी जंगल सत्याग्रह 1930 के जंगल सत्याग्रहों में एक महत्वपूर्ण कड़ी था। छत्तीसगढ़ में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वन कानूनों के विरोध में किया गया था। धमतरी के पास स्थित बालोद के ग्राम पोड़ी में हुए जंगल सत्याग्रह का आरंभ जुलाई 1930 में हुआ, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने किया। लक्ष्मण प्रसाद दुबे चूंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में काम कर रहे थे, इसलिए जाहिर तौर पर वो इसमें सघन रूप से सक्रिय हुए। सत्याग्रहियों ने आरक्षित वन क्षेत्र में प्रवेश किया, घास और लकड़ी एकत्र की, पशुओं को प्रतिबंधित क्षेत्रों में चराया। इस तरह वन कानूनों का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। पोड़ी सत्याग्रह की पूरी रूपरेखा तथा दस्तावेजी काम अग्रवाल जी ने लक्ष्मण प्रसाद दुबे को सौंप दिया था। सत्याग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को उन्होंने गुप्त रूप से संरक्षित रखा और उसका पूरा लेखा जोखा एक रजिस्टर में दर्ज कर उसे संकलित किया। सत्याग्रह की इन सभाओं में महिलाएं भी आती थीं, जो चरखा लेकर आंदोलन का प्रतिनिधित्व करती थीं।

लक्ष्मण प्रसाद दुबे ने राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो लोगों के बीच जाकर उन्हें देश की स्थिति से अवगत कराते, स्वाधीनता आंदोलन के उद्देश्य को समझाते और राष्ट्रहित में लोगों को संगठित होने का संदेश देते। उनका मानना था कि स्वतंत्रता का संघर्ष केवल नेताओं का नहीं बल्कि जन सामान्य का संघर्ष है। सन 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया तब पूरा देश नई ऊर्जा से भर उठा और एक निर्णायक लड़ाई आरंभ हुई। इस समय भी लक्ष्मण प्रसाद दुबे छत्तीसगढ़ में सक्रिय थे। वो स्वाधीनता आंदोलन और जंगल सत्याग्रह में पूरी तरह से जुटे हुए थे। उनकी गतिविधियों पर अंग्रेजी शासन की नजर रहने लगी, लेकिन नरसिंह प्रसाद अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद भी वो रुके नहीं, वो आंदोलन को हवा देते रहे। परिणाम स्वरूप लक्ष्मण प्रसाद दुबे को गिरफ्तार करने का आदेश जारी हुआ। उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दिया और भूमिगत हो गए और वन्य क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन की लौ जलाते रहे। सन 1942 से 1947 तक वो दुर्ग, रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय रहे। 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद भी वो चुप नहीं बैठे। वो लगातार समाज सेवा के मार्ग पर चलते रहे। उनके लिए स्वाधीनता का अर्थ केवल अंग्रेजी शासन से मुक्ति नहीं था, वो एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहां शिक्षा, जागरूकता और मानवीय मूल्यों का विकास हो। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ही उन्होंने शिक्षा के महत्व को बहुत गहराई से समझ लिया था। वो अक्सर कहा करते थे कि किसी भी राष्ट्र का वास्तविक विकास शिक्षित और जागरूक नागरिकों के माध्यम से ही संभव है। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद उन्होंने किसी भी पद का लालच नहीं किया। आजादी के बाद उनका पूरा ध्यान सामाजिक जागरण और शिक्षा पर ही केंद्रित रहा। लक्ष्मण प्रसाद दुबे ने ग्रामीण अंचलों में शिक्षा के प्रसार और विद्यालयों की स्थापना की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो मात्र एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी नहीं थे बल्कि वो ग्रामीण शिक्षा जागरण के अग्रदूत भी थे। गुरुजी के रूप में उन्होंने गांव-गांव में शिक्षा की अलख जगाई, अनेक युवाओं को अध्यापन कार्य से जोड़ा और ग्रामीण अंचलों में विद्यालयीन शिक्षा के विस्तार की दिशा में मजबूत नींव रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत की आजादी, भारत का उत्थान, भारत की विजय ही उनके जीवन का अनंतिम लक्ष्य था। निस्वार्थ भाव से आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 23 जुलाई सन 1993 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसे महान राष्ट्र सेवी को।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 16 जून। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से सुब्बलक्ष्मी और लखनऊ से डॉक्टर प्रियदर्शनी चक्रवर्ती। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

भारत की स्वतंत्रता का अमृत वृक्ष केवल उन फूलों से नहीं महका जिनकी सुगंध दूर दूर तक पहुंची, बल्कि उसकी जड़ों में अनगिनत अनाम तपस्वियों का रक्त भी समर्पित है जिससे ये फला फूला। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे सीतांशु दत्त रॉय। युगांतर दल के इस निर्भीक सेनानी ने स्वाधीनता को केवल स्वप्न नहीं अपना जीवन व्रत बनाया और इस पुण्य यात्रा में उन्होंने अनगिनत कष्ट सहे, लेकिन उनके मन में जलती क्रांति की ज्वाला कभी मंद नहीं पड़ी। सीतांशु दत्त रॉय का जन्म 1 जुलाई सन 1907 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मैमनसिंह जिले के ढाकी नामक गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में पड़ता है। उनके पिता का नाम शिवदत्त रॉय था। ये 20वीं शताब्दी का उषाकाल था। भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य का कठोर शासन था और बंगाल की धरती क्रांति की ज्वाला से धधक रही थी। बंग भंग आंदोलन ने लोगों को झकझोर कर जगा दिया था। स्वदेशी आंदोलन जन जन की चेतना बन चुका था। ऐसे वातावरण में सीतांशु दत्त रॉय बड़े हो रहे थे। उनके पिता स्वयं राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत व्यक्ति थे, इसलिए सीतांशु दत्त रॉय के भीतर भी स्वाभाविक रूप से राष्ट्र चेतना जागृत होने लगी। ढाका, मैमनसिंह और बारिसाल जैसे जिले गुप्त क्रांति गतिविधियों के सबसे बड़े गढ़ बन चुके थे। क्रांतिकारी दल युगांतर की गतिविधियां लगातार जारी थीं। इसी बीच सीतांशु दत्त रॉय का संपर्क युगांतर के क्रांतिकारियों से हुआ और वो युगांतर के उद्देश्य से बहुत अधिक प्रभावित हुए और इस संगठन के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करने लगे। उनके भीतर केवल एक संकल्प था, संकल्प भारत की आजादी का।

युगांतर सशस्त्र क्रांति की मशाल लिए आगे बढ़ रहा था। इस दल का उद्देश्य केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये अखाड़ों के माध्यम से युवाओं को शारीरिक रूप से सशक्त बनाता था। इतना ही नहीं, यहां युवाओं को हथियारों का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। ये संगठन क्रूर ब्रिटिश अधिकारियों को अपना निशाना बनाता था। उन दिनों अंग्रेजी शासन की खुफिया पुलिस संगठन की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखती थी। क्रांतिकारियों की एक छोटी सी भूल भी उनके आजीवन कारावास का कारण बन सकती थी। लेकिन भारत की

देश पहुंचाते, कभी क्रांतिकारियों के लिए सुरक्षित ठिकाने की व्यवस्था करते। पुलिस की निगरानी के बीच क्रांतिकारियों तक हथियार पहुंचाना एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था। सीतांशु दत्त रॉय इस काम को भी अत्यंत चतुराई और सतर्कता से अंजाम देते। अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों की वध की योजनाओं में वो इन अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखकर आवश्यक सूचना दल तक पहुंचाया करते थे। इतना ही नहीं, वो युवाओं से बातें करते, उन्हें युगांतर का उद्देश्य बताकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करते, उन्हें दल से जोड़ते। ये सारे काम तलवार की धार पर चलने जैसे थे, लेकिन ये सभी जोखिमपूर्ण दायित्व वो पूरी निष्ठा से निभाने में जुटे रहते। इसी बीच सन 1930 में मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर हमला हुआ। इस घटना ने अंग्रेजी शासन की नींद उड़ाकर रख दी। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के क्रांतिकारियों पर अभूतपूर्व दमन चक्र चलाया। अंग्रेजों का गुप्तचर विभाग अब और अधिक चौकस और सक्रिय हो गया था। युगांतर के अनेक क्रांतिकारियों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी, जिनमें सीतांशु दत्त रॉय का नाम भी शामिल था। बिना मुकदमे के गिरफ्तारी, अनिश्चितकालीन नजरबंदी और यातनाएं अंग्रेजी शासन की नीति बन चुकी थी। पुलिस ने बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट यानी BCLA के अंतर्गत सीतांशु दत्त रॉय को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनके हौसले अब भी बुलंद थे।

बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट एक ऐसा काला कानून था जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को बिना न्यायिक प्रक्रिया के लंबे समय तक बंदी बनाया जा सकता था। इसी कानून के तहत सीतांशु दत्त रॉय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद उन्हें हिजली नजरबंदी शिविर भेज दिया गया। हिजली केवल एक सामान्य सी जेल नहीं थी, बल्कि यहाँ अंग्रेजों की क्रूरता की पराकाष्ठा थी। हिजली नजरबंदी शिविर की स्थापना सन 1930 में इसी उद्देश्य से की गई थी कि स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों को बिना मुकदमे के यहाँ कैद किया जा सके तथा उन्हें प्रताड़ित किया जा सके। ये वही जेल थी जहाँ निहत थे राजनीतिक बंदियों पर ब्रिटिश प्रहरियों ने गोली चला दी थी और संतोष कुमार मित्रा

और तारकेश्वर सेन गुप्ता जैसे क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। इसी जेल में अब सीतांशु दत्त रॉय कैद थे। उन्होंने यहां असीम शारीरिक यातनाएं सही और अपने साथी क्रांतिकारियों के साहस को निकट से देखा। यहां दी गई हर यातना उनके संकल्प को और दृढ़ करती चली गई। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन पर एक और गंभीर आरोप लगाया। मैमन सिंह के अत्याचारी जिला मजिस्ट्रेट ग्राहम पर क्रांतिकारियों ने जानलेवा हमला किया था। इस हमले में सीतांशु दत्त रॉय को प्रमुख षड्यंत्रकारी बताया गया। आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस घटना के लिए हथियार उपलब्ध कराए, योजना बनाई तथा हमले के सूत्रधारों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन पर मुकदमा चला। नेत्रकोना की विशेष औपनिवेशिक अदालत में उन्हें प्रस्तुत किया गया। अंग्रेज अधिकारी चाहते थे कि सीतांशु दत्त रॉय अपने साथियों के नाम उजागर कर दें। उनसे बार बार पूछताछ हुई, प्रलोभन दिए गए, दबाव भी बनाया गया, लेकिन वो अडिग रहे। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अंततः अदालत ने उन्हें 6 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और उनका मनोबल तोड़ने के लिए अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया। यहां की एकांत कोठरी, अल्प भोजन और अमानवीय श्रम के बीच भी उनका संकल्प टूटा नहीं। जब अंडमान की जेल में 24 जुलाई सन 1937 को ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू हुई तो सीतांशु दत्त रॉय भी इसमें शामिल हुए। कैदियों की मांग थी कि उन्हें राजनीतिक बंदी का दर्जा मिले, अमानवीय व्यवहार बंद हो और उन्हें भारत की मुख्य भूमि में स्थानांतरित कर दिया जाए। इस भूख हड़ताल ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। गांधी जी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर तथा अन्य नेताओं ने हस्तक्षेप किया। सरकार झुकी तथा कैदियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई। सीतांशु दत्त रॉय को भी भारत वापस लाया गया और 1938 में वो रिहा हुए। रिहा होने के बाद भी वो शांत नहीं बैठे। भारत छोड़ो आंदोलन में युगांतर और अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी भूमिगत रहकर इसमें शामिल हुए। सीतांशु दत्त रॉय को सुरक्षा हेतु खतरा मानते हुए पुनः नजरबंद कर दिया गया था। अंततः देश आजाद हुआ और बंटवारे में उनका गृह जिला मैमन सिंह भारत से अलग हुआ और वो पश्चिम बंगाल आ गए। देश की आजादी के बाद किसी भी प्रकार के राजनीतिक लाभ या पद की लालसा से दूर उन्होंने एक गुमनाम और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत किया। नमन ऐसे महान देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से नरेंद्र देव पांडे और भोपाल से अनीता सक्सेना। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

ऐसे घने जंगलों के बीच कोई शांत सी नदी चुपचाप बहती हुई जीवन को सींचती रहती है, जैसे अंधेरी रात में दूर कहीं टिमटिमाता दीपक दिशाओं को भरोसा देता है। वैसे ही कुछ व्यक्तित्व अपने समय से आगे बढ़कर समाज की चेतना में उजास भरते हैं। ऐसी ही एक दीपशिखा का नाम है मंगेई गोमांगो, जिन्होंने स्वयं जलकर अपने जनजातीय समाज की ज्ञान परंपरा, सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित कर उसे उजालों का संसार सौंपा। उनकी जीवन यात्रा ये बताती है कि वो केवल एक भाषाविद नहीं थे, बल्कि वो एक महान मानवतावादी थे, जिन्होंने सुदूर वनों में रहकर अपनी तपस्या और लगन से अपने समाज को एक नई लिपि दी, अक्षरों की रोशनी दी और उन्हें आत्मगौरव के साथ जीना सिखाया। मंगेई गोमांगो का जन्म 16 जून 1916 को ओडिशा के रायगढ़ा जिले के मरिचगुड़ा नामक एक सुदूर पहाड़ी गांव में हुआ था। घने जंगलों और जलप्रपातों से समृद्ध प्रकृति की गोद में बसे इस क्षेत्र में सोरा जनजाति की घनी आबादी थी। मंगेई गोमांगो का जन्म इसी सोरा समाज के एक अत्यंत संभ्रांत और कुलीन परिवार में हुआ था। सोरा समाज में गोमांगो का अर्थ होता है मुखिया या प्रधान। उनके पूर्वज और पिता गांव के मार्गदर्शक थे। परिवार में आध्यात्मिक चेतना और जड़ी बूटियों का पारंपरिक ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बह रहा था। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच फले फूले सोरा जनजातीय समाज में एक गहरा सन्नाटा भी था। आधुनिक शिक्षा से वो सभी बहुत दूर थे। युवा मंगेई ने देखा कि उनके समाज की अपनी एक समृद्ध और संगीतमय भाषा तो है, लेकिन लिपि के अभाव में उनका इतिहास, उनके लोकगीत और औषधीय ज्ञान मौखिक परंपरा में ही हैं, जो समय के साथ विलुप्त हो रहे हैं। इस भाषाई पिछड़ेपन और बाहरी दुनिया के शोषण ने उनके भीतर एक वैचारिक क्रांति को जन्म दिया।

सन 1936 के शुरुआती महीनों में मात्र 20 वर्ष की आयु में मंगेई गोमांगो ने सोरा संस्कृति के संरक्षण के लिए एक कठिन मार्ग चुना। वो मरिचगुड़ा के पास स्थित एक पवित्र पहाड़ी में एकांतवास के लिए चले गए। मन में अपनी भाषा को एक स्वरूप देने का विचार था और इसी विचार के साथ वो कठिन साधना और ध्यान में लीन हो गए। बताया जाता है कि 18 जून सन 1936 की सुबह ध्यान की गहरी अवस्था में उन्हें अंतः प्रेरणा हुई। उन्होंने महसूस किया कि हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट कुछ विशिष्ट आकृतियों में बदल रही है। उन्होंने उन आकृतियों को ताड़ के पत्तों और पत्थरों पर उकेरा। इस तरह 24 अक्षर उनके पास थे। इसे सोरांग सोमपेंग लिपि का नाम दिया गया। यूं सोरा भाषा की ध्वनि को एक आकार मिला और ये लिपि उच्चारण की दृष्टि से बहुत सटीक और वैज्ञानिक थी। अक्षरों का ये अवतरण केवल एक लिपि का जन्म नहीं था, बल्कि ये सोरा अस्मिता का पुनर्जन्म था। उनके इस महान आविष्कार को समाज में फैलाने के लिए सबसे पहले उनके बेटे और दामाद उनके शिष्य बने। लेकिन असली चुनौती सामने थी, इस नई लिपि को जन जन तक पहुंचाना था। लेकिन मंगेई गोमांगो केवल एक विचारक नहीं थे, वो एक कर्मयोगी थे। उन्होंने एक ऐसा आंदोलन चलाया जिसने सोरा समाज की तस्वीर ही बदल दी। उन्होंने मरिचगुड़ा के साथ साथ आसपास के दर्जनों गांवों में अक्षर स्कूल खोले। चूंकि दिन में सोरा समुदाय के लोग खेतीबाड़ी और जंगलों में काम करने जाते थे, इसलिए ये स्कूल सूर्यास्त के बाद रात्रि पाठशालाओं के रूप में चलते थे। मंगेई गोमांगो हाथ में जलती हुई मशाल और ताड़ के पत्तों पर लिखी वर्णमाला लेकर गांव गांव जाते और बच्चों, महिलाओं, पुरुषों, वृद्धों को अपनी मातृभाषा में लिखना पढ़ना सिखाते थे। उनका ये रास्ता आसान नहीं था। उन्हें दो मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ा। एक तरफ ब्रिटिश प्रशासन और रूढ़िवादी तत्व इस भाषाई साक्षरता को संदेह की दृष्टि से देख रहा था, तो दूसरी तरफ खुद सोरा समाज के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। ये लोग इसे एक जादुई और अस्वाभाविक घटना के रूप में रेखांकित कर रहे थे। लेकिन मंगेई गोमांगो ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने तर्कों, अपनी विनम्रता और दृढ़ संकल्प से सबको झुका दिया। उनका उद्देश्य केवल एक नई लिपि का प्रचार प्रसार नहीं था, वो सोरा समाज के नैतिक और सामाजिक ढांचे को भी बदलना चाहते थे। उन्होंने देखा कि ताड़ी और मदिरा के सेवन ने सोरा समाज को खोखला कर दिया है। इसके लिए उन्होंने एक व्यापक व्यसन मुक्ति अभियान चलाया। उन्होंने अंधविश्वास, चिकित्सा की जगह तंत्र मंत्र और पशुओं की बलि देने की कुप्रथाओं के खिलाफ तार्किक तथा आध्यात्मिक चेतना का युद्ध लड़ा। उनके इस असाधारण ज्ञान, नैतिक आचरण, समाज सुधार और निस्वार्थ सेवा के भाव को देखकर सोरा समाज और अन्य विद्वानों ने उन्हें अत्यंत आदर के साथ पंडिता की उपाधि से विभूषित किया। लेकिन उनकी ये साधना लगातार जारी रही।

पंडिता मंगेई गोमांगो का आयुर्वेद और पारंपरिक जड़ी बूटियों का ज्ञान भी अद्भुत था। उन्होंने रायगढ़ा, कोरापुट और नियमगिरी की पहाड़ियों के घने जंगलों में भ्रमण करके सैकड़ों दुर्लभ जड़ी बूटियों की पहचान की। उन्होंने इनके औषधीय गुणों और मिश्रण की विधियों को अपनी लिपि में लिखकर इस ज्ञान को संरक्षित भी किया। उन्होंने अपने निवास स्थान मरिचगुड़ा को एक चिकित्सा केंद्र में बदल दिया। उन दिनों ऐसे सुदूर क्षेत्रों में अस्पताल या डॉक्टर नहीं होते थे। उन्होंने मलेरिया, गंभीर त्वचा रोग, सर्पदंश और पेट की घातक बीमारियों का सफल इलाज किया और विशेष बात ये कि उनका ये काम पूरी तरह निशुल्क और सेवा भाव से प्रेरित था। इसके साथ ही उन्होंने सोरा जनजाति के बौद्धिक पोषण पर भी ध्यान दिया तथा साहित्य रचना की। सबसे पहले तो उन्होंने सोरांग सोमपेंग लिपि की पहली प्रामाणिक वर्णमाला की पुस्तक और बुनियादी व्याकरण की रचना की ताकि भाषा की शुद्धता हमेशा बनी रहे। इसके साथ ही उन्होंने सोरा भाषा में उच्च कोटि के भजनों और कविताओं की रचना की। इन रचनाओं में उन्होंने निराकार ईश्वर की स्तुति, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और मानवीय मूल्यों को पिरोया। उनके द्वारा रचित प्रार्थनाएं आज भी सोरा समाज के विद्यालयों और मंचों पर अत्यंत श्रद्धा के साथ गाई जाती हैं। सोरा समाज में उनके पूर्वजों का इतिहास, उनके शौर्य की गाथाएं और अनगिनत लोक कथाएं प्रचलित थीं। ये सारी धरोहर मौखिक परंपरा में तो मौजूद थी, लेकिन लिखित रूप से ये कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। मंगेई गोमांगो ने सोरांग सोमपेंग लिपि में इसे लिखकर संरक्षित किया। निरंतर शारीरिक श्रम, गांव-गांव की कठिन यात्राएं और ढलती हुई उम्र, इन सारी बातों ने उनके स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव डाला। उनका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा और वो बिस्तर पर आ गए। लेकिन अब भी वो थके नहीं, रुके नहीं। वो बिस्तर पर लेटे लेटे भी मानसिक रूप से सक्रिय थे। वो अपने बेटों, दामाद और अन्य युवाओं को अपने पास बुलाते और सोरांग सोमपेंग लिपि के प्रचार प्रसार के लिए रणनीतियों पर चर्चा करते। इसी तरह सक्रिय रहते हुए सन 1980 में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके द्वारा बोया गया बीज आज वटवृक्ष बन चुका है। सरकार और भाषाविदों ने सोरांग सोमपेंग लिपि की वैज्ञानिकता को स्वीकार किया और आज भी प्राथमिक शालाओं में सोरा बच्चों की शिक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही इसे आज डिजिटल फॉन्ट में परिवर्तित करके डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया गया है और आज भी सोरा समाज के लोग 18 जून को लिपि दिवस के रूप में मनाते हैं। नमन ऐसी विलक्षण विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन ले, मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: श्रोते हो नमस्कार, मी प्राध्यापक योगेश सोमण, आपण ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

0: गेलंय रेडिओ मन भावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग।
1: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, जरा सोचिए कि आपके घर में कोई चोर घुस आए, वह आपकी तिजोरी का ताला तोड़े, आपका सारा कीमती सामान सोना चांदी लूट ले और बड़ी आराम से आपके सामने से निकल जाए। लेकिन कमाल की बात यह हो कि आप अपनी आँखों से सब कुछ देख रहे हैं, फिर भी आप उस चोर को पकड़ नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह चोर आपको दिखाई ही नहीं दे रहा, वह बिल्कुल अदृश्य है, उसका कोई रूप रंग या शरीर नहीं है। क्या आप यकीन करेंगे कि एक ऐसा ही निराकार और अदृश्य चोर आज हम सबके भीतर बैठा हुआ है? वह रोज हमारी सबसे कीमती पूंजी यानी हमारी शांति, हमारा आनंद और हमारा विवेक लूट रहा है, लेकिन हम उसे पकड़ना तो दूर, पहचान भी नहीं पा रहे हैं। कबीर साहब आज हमें इसी अदृश्य चोर का पता बताने आए हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह दार्शनिक सूत्र। तीन लोक चोरी भई, सबका सिर सर बस लीन। तीन लोक चोरी भई, सबका सर बस लीन। बिना मुंड का चोर वा, परान काहू चिन्ह।

श्रोताओं, कबीर साहब ब्रह्मांड के एक बहुत बड़े रहस्य से पर्दा उठाते हुए कहते हैं, तीन लोक चोरी भई। इस पूरे ब्रह्मांड में तीनों लोकों में एक बहुत बड़ी चोरी हो गई है। सबका सर बस लीन, और उस चोर ने किसी एक को नहीं बल्कि संसार के सारे जीवों का सर्वस यानी सर्वस्व, उनकी आत्मिक पूंजी और होश को लूट लिया। यह चोर कौन है और कैसा दिखता है? अगली पंक्ति में कबीर एक अद्भुत पहेली बुझाते हैं। बिना मुंड का चोर हुआ, वह चोर इतना अजीब है कि उसका कोई मुंड यानी सिर या शरीर ही नहीं है। वह रूपहीन और निराकार है, परान काहु चिन्ह। और चूंकि उसका कोई भौतिक शरीर नहीं है, इसलिए काहु यानी कोई भी साधारण इंसान उसे चिन्ह नहीं पा रहा है, उसे पहचान नहीं पा रहा है। लोग बाहर की दुनिया में चोर ढूंढ रहे हैं, जबकि असली चोर भीतर छिपा बैठा है। यह दोहा माया और अहंकार के सूक्ष्म रूप की सबसे सटीक व्याख्या है। वेदांत दर्शन में माया को अनिर्वचनीय कहा गया है, यानी जिसका कोई ठोस अस्तित्व नहीं है, फिर भी वह पूरे संसार को नचा रही है। यह बिना मुंड का चोर हमारा वह भ्रमित मन और अहंकार है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन हमारी चेतना पर पूरी तरह कब्जा करके बैठ जाता है। यह चोर हमें लगातार बाहरी संसार के प्रपंचों, लालच और ईर्ष्या में उलझाए रखता है और हमसे हमारी आत्म शांति छीन लेता है। कबीर समझा रहे हैं कि जब तक आप ज्ञान और होश का दीपक नहीं जलाते, तब तक इस बिना सिर वाले चोर को पकड़ा नहीं जा सकता। इसे पकड़ने का एकमात्र तरीका आत्मनिरीक्षण है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा शांत होकर अपने भीतर मची इस लूटपाट को देखिए। हमारे भीतर अचानक गुस्सा उठता है जब हमारे भीतर लालच या नफरत पैदा होती है, तो सोचिए कि हमारी शांति को किसने चुराया। वह यही अदृश्य चोरवा है जो हमारे ही भीतर से उठकर हमारी चेतना को लूट लेता है। आज कोशिश कीजिए इस भीतरी चोर को पहचानने की। सजग बनिए, अपने विचारों के प्रति जागृत रहिए। जैसे ही आप होश का पहला पहरा बढ़ाएंगे, यह बिना शरीर का चोर अपने आप विलीन हो जाएगा। अपनी चेतना को उस राम नाम के प्रकाश से भर दीजिए। अज्ञान का कोई चोर पैर भी नहीं रख सकता। जब आप इस भीतरी संपत्ति को सहेज लेंगे, तो आपको जीवन आपका जीवन परम आनंद से भर जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए

कृपा तथागता, तेरा ध्यास तेरा अभ्यास, गहरा बहुत गहरा तेरे शाश्वत अन्वेषण में रुकावट बने मानवीय विकार जैसे द्वेष, क्रोध, सब व्यवधान, मोह माया, काम वासना, सबकी डोर काट दी तुमने। कामावचार, रूपावचार, अरूपावचार, लोकोत्तर और पुनः पुनः तनकर खड़ा तू अनित्य की गवाही में। बा तथागता, शाक्य कोलियों की पानी समस्या का हल निकला यह आनंद वार्ता कलह समाप्ति की तूने सुनी, परंतु तेरी खोज यात्रा मात्र नहीं थम सकी। छे छे बिल्कुल नहीं, तूने चिंतन किया है, पुनः पुनः पुनः जुड़ गया तू इस कार्य में, नए सिरे से खोजा सत्य का मार्ग, शाश्वत तत्व ज्ञान प्राप्ति के आकलनार्थ। राजा बिंबिसार ने देखा तेरा रूप, कहने लगे नहीं है तेरा यह रूप परिव्राजक का, तेरे विलोभनीय तन की 32 लक्षण, वह अजानु बाहु, वह सुंदर दंत पंक्तियां और सुवर्ण कांति, एक वीर पुरुष सम्राट की। कहा उन्होंने छोड़ दे यह मार्ग, भौतिक सुख ऐशो आराम, बनेगी तेरे चरणों की दासी। उस पर हे तथागता, तूने दृढ़ता से दिया उत्तर, विश्व का कलह और दुख सामने अन्वेषणार्थ खड़े ऐसी स्थिति में भौतिक सुख ऐशो आराम की चिंता किसे पड़ी है। राजा बिंबिसार अवाक हुआ, तेरी ज्ञान प्राप्ति के बाद मुझे मिल, ऐसा उसने कहा। परिव्राजक सिद्धार्थ भृगु ऋषि के आश्रम पहुंचे, पारंपरिक साधना पद्धति का अवलोकन किया। वैशाली के आलर कलामा के आश्रम तू पहुंचा, उद्धक रामपुत्ता से मिले, सांख्य तत्वज्ञान के निरीक्षण से गौतम की खोज यात्रा शुरू हुई। उन्होंने देखा समाधि मार्ग की शिक्षा, प्राणायाम, ध्यान, समाधि, वैराग्य साधना का कठिन अभ्यास, शरीर को कष्ट पहुंचाया तूने, कांटों पर सुलाया खुद को, जाड़ों के दिन खुली ठंड हवा में, ग्रीष्म ऋतु की कड़ी धूप में, वर्षा ऋतु की धो धो बारिश में शरीर को तपाया, कष्ट पहुंचाया, परंतु ये सारे मार्ग देह को कष्ट पहुंचाने के, मन की वासनाओं पर विजय प्राप्ति में ज्ञान दुर्लभ। बा तथागता, तूने अपने विचार और तत्व ज्ञान की पुष्टि में अनेक ऋषि मुनियों से चर्चा की, जांच पड़ताल की, मंत्र तंत्र कर्मकांड, अंधश्रद्धा श्रद्धा का अंतर और भेदाभेद, निसर्ग में निहित विविध घटक और उनकी पूजा पद्धति की, सांख्य तत्वज्ञान का प्राचीन तत्ववेत्ता कपिल ने कहा सत्य के अन्वेषण में प्रमाण चाहिए, तभी दृश्यमान होता है सत्य। उसके लिए अन्वेषण के दो मार्ग बताए हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान और अनुमान। शेष तो होते हैं कल्पना, कर्मकांड, अंधश्रद्धा की मार, ये मन के खेल, अपनी अपनी क्षमता के। ब्राह्मणे वेद उपनिषद तुझे ज्ञान साधना की दृष्टि से अनावश्यक लगे सारे, वेद का मंत्र और उपनिषद का तंत्र, और उपनिषद का तंत्र तुझे निरर्थक लगा। बा तथागता, तेरा समकालीन पूर्ण कश्यप क्रियावाद का पुरस्कर्ता कहता था कर्म का आत्मा पर कोई परिणाम नहीं होता, हत्या करना करवाना, व्यभिचार करना करवाना, झूठ बोलना बुलवा लेना, इससे पाप नहीं लगता आत्मा को और पुण्य भी नहीं लगता, मृत्यु के बाद रहता ही नहीं कुछ शेष, ऐसा कथन।

0: शांति अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी में आज फिर आप सबका स्वागत। एक नई श्रृंखला के साथ इन दिनों हम आपके साथ हैं और हम बात कर रहे हैं हैप्पीनेस इंडेक्स की, यानी कि मेरी खुशी कितनी बार दिन में ऊपर होती है, कितनी बार नीचे। तो क्या कोई ऐसी स्थिति हो सकती है कि मेरी जो हैप्पीनेस है या मेरा खुशी का जो क्वेश्चन है वो स्टेबल रहे, ये कैसे संभव है? इन्हीं सब बातों के बारे में आज फिर चर्चा शुरू करते हैं। हमारा सौभाग्य है, हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: सिस्टर शिवानी, जब खुशी की बात करते हैं तो एक छोटा सा रिकैप ले लेते हैं। हमने बहुत सी बातें की जो जीवन से जुड़ी थी, मेरी खुशी से जुड़ी थी। हमने ये देखा कि खुशी जब लोगों पर डिपेंड कर रही थी कि वो खुश होते हैं, चाहे वो मेरे बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड है, मेरा बॉस है, तो मैं खुश हो रही थी। अगेन वो डिपेंडेंसी जो थी, और वो कहीं ना कहीं उनका खुश होना या ना होना मेरे किसी बात से मेरा अपना फेलियर बन रहा था, और मेरी अपनी जो खुशी थी वो छिन रही थी। और दूसरा, हमने जो पिछली कड़ी को देखा था उसमें बात की थी मटेरियलिस्टिक चीज़ों की। दे वर एक्चुअली गिविंग मी लॉट ऑफ हैप्पीनेस टिल द टाइम यू टोल्ड मी कि वो पर्टिकुलर चीज़ें खुशी नहीं दे रही, मैं खुशी का थॉट क्रिएट कर रही हूँ। यहीं पर हम बात थी। वंडरफुल। अब यहाँ तक हम बात पहुँची थी कि वो थॉट मैंने क्रिएट किया कि ये मुझे मिल गया है तो मुझे खुशी हुई। लेकिन अभी तक बात ये हो रही थी, ज़्यादातर लोग जो हम जो सोचते हैं वो ये कि खुशी एक फीलिंग है, तो क्रिएट करना और नॉन क्रिएट करना थॉट कैसे होगा फिर? सो यहाँ से आज हम बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं कि खुशी क्या है, एक फीलिंग है या एक थॉट है?
1: गुड वन। खुशी क्या है, एक फीलिंग है या एक थॉट है? खुशी ओब्वियसली एक फीलिंग है, इट इज़ एन एक्सपीरियंस दैट आई गो थ्रू। अब लेकिन ये फीलिंग क्रिएट करने के लिए सोर्स तो चाहिए ना। फीलिंग कहाँ से क्रिएट हो रही है? यस, इट्स अ फीलिंग। आई एक्सपीरियंस बहुत सारी फीलिंग्स सारा दिन के अंदर, कभी फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, कभी आई एक्सपीरियंस पेन, कभी आई एक्सपीरियंस एंग्जाइटी। लेकिन ये फीलिंग्स किस आधार पर मैं अनुभव करती हूँ, इट इज बेस्ड ऑन उस पल मैंने कौन सा थॉट क्रिएट किया है।
0: ओके, आई सी अ फ्लावर, बहुत सुंदर एक फूल देखा मैंने।
1: इट डजंट गिव, इट गिव्स यू अ गुड फीलिंग, राइट?
0: इट गिव्स मी सो मच ऑफ अ, यू नो, लाइक सच नाइस फीलिंग।
1: पहले आप एक थॉट क्रिएट करते हो, कितनी ब्यूटीफुल फ्लावर है,
0: मुझे तो पता भी नहीं कि मैं करती हूँ।
1: अगर किसी को वो थॉट नहीं क्रिएट करेगा, अब वही फ्लावर आपको बहुत अच्छी फीलिंग दे रहा है, आई मे बी कि मैं उसको क्रॉस करके चले जाऊं और मेरे को कुछ लगे ही ना। फ्लावर तो वही है, मुझे उसने कोई फीलिंग नहीं दी, यू नो। आई मे जस्ट नॉट इवन रियलाइज कि यहाँ पर बहुत सुंदर फूल पड़े हुए हैं, एंड आई विल जस्ट क्रॉस एंड आई विल गो अवे, क्योंकि मैंने उस फ्लावर को देख कर रुक कर उसके ऊपर थॉट नहीं क्रिएट किया, तो फीलिंग नहीं जेनरेट हुई उसके बाद। आप रुके, कॉन्शियसली एक थॉट क्रिएट किया कि ब्यूटीफुल फ्लावर, बहुत अच्छा कलर, फ्रेग्रेंस कितनी अच्छी है, या यू नो कितना वट एवर जो जो
0: लेकिन थॉट्स क्रिएट कर बोलते हैं हम, एक बार फीलिंग आ जाती है उसके बाद हम बोलते हैं,
1: राइट? तो पहले थॉट क्रिएट किया,
0: अच्छा,
1: फिर फीलिंग
0: क्रिएट करना। तो
1: आप एक दिन उसको ऑब्जर्व करना, क्या होता है, प्रोसेस तो यही चल रहा है, हमें तब रियलाइज आता है आफ्टर इट कम्स आउट इनटू वर्ड्स, राइट? प्रोसेस तो वही चल रहा है। अब उसी टाइम जो हमने पिछली बार भी देखा, वही फ्लावर है, वो फ्लावर अभी तक उतना ही सुंदर है, आप भी उन फूलों के सामने ही बैठे हैं, आप थॉट क्रिएट कर रहे हो सच फ्लावर्स, यू आर फीलिंग गुड, उतनी देर में आके किसी ने कुछ कह दिया,
0: माई फोकस शिफ्ट्स,
1: माई थॉट चेंजेस, माई थॉट चेंजेस, मुझे ऐसा क्यों बोला, फीलिंग चेंज हो गई।
0: हाँ, इनफैक्ट उसके बारे में ध्यान ही नहीं खत्म हो गया, yes.
1: थॉट चेंज हो गई ना,
0: yes, मैं फ्लावर को देखते देखते भी मुझे कुछ और याद आ जाता है, तो वो फ्लावर खत्म ही हो जाता है।
1: आपके आंखों में आंसू आ सकते हैं, आपको ये याद आ सकता है कि आपके हस्बैंड पहले व्हेन यू वर गोइंग अराउंड ही यूज्ड टू बाय सच ब्यूटीफुल फ्लावर्स फॉर यू,
0: स्टार्ट क्राइंग, यस ऑफ कोर्स,
1: अब तो वो नहीं लेकर आते हैं, व्हाटएवर। तो फ्लावर तो वही है ना, उस फ्लावर को ही देख देख के आप कितने अलग अलग अलग तरह के थॉट्स क्रिएट कर सकते हो, और जिस क्वालिटी का थॉट क्रिएट करते जाओगे उसी तरह की फीलिंग एक्सपीरियंस होगी। फीलिंग मेरा एक्सपीरियंस है, लेट्स से आई से कनुप्रिया इज अ वंडरफुल पर्सन, तो मुझे कैसा फील होगा?
0: ओह वेरी गुड,
1: वेरी गुड। इफ आई से कनुप्रिया सच अ चीट, तो कैसा फीलिंग क्रिएट होगा? तो वो फीलिंग की क्वालिटी किस पर डिपेंडेंट है, जो थॉट क्रिएट की, आप वही हैं, वो फूल वही है, दुनिया वही है, मैं उसके प्रति जो संकल्प क्रिएट करूंगी मेरी फीलिंग उस हिसाब से चेंज होती जाएगी. एंड दैट्स व्हाई हम सारा दिन पूरी जीवन कैसा फील करना चाहते हैं वो किस पर डिपेंड करेगा?
0: मेरे थॉट पर. लेकिन प्रॉब्लम पता क्या हो रही है एक्चुअली इफ यू सेइंग दैट, क्योंकि मेरे सामने ऑब्जेक्ट आता है और फीलिंग आ जाती है, वो बीच का थॉट दिखता नहीं है मुझे. जैसे गाड़ी आई तो मुझे फीलिंग आई वाओ दिस, लाइक यू गेट दिस फीलिंग, दिस इज माय यू नो कार. यस, उससे पहले मैंने थॉट तो क्रिएट किया, दिस इज माय कार,
1: आई हैव अचीव्ड द कार, दिस इज माय कार. तो थॉट तो क्रिएट किया ना. फीलिंग डिफाइंड नहीं होती है. फीलिंग होती है फीलिंग वेरी गुड, फीलिंग पेन. थॉट बहुत स्ट्रक्चर्ड डिफाइंड होती है. मैंने गाड़ी खरीद ली या कुछ भी, या ये गाड़ी मेरे पास नहीं है सबके पास है तो आई फील पेन, या मैंने तो ये गाड़ी इतनी मुश्किल से खरीदी अब मेरी सिस्टर ने जाके मेरे से भी बड़ी गाड़ी खरीद ली.
0: जेलसी, यस,
1: फीलिंग,
0: वो थॉट आती है वो जेलसी. ओह,
1: सो फीलिंग इज जेलसी. लेकिन वो क्रिएट करने के लिए थॉट कौन सी मैंने क्रिएट की? अब मेरी सिस्टर ने बड़ी गाड़ी खरीद ली, आई कुड ऑल्सो क्रिएट अ थॉट, हाउ नाइस शी इज बॉट अ गुड कार, आई विल फील गुड,
0: अप्रिशिएट.
1: गाड़ी वही है, सिस्टर वही है, मैं किस क्वालिटी के थॉट क्रिएट करती हूँ उससे मुझे एक्सपीरियंस होगी फीलिंग, फीलिंग गुड और फीलिंग पेन, जेलसी, व्हाटएवर. फिर नाउ अब जो मैं फीलिंग क्रिएट करूंगी उसके बेसिस पे फिर मैं और थॉट्स क्रिएट करते
0: जाऊंगी. हाँ, और वो हम अवेयर हो जाते हैं. yes.
1: आप सारा दिन किस अवेयरनेस के साथ चल रहे हैं थोड़ा सा ध्यान रखते चाहिए. अब जैसे सपोज हमें पहले नहीं पता था, लेट्स से कि थॉट पहले आती है या फीलिंग, अब सपोज हमें पता चला, अब हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, लेकिन सारा दिन आज जैसे जैसे हम लोगों से मिलते हैं, जैसे जैसे हम मार्केट में जा रहे हैं, एक एक चीज़ देख रहे हैं, आप अगर न्यूज़ में देख रहे हैं कि कहीं किसी के साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई है, कहीं किसी के साथ इनजस्टिस हो रहा है दुनिया में, कहीं एक बहुत इलाके में अकाल पड़ गया है, कहीं बाढ़, तो यू एक्सपीरियंस पेन. यू नो, हम एक्सपीरियंस करते हैं पेन. लेकिन पेन एक्सपीरियंस करने से पहले मैंने क्या किया? मैंने वो इन्फॉर्मेशन ली थी और उसके बेसिस पे थॉट क्रिएट किया था कि अब इन लोगों का क्या होगा, या इन लोगों के साथ ऐसा कैसे हो गया, या इनका अब फ्यूचर क्या है, व्हाटएवर. आई हैव क्रिएटेड अ थॉट एंड दैट बाय प्रोडक्ट ऑफ दैट इज नाउ आई एम एक्सपीरियंसिंग द फीलिंग.
0: बट अमेजिंग थिंग इज सिस्टर शिवानी, वी डोंट इवन रिमेम्बर.
1: एक बार हम अपने अंदर के प्रोसेस को समझ लेते हैं, कुछ भी सारा दिन, कल अगर आप अपनी रूटीन को देखें कि दिन कैसे शुरू होता है, लेट्स से अलार्म लगाया था, बजा, या आपने स्नूज पर लगा दिया, या जो भी उठे, फर्स्ट थॉट क्रिएट होती है, ओ माय गॉड इट्स लेट. नाउ दिस इज वन थॉट. अब इसके बाद मेरा पूरा एनर्जी लेवल एक अलग हो जाता है. यू नो, अब टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, या आप जल्दी जल्दी बच्चों को उठाओ, या सो सारा फिर एक सीरीज ऑफ थॉट्स उसके बाद क्रिएट होती है. इसलिए कहते हैं ना, आज का दिन अच्छा नहीं बीता, सुबह सुबह किसका चेहरा देखा था, तो वो किसी के चेहरे देखने की बात नहीं,
0: थॉट क्रिएट किया था.
1: क्या थॉट क्रिएट किया था?
0: ओके, अगर लेट भी हो गए तो हम क्या फोर्सफुली एक थॉट क्रिएट करें कि आज दिन अच्छा जाएगा, कोई बात नहीं, या कुछ नहीं होता?
1: क्या होता है अगर एक नेगेटिव थॉट क्रिएट किया
0: तो उसके बाद चेन. हाँ, वो तो मैं बता रही हूँ, फीलिंग आती, जैसे मैंने फीलिंग नोट की ना, वो थॉट तो फटाफट दिख जाता.
1: तो फिर उसके बाद आप सडनली फील करेंगे कि पूरे घर का एनर्जी लेवल एक केओस में जाने लगता है. फिर बच्चों को बिना बात के डांट देना, फिर बच्चों ने भी फिर ऊपर से रिएक्ट कर देना, फिर तो वो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट क्रिएट होता गया जस्ट बिकॉज आई स्टार्टेड द डे विद अ रॉन्ग थॉट. तो इसलिए हम हमेशा ट्राई करते हैं कि सुबह उठकर जस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मिनट तो अपने साथ बैठे एंड स्टार्ट द डे विद वेरी पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ थॉट्स, क्योंकि ये दिन की फाउंडेशन है, इसके ऊपर पूरा दिन बहुत ज्यादा डिपेंड करता है. तो जैसे हम डे का टाइम टेबल बनाते हैं, उस तरह से अगर डे की शुरुआत का टाइम टेबल के थॉट्स कैसे क्रिएट करनी है, और वो करने से हमें अवेयरनेस भी आ जाती है कि आई क्रिएट माई थॉट्स,
0: वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता है. यस,
1: आई क्रिएट, आई हैव द पावर एंड आई कैन चूज
0: एंड आई कैन एक्चुअली एनी टाइम चेंज देम ऑल्सो. You know, but then, अगर मैं सपोज लेट उठी हूँ तो तब भी मैं वो 5 मिनट अपने साथ जरूर दूँ.
1: एक्चुअली वो आपको हेल्प करेगा. एक्चुअली हेल्प करेगा. हम सोचते हैं कि 5 मिनट अब कहाँ से निकाले. फिर उससे क्या होता है, भले आप 5 मिनट नहीं निकालो लेकिन आप सारा काम तो वही करोगे, लेकिन कैसे करोगे, और ये सब प्रोसेस करते करते एक्चुअली आपको ज्यादा टाइम लग रहा है अपना काम करने में, लेकिन अगर आप दो मिनट भी रुक जाओ, चलो आपके पास पांच मिनट नहीं है, एक मिनट तो है, एक मिनट कोई बहुत ज्यादा नहीं होता है, एक मिनट थॉट क्रिएट करे, ठीक है आई एम लेट बट मैं इसका इफेक्ट अब नहीं क्रिएट करने वाली हूँ, सिचुएशन इज स्टिल इन माई कंट्रोल. क्यों? क्योंकि माई स्टेट ऑफ माइंड इज इन माई कंट्रोल. मैं स्टेबल रहकर अब अपने दिन की शुरुआत करूंगी. आई ओनली हैव टू क्रिएट दिस थॉट.
0: इट्स एक्चुअली इट्स अ कंप्लीट कन्वर्सेशन विद माईसेल्फ.
1: इट इज अ कन्वर्सेशन.
0: थॉट इज बेसिकली अ कन्वर्सेशन विद
1: माईसेल्फ. थॉट इज कि मैं अपनी प्रोग्रामिंग कर रही हूँ ना बार बार. मैं थॉट क्रिएट कर रही हूँ कि हाँ लेट हो गया है. But it's okay.
0: This is what I want to know. Ki what is my thought? It's like it's a conversation with my own self.
1: It is. I'm creating. Na, to wo sara din. Aap sara din bhi dekho. Aapke thoughts kya hain? Ek inner conversation hi to chal rahi hai sara din. Ye bahut bure hain. Inko aisa nahi karna chahiye tha. Ye bahut achhe hain. Inke paas jo hai, main. Ye kya ho raha hai andar? Hum kisse baatein kar rahe hain? Thoughts matlab jo hum ek inner conversation hi chal rahi hai sara din. To agar late ho bhi gaya hai, wo ek loss ho gaya hai ki mera ek छोटा सा नुकसान हो गया सुबह सुबह के मैं लेट हो गई. बट लेट दैट बी द लास्ट वन फॉर द डे. इसका इफेक्ट मेरे नेक्स्ट पर ना आए. तो एक मिनट रुक के सिर्फ कॉन्शियसली राइट थॉट क्रिएट कर दो उस टाइम. अगर हमने थॉट क्रिएट किया लेट हो गया अब तो सब कुछ गड़बड़ होने वाला है,
0: अब तो बहुत मुसीबत है.
1: इट्स माय क्रिएशन.
0: No, another thing which I really like, you know, creating thought was something, you know, like very difficult, but conversation because हमें आदत है. See, conversation क्या
1: हमें आदत है. Suppose आप सामने बैठे हो और मैं कहूँ लेट हो गया सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा अब. This is a conversation with yourself, with you. लेकिन I'm alone in the room and मैंने कहा लेट हो गया अब तो आज कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है. दिस इज अ कन्वर्सेशन विद माई सेल्फ. यही मैं अपने साथ अच्छी वाली कन्वर्सेशन भी तो कर सकती हूँ.
0: कोई बात नहीं, इट्स ओके. सी आप अगर मैं लेट हुई होती या आप लेट हो जाए तो आपको मैं ये बोलती हूँ ना, कोई बात नहीं, इट्स ओके. आई कैन डू इट विद माई सेल्फ.
1: आई कैन डू इट विद माई सेल्फ.
0: बट विल इट इफेक्ट?
1: इट विल चेंज योर डे. आपका पूरा दिन बदलेगा. जिस जिस क्वालिटी, अगर आपने अपने आप को कह दिया अब तो सब कुछ गड़बड़ होने वाला है,
0: तो गड़बड़ होता ही है. फिर
1: होता ही है क्योंकि आप पूरा एनर्जी लेवल ही आपने कहा अब तो सब गड़बड़ होने वाला है, अब तो क्या होगा आज बच्चे भी लेट हो जाएंगे. और थॉट्स का ये है कि एक जो क्वालिटी क्रिएट होती फिर वो सीरीज कंटिन्यू होती जाती है. एंड स्पेशली अगर नेगेटिव जो क्वालिटी क्रिएट होती ना, हम अवेयर नहीं है, वो बहुत फास्ट चलती है.
0: That's what I'm saying ना.
1: अब कुछ नहीं होगा, अब बच्चे उठेंगे कि नहीं, बस तो नहीं आ जाएगी, जल्दी करो ना,
0: वो फीलिंग ऑफ क्योस हो जाती है. अगेन आई एम सेइंग कि वो, क्योंकि वो थॉट्स इतने फास्ट हैं कि उसके बारे में, और फीलिंग जब हिट करती है तब हमें रियलाइज होता है कि कुछ गड़बड़ हो गई है.
1: But by that time, we have already Crossed. drained ourselves of a lot of energy. And ye sirf subah late utne ke liye nahi, ye aap kahin bhi try kar sakte ho. Ke suddenly office mein kuch upar niche ho gaya. Aap dekh rahe hain ki log bahut chaos mein ja rahe hain. Computer crash ho gaya. Us pe kuch bahut data tha. Turant just take that one minute and say, okay, this has happened. But I will take charge of what I have to do now. Ye nahi. मतलब आप कॉन्शियस होंगे कि आप कौन सी क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट कर रहे हैं. जितना हम धीरे धीरे ये करेंगे हमें अवेयरनेस आएगी, ये तो मैं क्रिएट करती हूँ. तो जो हम फर्स्ट चीज क्रिएट करते हैं अंदर वो थॉट होती है. और जो क्वालिटी की थॉट उसी क्वालिटी की फीलिंग, ये दोनों में कभी डिफरेंस नहीं आएगा. मतलब आप पॉजिटिव थॉट पॉजिटिव फीलिंग, नेगेटिव थॉट अ पेनफुल फीलिंग. ये कभी भी नहीं होगा कि पॉजिटिव थॉट एंड पेनफुल फीलिंग, ये तो मैच ही नहीं करता बिल्कुल.
0: So, जहां पे भी हमारी कोई फीलिंग नेगेटिव हो रही है हमें ढूंढना है कि वो थॉट क्या.
1: एब्सोल्युटली. सी, यू गेट द क्रक्स ऑफ इट. अब क्या होगा, बाहर परिवर्तन लाने की बजाय अगर मैं दर्द में हूँ, इवन अगर मुझे लगे कि आपने ऐसा किया इसलिए मैं दर्द में हूँ, आपने किया लेकिन मैं थॉट क्रिएट कर रही हूँ. तो अगर मुझे अपने दर्द से बाहर निकलना है, मुझे सिर्फ धीरे से बैठकर प्यार से अपनी थॉट की क्वालिटी को चेंज करना है आपके प्रति. मैं आपके बारे में सोच रही हूँ. जैसे जैसे मैं अपनी क्वालिटी को चेंज करती
0: जाऊंगी, कोई बात नहीं, उन्होंने कह भी दिया तो कुछ नहीं होता, बिकॉज उन्होंने एक बार ऐसे भी तो कहा था, यू नो, लाइक
1: सेल्फ काउंसलिंग.
0: या दिस इज अ फुल फ्लेज्ड कन्वर्सेशन.
1: एब्सोल्युटली. एब्सोल्युटली.
0: एंड आई जस्ट हैव टू डू दैट.
1: आई जस्ट हैव टू डू दैट. जैसे ही मैंने अपनी थॉट की क्वालिटी को चेंज करना शुरू किया
0: तो उसमें मेरा टाइम वेस्ट नहीं होगा.
1: हाँ, और सारा दिन जो दर्द में जीते हैं उसका क्या हो रहा है,
0: यू नो, लाइक अगेन. एंड कई बार ये भी कहते हैं कि अपने आप को धोखा नहीं दे रहे.
1: क्या धोखा तो नहीं दे रहे, अपनी क्वालिटी ऑफ थॉट्स को चेंज कर रहे हैं. सामने जो व्यक्ति है वो वैसा ही है, परिस्थिति वैसी ही है, मेरा उसके प्रति क्या परसेप्शन है उस हिसाब से आई विल क्रिएट द थॉट.
0: एंड अनदर थिंग इज कि वो हर व्यक्ति में पॉजिटिविटी तो है ही.
1: वो तो कोई
0: तो मेरे को उधर no कितना भी धोखा दे दिया हो, कितना भी किया हो, if I am able to yes.
1: And most important is not about other people.
0: It's my.
1: It's more about how I want to yes. feel. अब मैं क्या suppose? अभी let's look at it like that. कि suppose मेरे आसपास सारे जो लोग हैं, वो गंदे हैं, खराब है. You know, like we say कि इनके तो सारे ही खराब हैं सारे. तो उनकी वजह से मैं दर्द में रहूँ क्या सारी जीवन? I still have the control. I can create the right kind of thought if I want to feel good. Or सारे लोग भी मेरे साथ आस पास अच्छे होंगे लेकिन मेरी ही thinking अगर negative है तो मुझे कोई भी अच्छा नहीं लगने वाला. लोग वही हैं. And actually तो लोग वही होते हैं जो हैं, with all their ups and their downs, their strengths and their weaknesses. लेकिन मेरा दृष्टिकोण मेरी thought को determine करेगा, फिर मेरी फीलिंग उससे जेनरेट होगी. एंड जैसी जैसी मेरी फीलिंग्स जेनरेट होंगी उन लोगों के प्रति, मेरा एटीट्यूड बनता जाएगा. ये तो है ही ऐसे.
0: अब वो एक पूरा पूरा का पूरा एक मैंने वो बना लिया, यू नो, एक यस आई कैन अंडरस्टैंड,
1: एक चेन बनती जाती है ना. ये है हमारा प्रोसेस, एक प्रोडक्ट का प्रोसेस जो अंदर चल रहा है सारा दिन. एंड समटाइम्स वी आर नॉट अवेयर कि ये प्रोसेस अंदर चल रहा है, कि मैं एक थॉट क्रिएट करती हूँ, एक संकल्प, उसके बेसिस पे फीलिंग्स मेरे अंदर जेनरेट होती हैं. एंड जो फीलिंग्स मैं किसी के भी प्रति या परिस्थिति के प्रति क्रिएट करती रहती हूँ,
0: एटीट्यूड. किसी ने मुझे एक बार पेन दी, फिर दूसरी
1: किसी
0: बार
1: ने मुझे एक बार पेन नहीं दी,
0: अगेन मैंने क्रिएट किया.
1: मैंने नहीं, अगेन नहीं, बहुत डिफरेंस है दोनों चीजों में.
0: मतलब मुझे फीलिंग आई, ओके लेट्स टेक दिस,
1: यू नो दिस आर वोकैबुलरी मेक्स ऑल द डिफरेंस. नाउ यू आर सेइंग किसी ने मुझे एक बार पेन दी, दो बार दी, किसी ने नहीं दी, मैंने एक बार पेन क्रिएट की,
0: ली भी नहीं, क्रिएट की. Oh yes, it's very important how I have to understand.
1: This is also your conversation, na? ये आपकी conversation चल रही है. अगर आप बोलोगे किसी ने मेरे को एक बार पेन दी, दो बार दी, तो आप अपने आप को क्या कह रहे हो?
0: कोई और बाहर से ही देता है हमेशा मुझे. Yes.
1: Change your conversation. मैंने एक बार पेन क्रिएट की, इट्स ओके, आई एम क्रिएटिंग, लेकिन मुझे अवेयरनेस होगी. मैंने एक बार पेन क्रिएट की, दो बार की, तीन बार की, अब मेरा धीरे धीरे वो एटीट्यूड बन गया.
0: और उस व्यक्ति के प्रति, और वो फिर गुस्से का, हेट्रेड का, मतलब हर्ट का, जो भी चीजें हैं वो बनती है,
1: जो डिपेंडिंग ऑन मैंने उनके प्रति क्या सोच क्रिएट की, फिर मेरे अंदर जो फीलिंग जेनरेट की, फिर मैंने एटीट्यूड उनके बारे में बता दिया. वो तो जैसे हैं
0: वैसे ही हैं वो.
1: अब उसी इंसान को लेकर कोई और व्यक्ति बहुत अच्छी फीलिंग जेनरेट कर सकता है. वो व्यक्ति तो वही है. सपोज आप एक वही हैं, लेकिन आप ही को लेकर अलग अलग लोग अलग अलग फीलिंग्स क्रिएट करते होंगे, और फिर अलग अलग लोगों का आपके प्रति अलग अलग वृत्ति या एटीट्यूड है. आप तो वही हैं, तो आप उनके अंदर घुस के नहीं क्रिएट कर रहे, लेकिन मैं आपके बारे में जो सोच रही हूँ, अब मेरा एटीट्यूड आपके बारे में बन गया. तो थॉट्स, फीलिंग्स, एटीट्यूड, और अब जैसे मेरा एटीट्यूड होगा वैसे फिर मैं आपसे बात करूंगी, वैसे मेरा व्यवहार होगा ऑटोमेटिकली. तो वो मेरा एक्शन में आया, मुझे दिखाई तब देता है जब एक्शन में आ जाता है.
0: मैं बोल देती हूँ यस,
1: जब मेरा एक्शन में आता है. जो लोग मुझे अच्छे लगते हैं मैं हमेशा ही उनसे अच्छी तरह से बात करती हूँ. वो आज गुस्सा भी कर रहे होंगे ना, मैं फिर भी उनको समझूंगी, कोई बात नहीं ना. क्यों? क्योंकि मेरा एटीट्यूड उनके प्रति है ये बहुत अच्छे हैं. लेकिन अगर मेरा एटीट्यूड आपके प्रति है कि ये मुझे उतने पसंद नहीं है
0: और
1: या
0: आज
1: ये
0: मैं
1: अच्छे
0: भी
1: नहीं है
0: आपके लिए, तब भी मैं कहूंगी इसमें कुछ, यू नो, लाइक
1: माई बिहेवियर विल चेंज. तो वो जो मेरा एक्शन है वो बेस्ड है मेरे एटीट्यूड पर जो मैंने आपके प्रति क्रिएट किया. तो हम जब एक दूसरे को या अपने आप को देखते तो हम एक्शन लेवल पर देखते हैं, वर्ड्स या कर्म पे. ये तीन प्रोसेस पहले ही अंदर हो गए होते हैं, थॉट, फीलिंग और एटीट्यूड. और कोई भी एक्शन बार बार जब रिपीट होता जाएगा तो वो बन जाएगा हमारे
0: Habit.
1: एक बार मैंने आपसे गुस्से से बात की, दूसरी बार गुस्से से बात की, चार बार की, अब मेरी आदत बन गई है गुस्से से बात करना.
0: आपके साथ तो करना ही, या जनरली भी बन जाएगी.
1: जनरली भी फिर वो जब एक के साथ बनेगी, आदत बन रही है ना,
0: तो वो सिचुएशन कभी भी आई तो मुझे गुस्सा ही आएगा.
1: और धीरे धीरे वो मेरी आदत बन रही है. अभी क्या हुआ, हमने ऑफिस में कहा कि गुस्से से ही काम कराना पड़ता है, एटीट्यूड है, गुस्से से ही काम होता है. तो मैंने गुस्से से बात की, गुस्से से बात की, काम होता गया. लेकिन वही आदत लेकर मैं घर जाती हूँ शाम को, तो फिर बच्चों से भी कैसे बात करूंगी.
0: गुस्से के बिना तो काम नहीं होता.
1: गुस्सा करेंगे ना तभी ये पढ़ेंगे, क्योंकि आदत बन गई है. तो आदत मेरे से सेपरेट होकर घर नहीं जाती है फिर. फिर वो मेरा आदत मेरा पैकेज है, मेरी पर्सनालिटी का हिस्सा है. मेरे साथ हर जगह जाएगी,
0: तो मैं ही खराब होगी फिर. इन द सेंस मैंने अपने लिए गलत कर लिया.
1: सबसे देख ले,
0: इट वॉज आदत मेरी उस पर्टिकुलर व्यक्ति या सिचुएशन के लिए नहीं रह गई. इट इज लाइक माई पार्ट ऑफ द पर्सनैलिटी.
1: दिस इज माई पर्सनैलिटी. अब मेरी जो सारी आदतें पुट टूगेदर इज माई पर्सनैलिटी. इट्स माई पर्सनैलिटी. तो मेरी पर्सनैलिटी कहाँ से बनी? जो मैं एक एक थॉट क्रिएट करती
0: हूँ. ओहो, तो गलती तो उनकी थी, पर्सनैलिटी मेरी खराब हुई.
1: गलती उनकी थी, लेकिन मैंने थॉट किस क्वालिटी की क्रिएट की?
0: वो मैं, ओके.
1: See, again,
0: वो कुछ भी करते रहे,
1: मैं जो थॉट क्रिएट करता हूँ वो मेरी पर्सनालिटी बनती है. जिस दिन मुझे ये रियलाइज हो गया तो मेरा सारा अटेंशन किस पर चला जाएगा?
0: जो मैं थॉट क्रिएट कर रहा हूँ. ऑफ कोर्स
1: हम कर क्या रहे हैं, दूसरे की पर्सनालिटी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन दूसरे की पर्सनालिटी को क्रिटिसाइज करते करते
0: अपनी पर्सनालिटी खराब हो गई है. तो
1: क्योंकि वो क्वालिटी ऑफ थॉट्स क्रिएट होती गई ना.
0: तो वो तो मैं जो एक विक्टिम बन रहा था, तो मैं एक्चुअली विक्टिम बन गया, क्योंकि मैंने अपनी पर्सनालिटी को ही खराब कर
1: दिया. इमोशनल अब्यूज ये हुआ ना सर. तो मेरी पूरी पर्सनालिटी अंदर कमजोर हो गई. कमजोरियां देखते देखते देखते देखते, औरों के ऊपर ब्लेम करते करते करते अपना पावर खत्म हो गई. ये मेरी पर्सनालिटी बन गई.
0: यस,
1: स्टार्टेड विद माई thoughts.
0: And which was justified, you know, my feeling at that time.
1: Now the last stage, which is even more important, कि जो आपकी personality बन गई, उसी तरह से तो आप interact करोंगे लोगों के साथ. वही energy तो आप बाहर दुनिया में भेजेंगे, और वैसे ही फिर outcome आपके साथ होते जाएंगे. अगर आप sensitive personality हैं, तो आपके साथ फिर जो होता जाएगा, वो भी किस basis पर होगा?
0: कि आप कैसे हो? हाँ.
1: So जिसको हम कहेंगे, जो कर्म आप करेंगे, उसी का रिटर्न आपको मिलेगा. मतलब जो आपकी क्वालिटी ऑफ पर्सनालिटी है, दैट विल देन क्रिएट योर डेस्टिनी. क्योंकि जो आप फिर सेंड आउट करेंगे, उसी का रिटर्न आपको मिलेगा. तो डेस्टिनी क्या है? डेस्टिनी है कि मेरे साथ जो होता जाता है, उसी को हम डेस्टिनी कहते हैं.
0: मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है?
1: हाँ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है? मेरे साथ ये, मेरे भाग्य में है, तो ये मेरी डेस्टिनी है. लेकिन हम आज दिन तक एक स्लीपिंग मोड में जो चल रहे थे, कि वो कि मेरी डेस्टिनी कहीं और लिखी जा रही है, कोई और लिख रहा है. लेकिन मेरी डेस्टिनी तो हर स्टेप पे मैं क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि जो कर्म मैं करती, उसी का फल मुझे मिलता. जब फल मिलता तो हम कहते हैं ये मेरी डेस्टिनी है, ये मेरा भाग्य है. लेकिन दैट इज ओनली अ रिजल्ट ऑफ
0: माय ओन
1: जो मैंने भेजा है बाहर.
0: ओह, सो मतलब जैसी मेरी पर्सनालिटी है, वैसा ही मुझे मेरी डेस्टिनी हो जाएगी.
1: So destiny मेरी कहाँ से शुरू हुई? फिर
0: कहीं ना कहीं personality मेरी अलग थी और destiny मेरी कुछ और होती थी actually.
1: हाँ, जैसे कि
0: मतलब professionally मुझे कहाँ कहाँ मिलेगा. हम भाग्य की जहाँ बात करते हैं, वो हम कुछ और बातें करने लग जाते हैं. लेकिन मेरी personality जो है वो तो again, you know, like I usually
1: you need to think. We could probably discuss on this longer, but just churn on it. इसको आप सोचते जाओ कि जब हमने एक बार एक लॉ तो हमें समझ में आ गया कि जो कर्म हम करेंगे उसी का फल हमें मिलेगा. कर्म अब हमें समझ में आया हमारी सोच से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड, एक्शन, हैबिट, पर्सनैलिटी, जो करेंगे उसी का फल मिलेगा. डेस्टिनी मीन्स जो फल मिल रहा है. इट कुड बी ऑफ द कर्म जो मैंने आज किया, इट कुड बी ऑफ बहुत पहले का, लेकिन मिल वो ही रहा है
0: जो मैंने किया हुआ.
1: जो मैंने किया है, राइट? जब वो मिलता है, तुरंत नहीं पता चलता कि ये जो मैंने अभी अभी किया था उसी का मिल रहा है. लेकिन अगर ये मुझे क्लियर है कि जो मिल रहा है इट्स ओनली अ रिजल्ट ऑफ जो मैंने बाहर भेजा था, तो आई अंडरस्टैंड कि मेरी डेस्टिनी कौन क्रिएट कर रहा है. मैं क्रिएट कर रहा हूँ. और कर्म मैं किस क्वालिटी का क्रिएट कर रहा हूँ? जिस क्वालिटी की मेरी थॉट है.
0: थॉट है. तो अगेन एक डिस्क्रिपेंसी अभी है जिसमें हम डिस्कस करना बाकी है, वो हम करेंगे कि पर्सनालिटी जो मैं हूँ, जो मेरा एटीट्यूड है, जो मेरी हैबिट्स हैं, जो मेरी पर्सनालिटी है, वो मेरी डेस्टिनी कैसे क्रिएट करती है, इसको अभी हम करेंगे. लेकिन उससे पहले का आई थिंक आई एम प्रीटी क्लियर, आई थिंक लोग भी क्लियर हैं. तो ये कि जहाँ मैंने मुझे फीलिंग आई, चलिए हम अभी थॉट पे जाते भी नहीं, मुझे फीलिंग आई, उससे पीछे अगर मैं जाके देखती हूँ कि वो कौन सा थॉट था जिसने मुझे वो फीलिंग क्रिएट की, तो मेरा वो थॉट मेरे सामने आ
1: जाएगा. एक चीज करेक्ट करो, फीलिंग आई नहीं, अभी ऐसा
0: फीलिंग. हाँ,
1: फीलिंग आई.
0: फीलिंग जो यहाँ से क्रिएट की, जो फीलिंग यहाँ से आई. अच्छा, फॉरगेट अबाउट यहाँ से आई या यहाँ से.
1: नो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. दैट्स वेरी
0: इंपॉर्टेंट. देयर इज अ फीलिंग. आई एम फीलिंग. आई एम फीलिंग बैड. आई एम फीलिंग गुड.
1: इट्स एन एक्सपीरियंस.
0: यस, यू नो. सो वो जो अनुभव है, वो हम सब अनुभव कर रहे हैं. हम हर्ट का, हम जेलसी का, हम हैप्पीनेस का, हम एक्साइटमेंट का, सबका अनुभव कर रहे हैं. वो अनुभव आते ही हम रुक जाएं और हम उस थॉट के पास जाएं कि किसने वो थॉट क्रिएट किया. वो थॉट मेरी फीलिंग के साथ जुड़ा और फिर वो एटीट्यूड बना, दैट वी कैन एक्चुअली सी, दिस कैन बी, दिस इज विजिबल, चाहे वो मेरे बॉस के साथ था, मेरे बच्चों के साथ था, मेरे हस्बैंड के साथ था, किसी के साथ भी था, वो एटीट्यूड मेरे साथ रहा, मेरे हर बार में, हर इंटरेक्शन में भी रहा,
1: तो एक्शन में आ गया ना,
0: हाँ
1: एक्शन में,
0: हर इंटरेक्शन में उनके साथ आते ही मेरा वो एटीट्यूड, चाहे वो गुस्से का था, प्यार का था, यू नो इमोशनल का था, हर्ट का था, जेलसी का था, वो इंटरेक्शन में आ जाएगा, दैट बिकम्स माई कर्म,
1: फिर हाँ वो तो एक्शन में आ गया, एंड वही एक्शन बार बार करने से हैबिट बन गई,
0: और वो हैबिट सिर्फ उसी पर्टिकुलर व्यक्ति के साथ नहीं रह गई, वो मेरी एक्चुअली दिस इज अमेजिंग, यू नो कि ये मेरी पूरी सबके साथ इंटरेक्शन में ऐसा होने लग गया,
1: नेचुरल है ना, मेरी आदत बन जाएगी उस,
0: क्योंकि वो एंगर मैंने एक के साथ किया तो वो हर बार सिचुएशन आती है, मुझे आदत यही हो गई कि इसी को सॉल्व ऐसे ही करना है, सो इट बिकम्स माई हैबिट,
1: राइट,
0: एंड देन माई हैबिट ऑफ कोर्स इज माई पर्सनैलिटी कंसोलिडेटेड, लाइक सारी जो हैबिट्स को मिला लेती हूँ, वो ये तो पता है हमें कि वो पर्सनैलिटी जो है मीन्स व्हाट आर माई हैबिट्स, यू नो हाउ आई हैंडल एवरी सिचुएशन इज माई पर्सनैलिटी, बट हाउ माई पर्सनैलिटी एक्चुअली बिकम्स और राइट्स माई डेस्टिनी इज व्हाट आई नीड टू एक्सप्लोर, लेकिन उससे पहले ये जो पूरी साइकिल हमने देखी है, और थॉट, फीलिंग, एटीट्यूड एंड देन हैबिट एंड देन पर्सनैलिटी, ये जो छह चीजें हमारे सामने आई, तीन अंदर तीन बाहर, you know, इनके ऊपर हम काम कर सकते हैं, थैंक यू सो मच, इट्स अमेजिंग, यू नो, यस वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट, बट देन टू रियली यू नो गो डीप इन टू इट एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड मेरी प्रैक्टिकल लाइफ में, मेरी प्रैक्टिकल सिचुएशन में कहाँ कहाँ ये चीज आई, ओम शांति,
1: ओम शांति,
0: कोई बात, कोई सवाल आपके पास है, खुला मंच है, खुलकर बात कर सकते हैं, आप हमें फोन करिए या फिर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, हमारे फोन नंबर्स हैं 0124-266-7000, 9999-344-555, 9999-344-666, 9873-666-555, हमारा ईमेल आईडी है omshanti@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में इन दिनों हैप्पीनेस इंडेक्स को हम देख रहे हैं कि कौन सी ऐसी बातें हैं जिन पर मेरी हैप्पीनेस डिपेंड कर रही थी और कैसे मैं उस डिपेंडेंसी को वापस लेकर अपने हाथ में ले सकता हूँ। बहुत सी बातें अभी बाकी करनी है, मेरी पर्सनैलिटी जो कई चीजों से बनी है, कई प्रोसेस से गुजरी है, वो पर्सनैलिटी कैसे मेरा भाग्य लिखती है, कैसे मैं अपना भाग्य खुद लिख सकता हूँ, इस पर बातचीत करेंगे आने वाली कड़ी में, आपका साथ इंतजार करेंगे और अभी आपसे विदा लेते हैं, ओम शांति, ओम।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है मोहन किशोर नामदास। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा और महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार अवकाश।

भारतीय ज्ञान परंपरा के आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र उदित हुए हैं जिनका प्रकाश समय की सीमाओं को लांघकर पीढ़ियों का मार्ग आलोकित करता रहा है। आयुर्वेद के पुनरुत्थान से जुड़े एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति। जब परंपरा और आधुनिकता के बीच संवाद की आवश्यकता थी, तब उन्होंने आयुर्वेद की सनातन चेतना को नए युग की धड़कनों से जोड़ा। उनके लिए आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं थी, बल्कि वो आयुर्वेद को भारतीय संस्कृति की जीवंत आत्मा मानते थे। उसे जीवन को संतुलन, स्वास्थ्य और समरसता प्रदान करने वाली एक संपूर्ण दृष्टि मानते थे। ज्ञान उनकी साधना था, सेवा उनका धर्म और आयुर्वेद का उत्थान उनका संकल्प। वो आधुनिक भारत में आयुर्वेद चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सबसे प्रमुख प्रणेताओं में से एक थे। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति का जन्म 3 मार्च सन 1880 को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के माधववरम गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अचंता रमैया था। परिवार के आध्यात्मिक वातावरण ने उनके व्यक्तित्व की नींव रखी। पिता की प्रेरणा से ही उन्होंने वेद पुराण और संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। उनके बाल्यकाल पर उनके दादा सुब्बा रायडू और प्रसिद्ध समाज सुधारक कुंदुकुरी वीरेश लिंगम का गहरा प्रभाव पड़ा। इन दोनों विभूतियों के सानिध्य ने उनके भीतर ज्ञान और समाज सेवा के बीज बोए। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उनकी माताजी गंभीर रूप से बीमार हुईं। उपचार के दौरान अचंता लक्ष्मीपति की भेंट राजमहेंद्रम के एक प्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर सीतारमैया से हुई। ये केवल एक वैद्य से भेंट नहीं थी, बल्कि आयुर्वेद से उनका पहला सटीक परिचय था। डॉक्टर सीतारमैया ने उन्हें आयुर्वेद के व्यावहारिक सूत्रों से परिचित करवाया और उनके मन में इस भारतीय चिकित्सा परंपरा के प्रति आदर भाव जागृत किया। इस तरह भारत की इस अमूल्य विरासत को नई प्रतिष्ठा दिलवाने का संकल्प उनके मन में जागा।

ये वो समय था जब भारत में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा था। अचंता लक्ष्मीपति ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को समझने का निश्चय किया। सन 1904 में उन्होंने बीए की शिक्षा पूरी की तथा छात्रवृत्ति प्राप्त कर मद्रास मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। इस तरह सन 1909 में उन्होंने एलोपैथी चिकित्सा में प्रामाणिक डिग्री हासिल की। सन 1910 में उन्होंने मद्रास में अपनी प्रैक्टिस शुरू की और वो वेंकटगिरी के राजा जैसे संभ्रांत वर्ग के पारिवारिक चिकित्सक बने। लेकिन सन 1914 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित किया गया, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद को गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति घोषित करना था। इसके विरोध में डॉक्टर लक्ष्मीपति ने अपना नाम एलोपैथी के मेडिकल रजिस्टर में दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार के इस कदम को उन्होंने केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं माना, उन्होंने इसे भारतीय ज्ञान परंपरा के सम्मान का प्रश्न समझा। ये उनके पेशेवर जीवन के लिए जोखिमपूर्ण समय था, लेकिन इसी समय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का प्रवेश हुआ, वैद्य रत्न पंडित देवी गोपाल चारलू। वो मद्रास के सुप्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान थे जिन्होंने अचंता लक्ष्मीपति की प्रतिभा को पहचाना तथा अपने संरक्षण में उन्हें आयुर्वेद के गहन अध्ययन का अवसर दिया। सन 1914 से 1919 तक अचंता लक्ष्मीपति ने उनसे गहन ज्ञान प्राप्त किया। सन 1919 में विश्व स्पेनिश फ्लू नामक घातक महामारी की चपेट में आ गया। इस महामारी ने दुनिया की एक तिहाई आबादी को अपनी चपेट में ले लिया था। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ये महामारी फैली थी। ऐसे कठिन समय में डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से हजारों रोगियों को राहत पहुंचाई। इस अनुभव ने उनके इस विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता है। इसके बाद उन्होंने एलोपैथी इलाज पूरी तरह से छोड़ दिया और स्वयं को आयुर्वेद के लिए समर्पित कर दिया। सन 1920 में उनके गुरु वैद्य रत्न पंडित देवी गोपाल चारलू का निधन हो गया और गुरु का दायित्व शिष्य के कंधों पर आ गया। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को मद्रास आयुर्वेदिक कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। सन 1920 से 1928 तक उन्होंने इस संस्था को केवल एक शिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि उसे आयुर्वेदिक चेतना का केंद्र बिंदु बना दिया। इस कॉलेज को चलाने के लिए मुंगला के राजा ने भी बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति स्वास्थ्य को जीवन पद्धति का विषय मानते थे। यही कारण है कि उन्होंने सन 1926 में मद्रास के पास स्थित आवड़ी में आरोग्य आश्रम समिति की स्थापना की। ये केवल एक आश्रम नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य और प्रकृति के समन्वय का प्रयोग था। एक ऐसा स्वास्थ्य ग्राम जहां उपचार के साथ साथ जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने युवा वैज्ञानिक डॉक्टर यल्ला प्रगदा सुब्बाराव की प्रतिभा को पहचान कर उनके प्रारंभिक शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया और उनकी उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्हें चमत्कारिक औषधियों का जनक माना जाता है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति पर रमण महर्षि के आध्यात्मिक विचारों का गहरा प्रभाव था, जिन्होंने उनके चिंतन और विचारधारा को एक सार्थक दिशा प्रदान की। वो गांधी जी के विचारों से भी अत्यधिक प्रभावित थे तथा स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।

सन 1933 में डॉक्टर अजंता लक्ष्मीपति की सेवाओं और नेतृत्व क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई। बीकानेर में आयोजित ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे देश में फैल रही थी। लोग उन्हें केवल एक चिकित्सक के रूप में नहीं बल्कि आयुर्वेद का पुनरुत्थान करने वाले मनीषी के रूप में देख रहे थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी यात्रा अभी शेष थी, एक यात्रा जो उन्हें गांधी जी के और निकट ले गई, एक यात्रा जिसने गांव-गांव जाकर स्वास्थ्य संदेश पहुंचाया। सन 1938 का साल भारत की स्वाधीनता के स्वप्न से आंदोलित साल था। महात्मा गांधी ग्रामोदय और स्वावलंबन के विचार को जन जन तक पहुंचा रहे थे। इसी समय डॉक्टर अजंता लक्ष्मीपति ने एक अभिनव अभियान आरंभ किया जिसका नाम था आरोग्य यात्रा। वो लगभग 100 चिकित्सकों के साथ पैदल चलते हुए गांव-गांव पहुंचे। उन्होंने लोगों को स्वच्छता, संतुलित जीवन शैली और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सिद्धांतों का महत्व समझाया। वो पंचशुद्धि प्रणालिका के 5 नियमों का संदेश लिए आगे बढ़ते रहे। अपने इस अभियान में उन्होंने प्रत्येक गांव में कम से कम 1 एकड़ भूमि पर औषधीय पौधों का उद्यान विकसित करने हेतु लोगों को प्रेरित किया। उनका मानना था कि स्वास्थ्य अस्पतालों से नहीं बनता, वो विकसित होता है स्वच्छ विचारों, संतुलित आहार और प्रकृति के सानिध्य में। डॉक्टर लक्ष्मीपति के इन प्रयासों से गांधी जी अत्यंत प्रभावित हुए। सन 1939 में गांधी जी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सेवाग्राम आश्रम आने का निमंत्रण दिया। वर्धा का सेवाग्राम आश्रम उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था। सेवाग्राम पहुंचकर उन्होंने केवल एक चिकित्सक की भूमिका नहीं निभाई बल्कि उन्होंने स्वास्थ्य और ग्राम विकास के गांधीवादी स्वप्न को मूर्त रूप देने में सहयोग दिया। गांधी जी ने उन्हें आश्रम में एक विशाल उद्यान विकसित करने का दायित्व सौंपा। इस उद्यान का उद्देश्य केवल औषधियां उगाना नहीं था बल्कि ये सिद्ध करना था कि भारत के गांव अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मीपति की धर्मपत्नी श्रीमती रुक्मिणी लक्ष्मीपति भी राष्ट्र सेवा को समर्पित रहीं। वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं और सन 1946 में मद्रास प्रांत की सरकार में वो सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बनी। इस तरह पति पत्नी ने साथ मिलकर भारतीय चिकित्सा के विकास की एक नई धारा प्रवाहित की। सन 1947 में भारत की आजादी के बाद भी वो राष्ट्र सेवा को समर्पित रहे। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर वो समाज सुधार के कार्य में भी निरंतर संलग्न रहे। डॉक्टर लक्ष्मीपति अंतरजातीय विवाह के प्रबल पक्षधर थे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपनी जाति से बाहर एक गैर ब्राह्मण युवक से किया। इसके साथ ही वो पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के भी पक्षधर थे। सन 1960 में भारत सरकार ने उन्हें योजना आयोग में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया जहां उन्होंने रोग प्रतिरोधक चिकित्सा और जीवन शैली सुधार पर विशेष बल दिया। उन्होंने तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में चिकित्सा पद्धतियों पर लगभग 100 पुस्तकें लिखीं जिनमें से 63 पुस्तकें विशुद्ध रूप से भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और आयुर्वेद के अनुवादों पर आधारित थीं। उनकी आत्मकथा आयुर्वेद के पुनरुत्थान का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। डॉक्टर अजंता लक्ष्मीपति को देश भर में भिषग रत्न, प्राणाचार्य तथा आयुर्वेद वाचस्पति जैसी कई उपाधियों से विभूषित किया गया था। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 6 अगस्त सन 1962 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है लक्ष्मण प्रसाद दुबे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, जबलपुर से वृंदा हिंगनीकर और उज्जैन से संजीव जैन। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

अपनी स्वाधीनता का इतिहास ऐसे अनेक राष्ट्रभक्तों की कहानी कहता है जो समय की प्रचंड आंधियों के बीच दीप नहीं दिशा बनकर उभरे। भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले एक ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे गणेश घोष। उनकी यात्रा उस नदी की तरह थी जो चट्टानों से टकरा कर भी अपना मार्ग बनाना जानती है। उनका संकल्प उस अग्नि की तरह था जो स्वयं तप कर भी अपने आसपास उजाला बिखेरती है। गणेश घोष का जन्म 22 जून सन 1900 को अविभाजित भारत के जैसोर नामक स्थान पर हुआ था जो बांग्लादेश के खुलना जिले के पास स्थित है। उनके पिता का नाम विनोद बिहारी घोष था। गणेश घोष बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे तथा अपने आसपास की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति देखकर बहुत अधिक उद्वेलित हुआ करते थे। उनकी शिक्षा आगे बढ़ती रही और आरंभ में उन्होंने ब्रिटिश रेलवे में काम भी किया, लेकिन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसी दौरान कोलकाता के बंगाल तकनीकी संस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए उन्होंने चिटगांव में एक स्वदेशी कपड़े की दुकान भी खोली थी। उन्होंने जो मैकेनिकल और तकनीकी कौशल की शिक्षा ग्रहण की थी वो शिक्षा केवल आजीविका के लिए नहीं थी, बल्कि इस कौशल का प्रयोग वो देश को आजाद कराने के लिए हथियार और बम बनाने के लिए भी करने का विचार करने लगे। भारत की आजादी उनकी आंखों का पहला सपना था। अंग्रेजों की गुलामी से वो अत्यधिक आक्रोशित रहा करते थे तथा मन ही मन क्रांति पथ पर चलने का उन्होंने संकल्प ले लिया। उन्हें विश्वास था कि भारत बहुत जल्द आजाद होगा।

कलकत्ता में पढ़ाई के दौरान ही गणेश घोष बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन युगांतर के संपर्क में आ गए थे। वो बहुत जल्द इस संगठन के सक्रिय सदस्य बन गए। चटगांव में रहते हुए ही उनकी भेंट मास्टर सूर्यसेन से हो चुकी थी। सूर्यसेन की सादगी और दृढ़ संकल्प से वो अत्यधिक प्रभावित हुए और उनके सहयोगी बन गए। बहुत जल्द चटगांव में क्रांतिकारियों का समूह बना, जिसमें सूर्यसेन के साथ गणेश घोष, अनंत सिंह और लोकेन बल शामिल थे। इन्हें चटगांव में क्रांतिकारियों की त्रिमूर्ति कहा जाता था। गणेश घोष ने चटगांव के युवाओं को व्यायाम शालाओं के माध्यम से संगठित करना शुरू किया। वो युवाओं को शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाने, लाठी चलाने और अनुशासन सिखाने के प्रभारी थे। वो मास्टर सूर्यसेन द्वारा स्थापित चटगांव रिपब्लिकन आर्मी में सघन रूप से सक्रिय हो गए। ये एक सशस्त्र क्रांतिकारी संगठन था, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से चटगांव को मुक्त कराना तथा पूरे देश में विद्रोह की चिंगारी भड़काना। इस तरह इस क्रांतिकारी संगठन ने मजबूत आकार ले लिया। सन 1930 आते आते चटगांव की धरती पर एक बड़ी योजना आकार लेने लगी और इसके सूत्रधार थे मास्टर सूर्यसेन, गणेश घोष और अनंत सिंह। इन्होंने निश्चय किया कि अंग्रेजी शासन को सीधे चुनौती दी जाए। योजना बनी कि चटगांव के दोनों शस्त्रागारों पर कब्जा कर लिया जाए, संचार व्यवस्था को ठप्प कर दिया जाए, रेलवे संपर्क काट दिया जाए ताकि ब्रिटिश सेना की सहायता वहां तक न पहुंच सके। 18 अप्रैल सन 1930 गुड फ्राइडे का दिन था। रात करीब 10 बजे भारतीय रिपब्लिकन आर्मी की वर्दी पहने क्रांतिकारियों ने हमला बोल दिया। गणेश घोष ने पुलिस शस्त्रागार पर हमला करने वाले दस्ते का नेतृत्व किया। उन्होंने बड़े ही साहस और चतुराई से वहां मौजूद पहरेदारों को निष्क्रिय कर दिया तथा भारी मात्रा में बंदूकें और मस्कट जब्त कर लिया। उधर अनंत सिंह के समूह ने सहायक बल शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। शस्त्रागार पर पूरी तरह कब्जा करने के बाद सभी क्रांतिकारी पुलिस शस्त्रागार के बाहर इकट्ठा हो गए। वहां मास्टर सूर्यसेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, सैन्य सलामी दी गई और अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा कर दी गई। गणेश घोष इस नवगठित क्रांतिकारी व्यवस्था में महत्वपूर्ण दायित्वों के साथ संलग्न हुए, लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कुछ ही दिनों में ब्रिटिश सेना ने चटगांव को चारों ओर से घेर लिया। परिस्थिति देखकर क्रांतिकारी दल जलालाबाद की पहाड़ियों की ओर बढ़ चला।

22 अप्रैल 1930 को ब्रिटिश सेना ने जलालाबाद की पहाड़ियों को घेरकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस युद्ध में गणेश घोष ने युवाओं का ऐसा हौसला बढ़ाया कि क्रांतिकारियों की सटीक फायरिंग के सामने ब्रिटिश सेना टिक नहीं पाई, उसे पीछे लौटना पड़ा। इसके बाद मास्टर सूर्यसेन ने क्रांतिकारियों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर गांवों में छिपने का आदेश दिया। गणेश घोष, अनंत सिंह, लोकेन बल और आनंद गुप्ता हुगली जिले के चंदन नगर में पहुंचे, जो उस समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, इसलिए ये स्थान ब्रिटिश पुलिस के सीधे अधिकार क्षेत्र से बाहर था। यहां क्रांतिकारी सुहासिनी गांगुली और शशधर आचार्य ने पति पत्नी होने का नाटक कर एक घर किराए पर ले लिया, जहां गणेश घोष और उनके साथी छिपे हुए थे। ब्रिटिश खुफिया विभाग को इस ठिकाने का पता चल गया। पुलिस ने इसे घेरकर भयंकर गोलाबारी शुरू की। इस मुठभेड़ में गणेश घोष के साथी मखनलाल घोष शहीद हो गए और गणेश घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। अपनी जेल यात्रा में भी वो चुप नहीं बैठे, उन्होंने जेल में दो बड़ी भूख हड़ताल भी की थी। उनकी रिहाई के लिए देशव्यापी आंदोलन चले। महात्मा गांधी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और अन्य शीर्ष नेताओं ने ब्रिटिश सरकार पर लगातार दबाव बनाया और अंततः 1946 में वो रिहा हुए। आजादी के बाद उन्होंने शस्त्र छोड़कर जन आंदोलन और चुनावी राजनीति का रास्ता चुना। वो पश्चिम बंगाल के गरीब और शोषित वर्ग की आवाज बनकर उभरे। आजादी के बाद वो लगातार 3 बार पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य चुने गए। सदन में वो अपनी प्रखर वाणी और शोषितों की आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे। सन 1967 में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। वो दक्षिण कलकत्ता की सीट से चुनाव जीतकर 4th लोकसभा के सदस्य बने। अपने जीवन के अंतिम 2 दशकों में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि चटगांव विद्रोह और उनके शहीदों का इतिहास आने वाली पीढ़ियों तक अवश्य पहुंचे। उन्होंने इसी उद्देश्य से बंगाली और अंग्रेजी में कई संस्मरण, लेख और पुस्तकें लिखीं। उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है चट्टग्राम विप्लवेर बन्ही शिखा। ये उस दौर का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है।

है। वो जीवन के अंत तक कोलकाता के एक छोटे से मकान में बहुत ही सादगी से रहे। उन्हें जो भी पेंशन या भत्ते मिलते थे उसे वो जन कल्याण हेतु दान कर दिया करते थे। अपने जीवन का पल पल भारत भूमि को समर्पित करते हुए उन्होंने 16 अक्टूबर सन 1994 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

18वीं सदी का सुधार युग। उस युग के प्रमुख समाज सुधारक थे राजा राममोहन राय, ईश्वर चंद विद्यासागर, केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ ठाकुर, रामकृष्ण परमहंस आदि। उन्होंने अपने अपने प्रयासों से समाज कल्याण का बीड़ा उठाया था। इन महापुरुषों के पदचिन्हों का अनुसरण कर स्वामी विवेकानंद ने समाज और देश ही नहीं विदेशों में भी अपनी पहचान बनाई। पश्चिमी देशों को भारत की एक नई पहचान मिली। भारतीय ज्ञान, दर्शन और आध्यात्मिकता से उनका परिचय हुआ और सारा विश्व इस तरुण सन्यासी के प्रति आकर्षित हो गया।

0: आपने 19वीं सदी के भारत और मुख्यतः बंगाल के बारे में भी जाना। हमने सुना वो कितना अशांत युग था, समाज दिशाहीन तथा अंधकारमय था। कुछ समाज सुधारकों ने समाज को कुछ हद तक सुधारा, दिशा दी, परंतु सदियों की रूढ़िवादिता, धर्मांधता तथा कदाचार पर संपूर्ण रूप से विजय पाना संभव न था।
1: उसी अशांत कालखंड में स्वामी विवेकानंद का आविर्भाव हुआ। अपने ज्ञान, कर्मयोग, भक्ति एवं वैदांतिक राष्ट्रवाद से उन्होंने समूचे भारत का ही नहीं बल्कि पूरे संसार का दिल जीत लिया। दिशाहीन भारत को एक सच्चा पथ प्रदर्शक मिला। जाति, प्रांत और भाषाई अंतर को भुलाकर भारतवासियों ने उन्हें अपने प्रेरणा पुरुष के रूप में स्वीकार कर लिया। उनकी बहुमुखी प्रतिभा से लोग मुग्ध हुए।
0: ऐसे दिव्य महापुरुषों की जीवन कथा बहुत ही रोचक है। अपने छोटे से जीवन काल में उन्होंने हजार वर्षों का काम कर दिखलाया था। इतने सारे गुणों से धनी स्वामी विवेकानंद को संस्कार अपने परिवार से मिले थे। उनकी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत मजबूत थी, अतः विवेकानंद को जानने से पहले उनके परिवार के बारे में जानना बेहद जरूरी है। 19वीं सदी की शुरुआत में कलकत्ता नगरी के उत्तरी भाग में सिमुलिया या सिमला मोहल्ले में गौर मोहन मुखर्जी स्ट्रीट पर दत्त परिवार का विशाल भवन अपनी संपन्नता के लिए प्रसिद्ध था। आज भी उस भवन का जीर्ण द्वार अतीत वैभव का साक्षी बना खड़ा है। दत्त वंश का ऐश्वर्य और ख्याति उनके 12 महीने के 13 उत्सव पर्व का आडंबर उस समय के कलकत्ता के धनी समाज में चर्चा का विषय रहा।
1: कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के नामी वकील राममोहन दत्त के समय में सिमुलिया के दत्तों ने नगर में काफी प्रभाव और प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। राममोहन दत्त के पुत्र दुर्गाचरण ने उस समय की प्रथानुसार संस्कृत तथा फारसी भाषा में शिक्षा प्राप्त की और राजभाषा अंग्रेजी भी सीखी। उन्होंने भी वकालत प्रारंभ कर दी, परंतु पिता जैसी धनोपार्जन की प्रवृत्ति उनमें न थी। तत्कालीन धनी संतानों के समान नवीन नागरिक सभ्यता के भोग विलास भी उन्हें आकर्षित न कर सके।
0: ये धर्मानुरागी युवक अवसर और मौका पाते ही धर्म शास्त्रों की चर्चा तथा सत्संग किया करता था। उत्तर पश्चिम प्रदेशों से आए हुए हिंदी भाषी वेदांती साधुओं से प्रभावित होकर दुर्गाचरण ने 25 वर्ष की उम्र में ही सारा ऐश्वर्य और सम्मान त्याग कर सन्यास ले लिया।
1: सन्यासियों के नियमानुसार 12 वर्ष के बाद दुर्गाचरण एक बार अपने जन्म स्थान का दर्शन करने आए थे और अपने एकमात्र पुत्र विश्वनाथ को आशीर्वाद दे गए थे। उसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। उनके आगमन के एक वर्ष पहले ही उनकी पत्नी यानी विश्वनाथ की माता का निधन हो गया था। सन्यासी पुत्र विश्वनाथ ही सन्यासी विवेकानंद के पिता थे।
0: विश्वनाथ ने अपने दादा राममोहन का अनुसरण कर वकालत करना प्रारंभ किया। वे प्रतिभाशाली व्यक्ति थे। वकालत में व्यस्त रहते हुए भी अध्ययन में उनका प्रबल अनुराग था। वे फारसी जानते थे, हाफिज की कविताएं पढ़ते थे, अंग्रेजी साहित्य और इतिहास आदि पढ़ने के कारण धार्मिक कट्टरता उनमें ना थी। कई ऊंचे खानदान के मुस्लिम उनके मुवक्किल थे तथा लखनऊ, इलाहाबाद, दिल्ली, लाहौर आदि स्थानों की यात्रा करने के कारण वे उस समय के अनेक खानदानी मुस्लिम परिवारों के संपर्क में आ चुके थे, अतः वे उनके रीति रिवाजों को सम्मान की दृष्टि से देखते थे और उनकी पाबंदी भी करते थे। बाइबल के अध्ययन के कारण वे ईसाई धर्म के भी प्रेमी थे, अर्थात धर्म, ईश्वर आदि के बारे में कोई भेदभाव नहीं रखते थे। वे काफी धनोपार्जन करते थे और खर्च भी वैसा ही करते थे। रिश्तेदारों दोस्तों का आदर सत्कार करना तथा ठाट बाट से रहना वे पसंद करते थे। उनके घर में अनेक आश्रित पलते थे और उस विशाल भवन में किसी चीज की कमी ना थी।
1: परंतु विश्वनाथ की पत्नी भुवनेश्वरी देवी एक पारंपरिक महिला थी। इस बुद्धिमती कुशल गृहिणी की देखरेख में उनके विराट परिवार के सभी कार्य बड़ी कुशलता से संपन्न होते थे। वे बंगला पढ़ना लिखना भली भांति जानती थी। रामायण महाभारत पुराण भागवत आदि का नियमित पाठ करती और साथ ही अपने पति पुत्र के साथ चर्चा करके तत्कालीन विचारधारा से भी परिचित रहती थी। आस पड़ोस के लोग उन्हें श्रद्धा करते थे। वो मीठा बोलने वाली गंभीर धर्म परायणा महिला प्रतिदिन शिव पूजा करती थी।
0: भुवनेश्वरी देवी के मन में एक दुख था। दो कन्याओं की माता तो वे थीं, पर उनका कोई पुत्र ना था। पुत्र मुख देखने की लालसा ने उन्हें धीरे धीरे बहुत ही व्याकुल कर डाला। वे प्रतिदिन सुबह शाम शिव मंदिर में प्रार्थना करती और शिव को संतुष्ट करने के लिए कठोर व्रतों का पालन करती।

कैलाशपति भुजंगेश्वराय नमः। हे देवाधिदेव, मैं भक्ति पूर्वक तन मन से तुम्हारी सेवा में रत हूँ। सभी कठोर व्रतों का नियम पूर्वक पालन करती हूँ। तुमसे आज्ञा या आशीर्वाद लिए बिना मैं कोई भी काम नहीं करती प्रभु। फिर तुम्हारी कृपा कब होगी? कब आप प्रसन्न होंगे? कब मेरी गोद में एक पुत्र आएगा प्रभु? कब तुम्हारी दया होगी? बोलो बोलो ना, कब होगी दया? कब कब होगी तुम्हारी दया?

0: इतने व्रत उपवास पूजा अर्चना के बाद भी उनके मन को शांति न हुई। शिव को और भी अधिक तुष्ट करने के लिए उन्होंने काशी में रहने वाली एक रिश्तेदार महिला को पत्र लिखा।
1: आपको तो मालूम है कि मैं शिव की पूजा नियमित रूप से करती हूँ, उनके नाम का व्रत उपवास भी करती हूँ, पर उनकी कृपा मुझ पर आज तक नहीं हुई। मेरी पुत्र कामना अधूरी ही रह गई। आप तो भाग्यवती हैं, शिव की नगरी में ही निवास करती हैं। आपसे मेरा यही अनुरोध है कि आप हर दिन मेरी ओर से बाबा विश्वेश्वर के मंदिर में पुत्र कामना करते हुए पूजा एवं होम यज्ञ आदि की व्यवस्था कर दें। मुझे आशा है आप मुझे निराश नहीं करेंगी।
2: ये जानकर कि उनकी इच्छा के अनुसार पूजा पाठ हो रहा है, माता भुवनेश्वरी प्रफुल्लित और आश्वस्त हुई। वे शिव अर्चना में और भी ज्यादा डूब गईं। ग्रह देवता शिव मंदिर में ही उनका अधिकतर समय व्यतीत होने लगा।
0: एक दिन प्रातः काल शिव अर्चना के बाद वे ध्यान मग्न हो गईं। परिवार के लोगों ने और दास दासियों ने उन्हें कई बार आवाज दी, पर वे सब कुछ भूल कर बेसुध बैठी रहीं। सारा दिन बीत गया, सांझ हो आई। पति विश्वनाथ के अदालत से लौटने पर उन्हें ये समाचार मिला। वे पत्नी से बेहद प्यार करते थे, व्याकुल होकर पूजा कक्ष में आए और भुवनेश्वरी को आवाज दी।
3: भुवन, ओ भुवन, भुवन, क्या हो गया है तुम्हें? सुना है सुबह से यहां ऐसी ही बैठी हो, क्या बात है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? भुवन, तुम सुन रही हो ना? मेरी ओर देखो, जवाब दो भुवन, भुवन।
0: भुवनेश्वरी ने कोई जवाब नहीं दिया और धीरे धीरे वहीं पर थककर सो गईं। किसी की हिम्मत नहीं हुई उन्हें छूने या जगाने की। सूर्योदय के समय अचानक घर वालों की नींद खुली। उन्हें पूजा घर से घंटा बजने और मंत्रोच्चार की आवाज आई। सब दौड़ते हुए वहां जाकर एकत्रित हुए। भुवनेश्वरी होश में आ गई थी और जोर जोर से मंत्र पढ़कर शिव को प्रणाम कर रही थी।
1: हे शिव, हे शंकर, हे करुणामय, तुमने मुझे ये क्या दिखाया, क्या दिखाया? क्या ये निरा सपना था या सच का पूर्वाभास? कहो देव, कहो ना। अरे अरे, सुना तुमने? तुम लोगों ने सुना? मेरे इतने दिनों की तपस्या पूरी होने वाली है। हाँ हाँ, शिव ने मुझ पर दया की है। हे शिव, हे शंकर, हे शिव, हे प्रभु।
3: भुवन, भुवन, शांत हो जाओ, सब ठीक तो है ना? क्या देखा तुमने, कहो, इतनी खुश क्यों हो, कहो तो।
1: मैं क्या कहूँ, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। मैंने ये कैसा सपना देखा?
3: क्या देखा तुमने, कहो भुवन।
1: मैंने देखा तुषार धवल पर्वत श्रृंग से कैलाशपति शिव उतर कर आ रहे हैं। हाँ, और वो ठीक मेरे सामने आकर खड़े हो गए। वो मुस्कुरा रहे थे, कह रहे थे, तुम्हारी कठोर तपस्या का फल तुम्हें मिलेगा भुवनेश्वरी। और कहते कहते शिव एक छोटे से शिशु का रूप धारण कर मेरी गोद में आ गए। हाँ हाँ, वो मेरी गोद में आ गए और मेरी ओर देखकर मुस्कुराने लगा। हाँ, सच। ओह, हे शिव, हे शंकर, हे शिव, हे शिव,
2: हे शिव, हे शंकर कहती हुई वे बारंबार माथा टेकती रहीं। परिवार वाले हतप्रभ रह गए।
0: उस दिन 1863 ईस्वी की 12 जनवरी थी, पौष संक्रांति का पुण्य प्रभात। शीत से ठिठुरते हुए नर नारी स्नान के लिए भागीरथी की ओर जा रहे थे। इसी समय सूर्योदय से 6 मिनट पूर्व 6:33:33 पर भुवनेश्वरी देवी ने विश्व विजयी पुत्र को जन्म दिया।

0: आनंद उल्लास और हर्ष से दत्त भवन मुखरित हो उठा। मंगल शंख बजने लगे। बंगाल के हर घर में पौष पर्व का आनंदोत्सव मनाया जा रहा था, मानो नवजात शिशु को सादर अभ्यर्थना करने प्रत्येक गृह प्रांगण मुखरित हो उठा।
1: नामकरण का दिन। बालक की आकृति बहुत कुछ उसके सन्यासी पितामह की तरह देखकर परिवार के कुछ लोगों ने शिशु का नाम दुर्गादास रखने की इच्छा प्रकट की, परंतु माता ने अपने स्वप्न को स्मरण कर कहा,
2: जी इसका नाम शिव के नाम पर वीरेश्वर रखा जाए। ठीक है, वे ही तो शिशु का रूप धरकर मेरे घर आए हैं। ये मेरा शिव, मेरा शंभु, मेरा महेश और मेरा शंकर है, मेरा बच्चा।
0: सभी ने उनका कहना मान लिया। वे उसे वीरेश्वर से वीरे और अंततः बिले कहने लगे। अंत में अन्नप्राशन के समय बालक का नाम रखा गया नरेंद्रनाथ, और भविष्य में यह बालक नरेंद्रनाथ या नरेन नाम से ही परिचित हुआ।
1: बचपन में नरेंद्रनाथ बहुत ही नटखट थे। उनके उधम से घरवाले हमेशा परेशान रहते थे। वे माँ को बहुत तंग करते थे। एक दिन बालक नरेन आंगन में दौड़ दौड़ कर माँ को सता रहा था।
2: बिले, अरे ओ बिले, आना इधर आ, बात सुन मेरी। बिले, ओहो आना, कपड़े बदल ले। अब ओहो
3: नहीं नहीं बदलूंगा कपड़े, लो पकड़ो मुझे।
2: अरे सुन ना।
3: नहीं पकड़ पाई ना, मैं अभी पेड़ पर चढ़ने जा रहा हूँ, नहीं आऊंगा तुम्हारे पास।
2: ठहर, पकड़ती हूँ तुझे। बस ये पकड़ लिया। बोल अब कहाँ जाएगा। हाँ ठहर ठहर, मैं मजा चखाती हूँ। नहीं सुनेगा ना मेरी बात। हाँ नहीं सुनेगा, चल चल आ इधर आ, ये इधर आ, इधर आ, ये ले ये ले, ये शिव, ओ शिव, शिव शंभू, शिव शंभू, शिव शंभू, ले। अब तेरा माथा कुछ ठंडा हुआ ना, चल चल अब अंदर चल, चल बेटा सर पोंछ दूं फिर कपड़े बदल लेना। ओह शिव शंकर, शिव शंकर, शिव शंकर।
1: पिता विश्वनाथ बरामदे में खड़े होकर माँ बेटे का ये नाटक देख रहे थे। उन्होंने हंसते हुए कहा,
4: भुवन तुम क्यों हमेशा बिले के पीछे पड़ी रहती हो, अरे खेलने दो ना उसे। देखो ना, नाहक उसके सर पर ठंडा पानी डाल दिया, अगर उसे जुखाम हो गया तो जाओ जल्दी से पहुंचो उसका सर।
2: हाँ हाँ, तुम्हें तो हमेशा मेरी ही गलती दिखाई देती है, बेटे की शरारत तुम्हें दिखती ही नहीं। अरे देखो तो, दौड़ा दौड़ा कर मेरा तो दम निकाल दिया, और उसे भिगोने में देखो ना, ये देखो मैं पूरी तरह भीग गई। अरे बिले चल ना, चल जल्दी चल चल।
4: पर तुमने दोबारा उसे नहलाया क्यों, और वो भी ठंडे पानी से।
2: क्या आप नहीं जानते कि आशुतोष शिव जलाभिषेक से ही संतुष्ट होते हैं, और मेरा बिले भी तो शिव का ही अंश है, इसलिए जब मैं इसे किसी भी तरह से शांत नहीं कर पाती तो ठंडा पानी डालकर शिव शिव की जाप करती हूँ, और ये भी शांत हो जाता है।
4: तुम माँ बेटे की महिमा अपरंपार है, मुझे समझ में नहीं आता। अरे बच्चा है अभी, शरारत तो करेगा ही।
2: ए देखो जी, वकालत करते हो उसी को संभालो, हम माँ बेटे के बीच ना आना, ठीक है। ए, ए, ए, अरे अरे अब फिर भाग गया। अरे देखो तो, ओहो फिर भाग गया बिले।
4: लो संभालो अब।
2: ओ माँ गो माँ, मैं तो इसकी शरारतों से तंग आ गई हूँ। ओ अरे अरे, ओ राधा शामू, अरे देख तो किधर भाग गया, वो भाग रहा है, वो जा पकड़। पकड़ लिया ना, ले आ इधर, इधर ले आ। मांगो मां, महादेव शिव ने स्वयं ना आकर जाने कहां से एक भूत को भेज दिया है, सबको परेशान कर रखा है। ओह, अरे तू तो फिर से रोने लगा। देखा देखा जी, अपने लाडले की करामत। हाँ हे, देख देख बिले, अगर तू ज्यादा उधम मचाएगा ना तो महादेव तुझे कैलाश में नहीं आने देंगे। हाँ
3: सच कह रही हो ना माँ, शिव जी मुझे कैलाश नहीं आने देंगे तो मैं नंदी बैल की सवारी कैसे करूंगा।
2: अच्छा बच्चा बनो बेटा, तो शिव जी तुझे खुद वहां ले जाएंगे, खूब प्यार करेंगे, समझा। अच्छा अच्छा, अब चल, तो चल भीगे कपड़े बदल ले। हाँ चल चल बेटा, चल चल, आजा, चल चल।
4: तुम दोनों माँ बेटे की बातें तुम दोनों ही जानो, और जाने तुम्हारे शिव जी। भाई मैं तो चला। नरेंद्रनाथ सबके प्रिय थे, मोहल्ले के धनी निर्धन सभी परिवारों के साथ उन्होंने संबंध स्थापित कर लिया था। यदि उनके परिचितों में से किसी लड़के के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाती तो उसे सांत्वना देने वे ही पहले रहते थे। हर घर में आना जाना उनके परिवार जनों को पसंद ना था। एक दिन,
5: ए ए ए बिले, क्यों रे बिले, तू कहाँ गया था, तेरी माँ तुझे ढूंढ रही थी।
3: अरे मैं तो देवू के घर गया था, आपको मालूम नहीं पड़ा क्या, आज देवू के दादाजी गुजर गए। देवू बहुत रो रहा था, उसी के साथ बैठा था।
5: हे भगवान, इस लड़के को जात पात का कोई ध्यान नहीं है, तूने देवू के दादाजी के शव को छुआ तो नहीं। हे ईश्वर,
3: छुआ नहीं, सब दादाजी को आखिरी बार प्रणाम कर रहे थे, सो मैंने भी किया।
5: तूने प्रणाम किया, चल आज तेरी अच्छी पिटाई होगी, चल माँ के पास।
3: आप मुझे डांट क्यों रहे हैं, देवू मेरा दोस्त है, उसके दादाजी को मैं भी दादाजी कहता था, और दादाजी को प्रणाम करने में क्या बुराई है, माँ ही तो कहती है बड़ों का आदर करना चाहिए।
5: अरे अरे अरे अरे अरे, इस मलेच्छु को कौन समझाए, चल चल तू तो अंदर चल, फिर देखना क्या होता है तेरा। ए ए ए ए, किसी चीज को छूना मत, पहले नहा ले, चल पहले नहा।
3: ये लीजिए ये लीजिए ये लीजिए, आपको छू दिया, क्या हो गया, कुछ भी तो नहीं हुआ, आप तो वैसे ही हैं।
5: हाय हाय हाय हाय हाय, ये क्या कर दिया, मैं तो नहा धोकर घर से बाहर जा रहा था, छू दिया ना, अब फिर से नहाना पड़ेगा, राम राम राम।
3: तो जाइए फिर से नहाइए।
5: राम राम राम राम राम।
0: और नरेंद्र हंसते हुए अंदर चले गए। चाचा जी के गुस्से का अंदाजा तो आप खुद लगा सकते हैं।

0: नरेंद्र बचपन से ही बहुत हाजिर जवाब और शरारती थे, पर उनकी बाल सुलभ शरारतों से अधिकतर लोगों का मनोरंजन होता था। उनकी मजेदार बोलचाल और मनगढ़ंत किस्से कहानियों को सुनकर गंभीर स्वभाव वाले बड़े बूढ़े भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। उनके दोस्त तो नरेंद्र से कहानियां सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते थे, और नरेंद्र भी मौका मिलते ही कहीं भी मंडली जमा कर बैठ जाते और दोस्तों को तरह तरह की कहानियां सुनाते। रामायण महाभारत की कथा कहानियां तो सुनाते ही थे, साथ ही अलिफ लैला की कहानियां, ईसप की नीति कथाएं तथा देश विदेश की परिकथाएं भी सुनाया करते थे।
1: नरेंद्र को किसी प्रकार का संकोच न था। अगर कोई कहानी याद न आती तो मनगढ़ंत पात्रों की काल्पनिक कहानियां दोस्तों को सुनाया करते। उनकी काल्पनिक कहानियां भी इतनी मजेदार हुआ करती थीं कि दोस्त यह समझकर भी कि नरेंद्र झूठी कहानियां सुना रहे हैं, घंटों मंत्रमुग्ध हो सुनते रहते थे। बचपन से ही उनकी कल्पना शक्ति अद्भुत थी।
0: जीवन के आरंभ में ही देखा गया था कि अपने हम उम्र साथियों के साथ झुंड बनाकर क्रीड़ा कौतुक करते समय नरेंद्र ही इन सब आयोजनों के नेता होते। नेतृत्व सुलभ गुण तब से ही उनके चरित्र में प्रस्फुटित होकर धीरे धीरे समुचित रूप धारण कर रहा था।
1: उन दिनों पाठशाला में मकर संक्रांति के दिन गंगा की वंदना के गीत गाकर गंगा के तट पर जाकर पूजा अर्चना करने की प्रथा थी। नरेंद्र के पिता विश्वनाथ बाबू मकर संक्रांति के दिन गुरुजी एवं छात्रों को नई धोती कुर्ता दिया करते थे, एवं गुरुजी छात्रों को गाजे बाजे के साथ गंगा पूजा कर आने की अनुमति देते थे।
0: लौट कर आने पर प्रथा अनुसार घर पर बनी मिठाइयां खाने को मिलती थीं। नरेंद्र ने पिता से छात्रों के साथ गंगा पूजन की अनुमति मांगी। बाजा गाजा और पताका आदि की व्यवस्था पिता के खर्चे से सहज ही हो गई। अतः गंगा की महिमा गाते हुए बच्चे जुलूस बनाकर गंगा तट पहुंचे। वहां केले के पेड़ के छिलकों से नाव बनाकर उनमें दिया जलाकर रख दिया गया और फूल मालाओं से सजाकर नावों को गंगा जल में बहा दिया गया।
1: छोटे छोटे नाव धीर गति से गंगा में बहने लगी। संध्या के झुरमुट अंधेरे में जगमगाती हुई नाव दियों के साथ साथ धीरे धीरे लहरों के साथ झूमती हुई सागर की ओर बढ़ चली। बच्चे ढोल मंजीरों के साथ गाते रहे।

0: अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आलेख डॉक्टर पापियादास गुप्ता, निर्देशन चैतन्य भट्ट, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वरा संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।
1: श्रोते हो, आताच आपण युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद ऐकलात। हा कार्यक्रम स्वराज संस्थान संचालनालय यांच्या सहकार्याने विद्यावाणी सामुदायिक रेडिओवरून प्रसारित करण्यात आला। ऐकत रहा विद्यावाणी 107.4 FM।

0: विवेकानंद की पारिवारिक पृष्ठभूमि से आप परिचित हुए। किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व अपने आप अलग थलग रूप से विकसित नहीं होता। व्यक्ति आज जो है वो उसकी वंश परंपरा और पारिवारिक तथा सामाजिक वातावरण का फल है। विवेकानंद को एक संस्कारवान परिवार मिला था, जिसके फल स्वरूप उन्हें उपयुक्त गुरु श्री रामकृष्ण देव मिले और उनके चहुमुखी व्यक्तित्व और शौर्य का विकास हुआ। उनकी प्रतिभा बचपन से ही दिखने लगी थी। निराला था उनका बचपन। बालक नरेंद्रनाथ की सभी बातें निराली थीं। वे चंचल, नटखट, शरारती तो थे, पर साथ ही भावुक भी थे। अगर बालक नरेंद्रनाथ के मन में कोई बात घर कर जाती, तो उसे पूरा किए बिना वे नहीं मानते। कभी-कभी वे चुपचाप किसी सोच में उलझ जाते। उन्हें समय, भूख, प्यास का ध्यान नहीं रहता था। उनका सबसे ज्यादा मनपसंद काम था गाड़ी पर सवार होकर घूमने जाना। उस समय घोड़ा गाड़ी यानी बग्घी का जमाना था।
1: माँ की गोद में बैठकर गाड़ी में से दोनों ओर की चीजें देखते हुए एक के बाद दूसरा प्रश्न पूछते हुए बालक माता को हैरान कर डालता था।
2: माँ, माँ, उधर वह सुंदर बंगला किसका है?
3: वो तो मजुमदार महाशय का है। बड़े नामी वकील हैं वे।
2: अरे अरे, देखो तो माँ, वो आदमी क्या बेच रहा है?
3: उस फल को जामरूल कहते हैं। एक दिन ना मैं तुम्हें वो फल खरीद कर खिलाऊंगी, ठीक है?
2: अच्छा माँ, माँ वो आदमी ऐसे फटे गंदे कपड़े पहनकर लोगों से क्या मांग रहा है?
3: अरे वो तो गरीब भिखमंगा है बेटा, लोगों से पैसे मांग रहा है।
2: क्यों, उसके पास पैसे नहीं है?
3: नहीं बेटा। अरे कोचवान, कोचवान जरा गाड़ी तो रोको जल्दी। लो बिले, उसे ये पैसे दे दो, भूखा लग रहा है।
2: हाँ दो, ये लो बाबा, कुछ खा लेना।
3: चलो चलो कोचवान, चलो।
2: माँ, लोग गरीब क्यों होते हैं? मेरे पास जब ढेर सारा पैसा हो जाएगा तो मैं इन सबको बांट दूंगा, कोई भूखा नहीं रहेगा।
3: हाँ बेटा, हमेशा मन में ऐसा ही दया भाव बनाए रखना, गरीबों की मदद करना।
2: अच्छा माँ।
3: ओ बिले, दो घड़ी चुप नहीं रह सकता? चुपचाप बैठे रहो।
0: गाड़ी से नरेंद्र को इतना प्रेम था कि रोज अपने घर के सामने बैठकर आते जाते हर एक गाड़ी को बड़े ध्यान से देखा करते। कोचवान का छाती फुलाकर बैठना, तेज दौड़ते घोड़े की लगाम को खींचकर उसे हांकने का कौशल, उसकी खास पोशाक, चपरास, जरीदार पगड़ी आदि का उसके बालक मन पर विशेष प्रभाव पड़ा। तभी तो एक दिन पिता के ये पूछने पर,
4: बड़ा होने पर क्या बनेगा नरेन, बोल तो।
2: घोड़े का कोचवान बनूंगा।
0: पिता हंसने लगे। कोचवान बनने की आशा से बालक ने अपने पिताजी के बूढ़े कोचवान के साथ मित्रता कर ली थी और मौका मिलते ही अस्तबल में जाकर वो सईफ और कोचवानों के कामों को देखा करता और हजारों सवाल किया करता। सईफ से पूछता,
2: तुम रोज रोज घोड़े की मालिश क्यों करते हो?
5: भैया, इससे घोड़ा ताकतवर और तेज दौड़ने वाला बनता है।
2: अच्छा, तो मालिश करवाने पर मैं भी ताकतवर और तेज तर्रार बन जाऊंगा?
5: हाँ बेटा, खूब मालिश और कसरत करना, फिर देखना तुम्हारा शरीर कितना गठीला बन जाएगा।
1: बालक विवेकानंद को शरीर मजबूत बनाने का पहला पाठ शायद यहीं से मिला था। वो कोचवान से भी सवाल पूछता।
2: कोचवान जी, तुम हर दिन ये किस भगवान की पूजा करते हो?
6: बेटा, ये भगवान राम जी और सीता मैया हैं बेटा, और ये हैं हनुमान जी।
2: तुम इनकी पूजा क्यों करते हो? हमारे घर के पूजा घर में तो ये मूर्तियाँ नहीं हैं।
6: अरे तो क्या हुआ बेटा, मालकिन शिव शंकर की भक्त हैं, इसीलिए शिव पूजा करती हैं। पर वे रोजाना रामायण का पाठ तो करती हैं, यही उनकी पूजा है।
0: दत्त भवन में प्रायः प्रतिदिन दोपहर को रामायण तथा महाभारत की कथा होती थी। भुवनेश्वरी देवी स्वयं या कोई और

0: घर का काम खत्म कर दूसरी स्त्रियां पाठिका को घेर कर बैठ जाती। इसी छोटी सी महिला सभा में बालक नरेंद्र शांत होकर माँ की गोद में बैठा रहता। अक्सर भुवनेश्वरी देवी बेटे को गोद में बैठाकर सीताराम की कहानी, महाभारत की कथा या अन्य पौराणिक कहानियां सुनाया करती।
1: इसमें संदेह नहीं कि पुराणों की कहानियों का बालक के मन पर गंभीर प्रभाव पड़ा था। सुदूर अतीत युग के धर्मवीरों की पवित्र जीवनियां सुनकर उसके शिशु हृदय में ना मालूम भावों की क्या क्या लहरें उठा करती, जिससे वह अपनी स्वाभाविक चंचलता छोड़ घंटों मंत्र मुग्ध जैसा बैठा रहता था। रामायण सुनते सुनते नरेंद्र का सरल शिशु हृदय भक्ति रस से परिपूर्ण हो उठता।
0: एक बार उनके घर के पास ही मेला लगा था। बालक नरेंद्र अपने घर के पुराने नौकर रामू और दोस्तों के साथ मेला देखने गया था।
2: झूला झूला ताने में झूला झूला ये प्यारी प्यारी सी रसभरी चली मिले लो, ये रसभरी चली मिले लो, रसभरी चली मिले लो।
3: अरे अरे मुन्ना, जरा इधर तो आ, झूला बाद में झूल लेना।
4: अरे तू इधर आ जा।
3: नहीं, मुझे उस ऊंची चक्री पर नहीं घूमना, तू पहले इधर आ। ये देख कितनी सुंदर मूर्तियाँ बिक रही हैं। ये शिव की मूर्ति? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए, घर में है तो। ये किसकी है? लक्ष्मी नारायण की? नहीं, ये भी नहीं, मुझे वह दिखाओ। ये कौन है?
5: राम जी और सीता मैया हैं।
3: दिखाओ दिखाओ। हाँ, मुझे यही मूर्ति चाहिए। रामू काका, रामू काका, इसे पैसे दे दो ना, मुझे यही मूर्ति खरीदनी है।
6: क्या करोगे बेटा इस मूर्ति का? चलो जलेबी खरीद देते हैं तुम लोगों को।
3: जलेबी वलेबी मुझे नहीं खाना, तुम खाओ, मुझे तो बस यही मूर्ति चाहिए।
6: ठीक है, अच्छा बाबा अब जिद कर रहे हो तो ले लो। लो भैया ये पैसे ले लो। अच्छा कितने का है? हाँ? 2 पैसा? अरे नहीं, ये तो 1-1 पैसे में बिकता है।
3: रामू काका मांग रहा है तो दे दो ना 2 पैसे, गरीब है बेचारा।
6: हाँ, गरीब है बेचारा, अरे बहू जी नाराज होंगी।
3: नहीं नहीं, मैं माँ को समझा दूंगा, तुम तो ले लो।
6: अच्छा ले लो भैया 2 पैसे। हाँ नहीं तो लूट मार मचा रखा है, अब बच्चा जिद कर रहा है तो लेना ही पड़ेगा ना। हाँ चलो ठीक से कागज में लपेट कर बांध दो।
7: हाँ बांधता हूँ, रुक जाओ।
6: अरे मिट्टी का है ना, टूट ना जाए। चलो दे दो, चलो बेटा ले लो, चलो चलो चलो चलो।
1: मूर्ति लाकर नरेंद्र ने मकान के छत पर एक सुनसान कमरे में उसकी स्थापना कर दी। रोज उस मूर्ति के सामने ध्यान मग्न होकर बैठा रहता बालक नरेंद्र। सीताराम के प्रति बालक का यह प्रेम उनके पश्चिम देशीय कोचवान मित्र को बहुत आनंददायक लगा। सीताराम के बारे में बालक के हजारों प्रश्नों का जवाब वह प्रसन्नता पूर्वक देता था।
3: अच्छा, राम जी को राक्षसों से डर नहीं लगता था?
8: नहीं बेटा, वे तो बहुत वीर और साहसी थे। मुनि वशिष्ठ के आश्रम में उत्पात मचाने वाले सारे राक्षसों को राम जी ने मार भगाया था, और उस समय वे तुमसे थोड़े ही बड़े रहे होंगे।
3: अच्छा, अगर मैं धनुष विद्या सीख लूं तो क्या मैं भी राक्षसों को मार सकूंगा?
8: हाँ हाँ मेरा राजा बेटा, बड़ा होकर न जाने कितने राक्षसों से लड़ेगा, उन्हें मार भगाएगा।
3: पर राम जी जंगल में क्यों चले गए? मना क्यों नहीं किया? उन्हें डर नहीं लगा क्या?
8: बेटा, राम जी माता कैकेयी को बहुत प्यार करते थे, और पिता दशरथ को तो वे देवता समान पूजते थे। इन दोनों का कहा भला वे कैसे न मानते? माता पिता की भक्ति करना तो कोई राम जी से सीखे।
3: अच्छा, जंगल में वो लोग खाते क्या थे? उनके साथ क्या कोई रसोईया भी गया था?
8: नहीं बेटा, वे तो खाली हाथ ही चले गए थे, जंगल में फल फूल खाकर ही गुजारा करते थे।
3: अच्छा, राम जी इतना अच्छा धनुष चलाते थे तो वे सोने के हिरण को पकड़ क्यों नहीं पाए?
8: बेटा, अब वो कोई असली हिरण थोड़ा ही था, वह तो माया थी माया। और राम जी को रावण का वध करना होगा, लोगों को उसके अत्याचार से बचाना होगा, यह सब तो पहले से ही तय था। तभी तो यह माया हिरण का दिखना, सीता हरण और राम रावण का युद्ध हुआ।
3: अगर राम जी सीता को साथ ना ले जाते तब तो यह सब झंझट ही नहीं होता।
0: कोचवान किसी कारणवश शादी विवाह के खिलाफ था, उसने नरेन को समझाया।
8: अब क्या बताएं बेटवा, ये औरतें ही तो सारी मुसीबत की जड़ है। न जाती सीता मैया तो राम जी को इतना परेशान न होना पड़ता।
1: कोचवान ने विवाहित जीवन की अशांति का ऐसा जीता जागता वर्णन किया कि बालक नरेंद्रनाथ के सुकुमार चित्त पर उसकी छाप गंभीर रूप से अंकित हो गई। उसके मन में अनेक चिंताएं उठने लगी और बेचैन होकर आंखों में आंसू भरे वे माँ के पास आए। आंसू देखकर माँ ने पूछा,
9: क्या हुआ बिले, किसी ने कुछ कहा क्या?
3: माँ, मैं कभी शादी नहीं करूंगा।
9: क्यों, अचानक ऐसी बातें क्यों, क्या हुआ?
3: मुझे मालूम है शादी होने के बाद आदमी को अनेक मुसीबतों का सामना करना पड़ता है।
0: नरेन ने माँ को कोचवान से सुनी हुई सारी बातें कह दी।
9: ठीक है बाबा, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है, और अभी कौन तेरी शादी करवा रहा है, जब बड़ा होगा तो देखी जाएगी। जा, अब जाकर खेल, ये कोचवान भी।
3: मेरी शादी की बात कौन कर रहा है, मैं तो दूसरी बात से परेशान हूँ।
9: अब कौन सी बात लेकर परेशान है?
3: मैं राम सीता की पूजा कैसे करूँ, सीता तो राम की पत्नी थी ना।
9: अरे बिले, तू तो मुझे पागल ही कर देगा, तू और तेरे सवालों का जवाब देते देते तो मैं आ इधर आना मेरे पास, आ जा, आंसू पोंछ ले, आ ला, मैं पोंछ देती हूँ, ले बेटा, आजा आजा मेरा बच्चा। राम सीता की पूजा न भी करो तो क्या है, कोई बात नहीं मेरा बच्चा।
0: नरेन कमरे से निकल आया, उसका मन अब तक शांत नहीं हुआ था। वो छत के कमरे से अपनी प्रिय राम सीता की मूर्ति को हाथों में उठा लाया और छत पर आकर खड़ा हो गया। संध्या हो चली थी, नरेन हाथों में मूर्ति लिए कुछ सोच रहा था। अंततः वो किसी निष्कर्ष पर पहुंचा और कहा,
3: माफ करना राम जी, माफ करना सीता मैया, मैं आप दोनों का भक्त हूँ, श्रद्धा भी रखता हूँ, पर विवाहित जीवन वो मेरा आदर्श नहीं है, मैं आप दोनों की पूजा नहीं कर सकता।
0: कहते कहते वो व्याकुल हो उठा और मूर्ति को माथे से लगाकर नीचे फेंक दी।
1: दत्त भवन में अरसे से माने जाने वाले देशाचार और लोकाचार के छोटे छोटे नियमों को नरेन बचपन से ही नहीं मानता था। माँ के डांटने पर वो तुरंत उन नियमों का कारण पूछ बैठता।
9: ए, ए बिले, अरे अरे अरे, ये क्या कर रहा है, भात खाते खाते बदन पर हाथ लगा रहा था।
3: क्यों, क्यों नहीं लगा सकता, इस थाली में क्या बुराई है?
9: अरे वो भात की थाली है, झूठा है ना?
3: झूठा, भात थाली में डालने से थाली झूठी हो जाती है?
9: हाँ।
3: तो भात पेट में जाकर शरीर को भी झूठा कर देता है, फिर तुम मेरे झूठे शरीर को गोद में लेकर प्यार कैसे करते हो?
9: बिले, बकवास मत कर, जो कहती हूँ सुना कर।
3: अच्छा माँ, तुम भी तो भात खाती हो, फिर उस झूठे शरीर से शिवजी की पूजा कैसे करती हो?
9: सुन लो इसकी बातें, चल खा लिया ना, चल चल उठ उठ, चल पानी पी ले। अरे अरे अरे अरे अरे अरे, बाएं से नहीं, दाहिने हाथ से गिलास पकड़।
3: क्यों, अब बाएं हाथ में क्या हुआ? खाना तो दाहिने हाथ से खाया ना, और फिर बाएं दाएं में क्या फर्क है?
9: बहुत फर्क है, कोई भी अच्छा काम बाएं से नहीं किया जाता, समझे? हमेशा दाहिने हाथ से ही पानी पिया जाता है।
3: नहीं, मैं तो बाएं से ही पीऊंगा, देखता हूँ क्या होता है। क्या तुम्हारे शिव जी नाराज हो जाएंगे?
9: ओह, अब तेरे साथ कौन मुंह लड़ाए, चल उठ जा, उठकर दोनों हाथों को अच्छी तरह धो ले। चल चल चल चल चल, आ जा।

0: पुराने खेल से ऊब गया। उन्होंने झिल्ली कागज का एक रंगीन लालटेन बनाया और उसके अंदर मोमबत्ती जलाकर दीवार पर तरह तरह की आकृतियां बनाकर दोस्तों का मनोरंजन करने लगे। शाम को जब घरों में लालटेन जलाया जाता तो वे भाई बहनों को दीवार पर हाथों की परछाई से कई तरह के जानवरों और चिड़ियों की आकृतियां बनाकर दिखाते थे।
1: इसी समय उनके मन में पाक विद्या सीखने का विचार आया। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि जिससे जितना बन सके रसोई का सामान इकट्ठा कर लाए। सभी एक दो आलू बैंगन आदि घर से ले आए। ज्यादातर सामान चूल्हा कड़ाही बर्तन और तेल मसाला नरेंद्र अपनी रसोई से मांग लाए। दोस्तों ने मिलकर बड़े उत्साह से खाना पकाया और उस अधपके भोजन को बड़े चाव से खाया। कहना ना होगा कि नरेंद्र ही प्रधान रसोईया बने और दूसरे बच्चों ने उनकी सहायता की।
0: यद्यपि बालक नरेंद्र नाथ शरारत करने में सबसे आगे थे, पर उनमें अशुभ या अन्याय की कोई मनसा नहीं होती थी। उनका सहज सरल स्वभाव सांसारिक कुटिलताओं से दूर रहता था। सत्यवादिता उनके जीवन का सार था। भले ही वे दिन भर विभिन्न खेलों और हास्य विनोद में मग्न रहते, पर रात को उन्होंने ध्यान करना शुरू कर दिया था। शीघ्र ही उन्हें कुछ अद्भुत दर्शन प्राप्त होते, जिक्र उन्होंने बड़े होने पर किया था। जैसे जैसे नरेंद्र की उम्र बढ़ी, उनकी मानसिकता में एक सुस्पष्ट परिवर्तन देखा गया। वे अब बौद्धिक कार्यों को प्राथमिकता देने लगे। उन्होंने पुस्तकों का अध्ययन प्रारंभ किया, नियमित रूप से अखबार पढ़ने लगे और किसी के साथ भी सार्वजनिक भाषण सुनने जाते और जो कुछ सुनाते उसका सार अपनी मौलिक आलोचना के साथ अपने दोस्तों को सुनाते। वे लोग कुछ समझते कुछ नहीं समझते, पर नरेंद्र की बातें वे चमत्कृत होकर सुनते। इस तरह उन्होंने एक ऐसी तर्क शक्ति का विकास किया जिसका सामना कोई नहीं कर सकता था।
1: बचपन में एक बार नरेंद्र के साथ उनके एक सहपाठी की मारपीट हो गई थी। नरेंद्र टिफिन में मिठाई लाए थे। उनके सहपाठी ने, जो उनसे उम्र और ताकत में बड़ा था, नरेंद्र के हाथ से मिठाई छीन ली। मारा मारी शुरू हो गई। नरेंद्र मिठाई वापस नहीं ले पाए और भयंकर नाराज हो गए। मास्टर साहब को शिकायत करने पर उन्होंने समझाया,
2: छी छी छी छी छी छी नरेंद्र, तुम इतने बड़े घर के बेटे हो, तुम्हें एक मिठाई के लिए मारा मारी करना शोभा नहीं देता। फिर वह लड़का किस घर का है, उसकी छीनी हुई मिठाई क्या तुम दोबारा खा सकते थे?
3: क्यों क्यों नहीं खा सकते थे? वह मुझसे ज्यादा बड़ा है, इसलिए मैं जीत नहीं पाया। नहीं तो क्या मैं उसे वह मिठाई खाने देता?
2: नरेंद्र, कहा ना, उसका छुआ तुम नहीं खा सकते।
3: क्यों, क्या है उसके हाथों में? उसके साथ एक ही क्लास में पढ़ सकता हूँ, खेल सकता हूँ, तो उसका छुआ खा क्यों नहीं सकता?
0: नरेंद्र नाथ ने अपने संपूर्ण जीवन में ये सब आचार व्यवहार छुआ छूत कभी नहीं माना। बड़े होने पर एक बार इस दाएं बाएं झूठा और छुआ छूत के प्रसंग में भयंकर नाराज होकर कहा था,
4: आप लोगों का पूरा ध्यान इन्हीं तुच्छ विषयों में ही लगा है कि हम पानी किस हाथ से पिए, किस किस को हम छू सकते हैं और इन नियमों के भंग होने पर कौन कौन से प्रायश्चित होने चाहिए। पहले तो हम भगवान का निवास ऊपर स्वर्ग में या नीचे मानव हृदय में समझते थे, पर अब जान पड़ता है कि वे रसोई घर व रसोई के बर्तनों में निवास करने लगे हैं। हमारा सर्वोच्च लक्ष्य है उदार बनना और कूप मंडूकता को त्याग कर बाहर आना, आत्मसात करना और खुद को सार्वभौमिक बना देना। पर हम तो अपने को नित्य लघुतर बनाते जा रहे हैं और शास्त्रों के आदेश के विपरीत अपने को सबसे अलग करते जा

रहे हैं, हम अपने देशवासियों से ही नहीं जुड़ पा रहे हैं। अलग अलग टुकड़ों में बंटकर आप क्या हासिल करना चाहते हैं? मुक्ति? मुक्ति अलगाव में नहीं जुड़ाव में है। अपनी मुक्ति चाहते हो तो इन संकीर्णताओं से ऊपर उठो, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी, देश की, समाज की मुक्ति होगी, देश की, समाज की मुक्ति होगी।

पिछले कार्यक्रम में नटखट विवेकानंद के बाल्यावस्था की बातें जानकर आपको भी हंसी आ गई होगी। बचपन से ही वे किसी बात को बिना सही तरह से समझे नहीं मानते थे। प्रश्न पे प्रश्न कर वे अगर जवाब से संतुष्ट होते तो ही बात को मानते थे। छुआछूत जातिगत भेदभाव से वे घृणा करते थे। शरारती तो वे थे, पर मनपसंद की बातें हो तो घंटों ध्यान लगाकर सुनते या करते थे। आइए उनके बचपन की कुछ और बातें जानें।

0: एक पेशावरी मुस्लिम नरेंद्र नाथ के पिता विश्वनाथ बाबू के मुवक्किल थे। वे नरेंद्र के प्रति विशेष स्नेह रखते थे। उनके आने का समाचार पाते ही नरेंद्र उनके पास आ जाता और उनकी गोदी में बैठकर पंजाब और अफगानिस्तान के घोड़े और ऊंट की सवारी की भ्रमण कहानियां एकाग्र चित्त से सुनता।
1: चाचा जी, वहाँ लोग ऊंट की सवारी क्यों करते हैं? वहाँ बग्गियाँ नहीं चलती क्या?
2: ओए नहीं मेरा बेटा, मेरा बच्चा, ओए वहाँ तो रेगिस्तान है, रेगिस्तान, ओए सड़कें ज्यादा है नहीं, सो लोग ऊंट पर ही एक जगह से दूसरी जगह को जाती है।
1: हाँ, पर ऊंट तो बहुत धीरे धीरे चलते हैं ना।
2: हो, इसीलिए तो मेरा बच्चा वहाँ पहुँचने में बहुत महीना लग जाते
1: हैं। फिर वो खाते पीते क्या है, लंबे सफर से थक जाते होंगे।
2: ओए होए, ओए वहाँ बीच बीच में सराय बना होती, वही पर हम रुकते है, आराम करता है, ओए फिर चलना शुरू करते है, और सफर भी रात को ठंडा ठंडा में करते है। दिन में बहुत तेज गर्मी होते है और तेज धूप होते है।
1: पर बड़ा मजा आता होगा ना चाचा जी, आप मुझे वहाँ ले चलेंगे ना, मैं भी ऊंट की सवारी करूँगा।
2: ओए हमारा बच्चा, ओए तुम अभी बहुत छोटा है, बस दो उंगल बड़ा होने को मांगते है, फिर हम तुमको जरूर ले जाएगी।
0: आग्रह की अधिकता से वो कभी कभी दूर से ही बोलता।
1: चाचा जी देखिए, मैं रात भर में दो उंगल बढ़ गया हूँ, अब आप मुझे ले चलिए।
2: ओए देखूं तो, हो, ओए हमारा बच्चा वाकई में बहुत बड़ा हो गई, अरे तुम तो दो उंगल ऊंची हो गई, ओए अब तो ले जाना ही पड़ेगी, ले जाना ही पड़ेगी। ओए हमारा बच्चा मिठाई खाएगा, ओए तब तक ये मिठाई खा लो बच्चा, ओए तुम्हारे ही वास्ते लाए है, तुमको पसंद है ना?
1: लाइए लाइए, कहाँ है, मैं दोनों ही खाऊंगा।
0: नरेंद्र बड़े चाव से चाचा की गोद में बैठकर मिठाई खाते और वहां बैठे दूसरे लोग इस अनाचार को देखते और सिहर जाते। परिवार में भी इस बात को लेकर बवंडर मचता, पर विश्वनाथ बाबू कट्टरपंथी ना थे, वे इस बात को हंसकर टाल देते।
3: विश्वनाथ बाबू के दफ्तर में भिन्न भिन्न समाज के मुवक्किल आते थे, उनके लिए अलग अलग हुक्के की व्यवस्था थी। एक दिन कमरा खाली देखकर नरेंद्र वहां आया और हुक्के की नली में मुंह लगाकर कश खींचने लगा। विश्वनाथ ने मुवक्किलों के साथ कमरे में दाखिल होकर नरेंद्र को हुक्का पीते देख लिया।
4: बिले, ये क्या हो रहा है?
1: बाबा, सब कहते हैं दूसरी जाति के लिए रखा हुआ हुक्का नहीं पीना चाहिए। मैं तो देख रहा था ऐसा करने पर क्या होता है, मैं तो वैसा ही हूँ, ये छत टूट तो नहीं पड़ी, मैं तो परीक्षा कर रहा था कि अगर मैं जाति भेद ना मानूं तो क्या होगा।
5: नहीं बेटा, ऐसा नहीं करते, पाप लगता है।
1: क्यों, क्या होगा, क्या वह मर जाएगा? एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के हाथ का क्यों नहीं खाता? बाबा कहिए ना, क्या होता है?
0: विश्वनाथ बाबू ने हंसते हुए उसे प्यार से कहा।
4: बिले, तू बड़ा दुष्ट हो गया है रे।
3: नरेंद्र ने सीताराम की मूर्ति को तोड़कर दूसरे ही दिन उसके स्थान पर एक शिव मूर्ति की स्थापना कर दी। माता का अनुकरण कर वे प्रतिदिन शिव पूजा करते थे, कभी पद्मासन में बैठकर ध्यान लगाते, तो कभी अपने साथियों को बुलाकर सब मिलकर शिव मूर्ति को घेरकर ध्यानस्थ होकर बैठे रहते। यह खेल नरेंद्र को बहुत भाता था। उस समय उनके मन में क्या चलता था वही जाने। एक दिन ध्यान से उठकर उदास होकर माँ के पास गया और कहा,
1: माँ मुझे शिवजी के दर्शन क्यों नहीं होते? सचमुच क्या मैं दुष्ट हूँ? इसीलिए शिवजी ने मुझे अपने पास से हटा दिया है।
6: ऐसा किसने कह दिया रे तुझे?
1: मैं अगर साधु हो जाऊँ तो क्या शिवजी मुझे अपने पास लौट आने देंगे?
6: हाँ हाँ क्यों नहीं।
3: यह बात परिवार की महिलाएं सुन रही थीं, वे अवाक रह गईं।
7: बहू ये तुमने क्या कह दिया है बेटे से? एक ही तो बेटा है तुम्हारा, उसे भी संन्यास लेने को कह रही हो? कैसी माँ हो तुम?
3: यह बात अनजाने में कह जाने के बाद माँ का हृदय किसी अनजान डर से कांप उठा। उसी पर किसी के टोकने पर वह और विचलित हो उठी। अपने दादा की तरह अगर नरेंद्र भी संसार छोड़कर चला गया तो? पर मन ही मन शिव का ध्यान लगाकर उन्होंने इस डर को मन से हटा दिया और कहा,
6: देखो भाई भगवान की जो इच्छा होगी वही तो होगा ना, मैं उसमें बाधा देने वाली कौन हूँ?
1: तब तो मैं सन्यासी ही बनूंगा।
0: बचपन से ही लगातार रामायण और महाभारत सुनते सुनते उन ग्रंथों का बहुत सा भाग उन्हें याद हो गया था। वे कभी कभी सुमधुर स्वर में उन्हें सुनाकर श्रोताओं को मुग्ध कर देते थे। कभी कभी भिक्षु गायकों से सीखे हुए राधा कृष्ण या सीताराम के गीतों को गाकर घर वालों और अपने पिता के मित्रों को आनंद प्रदान करते। लाड़ प्यार से पले नरेंद्र स्वतंत्रता प्रिय होने पर भी उनके बाल चरित्र में अपने माता पिता के नाना प्रकार के सद्गुणों का समावेश हो गया था। घर में नीति शास्त्र एवं लोकाचार का कठिन नियम ना होने पर उनका चरित्र अपनी स्वाभाविक मधुरता के साथ स्वतः ही विकसित हो रहा था।
3: श्री रामचंद्र जी के परम भक्त हनुमान के अलौकिक कार्यों की कथाएं सुनना नरेंद्र को बहुत अच्छा लगता था। माता से उन्होंने सुना कि हनुमान जी अमर हैं, वे अभी भी जीवित हैं। तब से उन्हें देखने के लिए नरेंद्र के प्राण छटपटाने लगे। एक दिन वे माता के साथ कथा सुनने गए। कथाकार पंडित जी नाना प्रकार से हास्य रस मिलाकर हनुमान जी के चरित्र का वर्णन कर रहे थे। कथा खत्म होने पर नरेंद्र धीरे धीरे उनके पास गया और उनसे पूछा,
1: पंडित जी आपने कहा हनुमान जी केला खाना पसंद करते हैं और केले के बगीचे में ही रहते हैं, तो क्या मैं वहां जाकर उनके दर्शन पा सकूंगा?
8: हाँ बेटा, केले के बगीचे में ढूंढने पर तुम उन्हें पा सकते हो।
3: फिर क्या था, दूसरे ही दिन घर के पास वाले केले के बगीचे में केले के पेड़ के नीचे बैठ गए और हनुमान जी की प्रतीक्षा करने लगे। काफी समय बीत गया पर हनुमान जी नहीं आए। अंत में लाचार होकर शाम ढलते घर वापस आए। माँ को सारी घटना सुनाकर इसका कारण पूछा। बालक के विश्वास पर चोट न करना ही माता ने उचित समझा और बेटे को प्यार से चूम कर कहा,
6: ओले बेटा बेटा तुम दुखी मत हो, शायद देखो शायद आज हनुमान जी वो राम जी के किसी काम से कहीं दूसरी जगह पर चले गए होंगे, हाँ इसीलिए वो तुम्हें नहीं मिले। किसी और दिन मिल जाएंगे, ठीक है बेटा? ओ बेटा मेरा।
0: बालक शांत हुआ। उसने फिर कभी हनुमान जी से मिलने की कोशिश की या नहीं ये तो ज्ञात नहीं, पर हनुमान जी के प्रति गंभीर श्रद्धा भाव उनके मन से कभी लुप्त नहीं हुआ। ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण करने के इच्छुक प्रत्येक युवक को विवेकानंद कहा करते थे।
9: महावीर के चरित्र को आदर्श बनाओ। हर घर में महावीर हनुमान जी की पूजा होनी चाहिए। इस दुर्बल जाति के सम्मुख उन्हीं का आदर्श रखना चाहिए। शरीर में शक्ति नहीं, हृदय में साहस नहीं, क्या होगा मांस के लोदों से। मैं चाहता हूं हर युवा महावीर जैसा ताकतवर हो।
3: बोध या विचार शक्ति के कुछ और बढ़ने के बाद उनमें साधु या भिखारियों के प्रति एक स्वाभाविक आकर्षण दिखाई पड़ा। उनके आने पर वे उनके निकट दौड़ जाते, उन्हें कोई रोक नहीं पाता और जो भी मिलता उन लोगों को दे देते थे। एक दिन नई धोती पहनकर साथियों के साथ खेल रहे थे, तभी दरवाजे पर आवाज हुई।
10: नारायण हरि, नारायण हरि, अरे कोई है?
1: आओ बाबा, अंदर आओ।
10: बेटा, कुछ पहनने ओढ़ने का मिल जाए तो।
1: हाँ हाँ, लो ना, मेरी यह धोती बिल्कुल नई है, आज ही तो पहना है, ये ले लो।
10: तुम्हारी ये छोटी सी धोती मैं कैसे पहनूंगा बेटा? पर तुम्हारा दिया दान मेरे सर आंखों पर, लाओ मैं से अपने माथे पर लपेट लूं। जीते रहो बेटा, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो, जीते रहो।
0: साधुओं के आने पर नरेन को किसी कमरे में बंद कर दिया जाता था, पर खिड़की से वे उन्हें बुलाकर जो कुछ मिलता दे देते थे और घर के लोगों को हरा दिया समझकर खुश हो जाते।
3: दोनों बड़ी बहनों हरमोहिनी और स्वर्णमयी को वे हमेशा छेड़ा करते। दोनों हैरान परेशान होकर नरेन को पकड़ने के लिए पीछे पीछे दौड़ती, पर पकड़ न पाती। उन्हें और भी तंग करने के लिए नरेन किसी गंदे नाले में उतर जाता या किसी कूड़े के ढेर पर चढ़ जाता। बहनें उनका पीछा करती।
7: रुक जा बिले, इधर आ, इधर आ, आज तुझे अच्छा मजा चखाऊंगी। मेरे कपड़े में अपना गंदा हाथ क्यों पोछा, बोल। ओह, मेरी किताब तूने ही छुपाई है, निकाल निकाल दे जल्दी, नहीं तो मैं माँ को कह दूंगी। एक बार पकड़ लूं तो तेरी खैर नहीं बिले। स्वर्ण, तू उधर से जा, उधर जाकर पकड़, मैं इधर से इसका रास्ता रोकती हूँ।
1: आओ आओ ना, आओ पकड़ो मुझे, इस गंदी नाली में उतरो, तब तो पकड़ पाओगी मुझे। अच्छा चलो, मैं ही निकल आता हूँ, पर मेरे कपड़े और पैर गंदे हो गए हैं, मुझे छुओगी क्या?
7: हाँ हाँ पकड़ूंगी, रुक, बिल्कुल पकड़ूंगी।
1: पकड़ोगी तो ये लो, मैं कूड़े के ढेर पे चढ़ गया, अब आओ यहाँ, पकड़ो पकड़ो पकड़ो।
3: दोनों बहनें हार कर रोते रोते अंदर चली जाती हैं।
0: दत्त भवन में अनेक पालतू जानवर थे। नरेन को उनके साथ खेलना बहुत अच्छा लगता था। विलायती सफेद चूहा, बंदर, बकरा, कबूतर, काकातुआ और अनेक तरह तरह की चिड़िया थी। घर की गाय के साथ नरेन की पक्की दोस्ती थी। उसके गले में माला पहनाकर, माथे में सिंदूर लगाकर, शरीर पर हाथ फेरकर वे उसके साथ कितनी मीठी मीठी बातें किया करते थे, और वो गाय भी उनके शरीर पर मुंह रगड़कर प्यार जताती थी।
3: सन्यासी होने की इच्छा उन्हें बचपन से ही थी। एक दिन एक गेरुआ वस्त्र को कॉपीन की भांति लपेटकर वे घूम रहे थे। उसे देखकर माँ ने पूछा,
7: क्यों रे बिले, है ये क्या कर रहा है?
1: माँ, मैं शिव हो गया हूँ, अब मैं ध्यान करने जा रहा हूँ।
7: अरे क्यों भला?
1: मैंने सुना है कि ध्यान में बैठे ऋषि मुनियों के बालों की जटा बढ़कर धरती को छूने लगती है और धीरे धीरे बरगद के पेड़ की जटा की तरह धरती में घुस जाती है। पर मैं तो कल भी ध्यान करने बैठा था, मेरे बाल तो बड़े ही नहीं, ना ही जमीन में घुसे, क्यों माँ?
7: बेटा, एक आध घंटा या एक दो दिन में जटाएं नहीं बढ़ती, कई साल लग जाते हैं।

0: नरेंद्रनाथ के पास खेलों की कमी ना थी। उनका एक प्रिय खेल था राजा बनने का खेल। अपने संगी साथियों के साथ पूजा घर जाने वाली ऊंची सीढ़ी पर ये खेल चलता था।
1: मैं राजा हूँ, इसीलिए मैं सबसे ऊंची सीढ़ी पर बैठूंगा। तू मंत्री है, इस पर बैठ। तू तो कोतवाल है, वहाँ बैठ। सेनापति, तुम इधर आकर बैठो और तुम सब सभासद हो, नीचे बैठो। अब दरबार शुरू होगा, सब लोग मुझे प्रणाम करो।
2: प्रणाम महाराज।
1: मंत्री, राज्य का क्या समाचार है?
3: प्रजागण परम सुखी है महाराज।
1: सेनापति, कहो क्या कहना है?
4: महाराज, एक डाकू बड़ा उत्पात करता है, आए दिन हमला करके प्रजा को लूट लेता है।
1: उस दुष्ट आत्मा का सर काट दो।
0: तुरंत कुछ बच्चे डाकू को पकड़ने दौड़ते और वो सदर दरवाजे से भागकर जान बचाता। राजा सिंहासन पर बैठे बैठे मुस्कुराते रहते।
5: इसी तरह खेलते खिलाते नरेंद्र बड़ा हो रहा था। साथियों ने सर्वसम्मति से उसे नेता मान लिया था। जहाँ भी जाते, जो भी करते, सब बच्चे नरेंद्र का ही कहा मानते। उम्र में बड़े बच्चे भी उसी को नेता मानते थे।
0: नरेंद्र बचपन से ही निर्भीक और साहसी थे। उसके एक सहपाठी पड़ोसी के घर चंपा का एक पेड़ था। अक्सर नरेंद्र उस पेड़ पर चढ़कर डाली में पांव फंसाकर और सिर नीचे लटकाकर झूलता था। एक दिन उस घर के मालिक दादाजी राम रतन बसु ने उसे ऐसा करते देख लिया। उन्हें लगा चंपा की नरम डाली टूट जाने पर नरेंद्र को चोट लग जाएगी। वो बाहर आकर नरेंद्र को समझाते हुए कहते हैं,
6: बेटा नरेंद्र, इस तरह चंपा की डाली पर नहीं झूलते, नीचे आ जाओ, मत चढ़ो पेड़ पर।
1: क्यों? क्यों इस पेड़ पर चढ़ने से क्या होता है?
6: नीचे तो उतरो, बतलाता हूँ।
1: ये लीजिए, आ गया, अब बताइए।
6: उस पेड़ पर एक ब्रह्म राक्षस रहता है, भयानक गुस्सेल है, पेड़ पर चढ़ने वाले की गर्दन मरोड़ देता है।
1: अच्छा दादाजी।
0: दादाजी के अंदर जाते ही नरेंद्र फिर से पेड़ पर चढ़ने लगा।
7: नरेंद्र, सुना नहीं दादाजी ने क्या कहा? ब्रह्म राक्षस गर्दन मरोड़ देगा।
1: अरे आने दे ब्रह्म राक्षस को, मैं उसके शरीर पर थूक कर उसे वशीभूत कर दूंगा।
7: नहीं बाबा, मुझे तो डर लगता है, मैं तो चाहता हूँ, मैं जा रहा हूँ।
1: तू भी जैसे गधा है। कोई आकर एक बात कह के डरा गया और तू उसी पर विश्वास करने लगा।
7: तो तू नहीं मानता ब्रह्म राक्षस को?
1: तेरे दादाजी की बात अगर सही होती तो वो बहुत दिनों पहले ही मेरी गर्दन मरोड़ देता। मैं तो अक्सर झूलता हूँ, मुझे तो कभी नहीं दिखा वो। जा जा जा, डरपोक कहीं का।
0: बच्चे की बुद्धि का विकास माता पिता की गोद में बैठकर ही होता है। विशेषकर नरेंद्र के माता पिता का था अपूर्व उदार हृदय और ज्ञान समृद्ध प्रगतिशील मन, अतः उनका मानसिक विकास और भी तेजी से और समृद्ध हुआ था। रामायण और महाभारत की कहानी, देवी देवताओं की कथा एवं भारत की सांस्कृतिक परंपरा के स्वरूप को उन्होंने इसी बचपन में लाड़ प्यार के माध्यम से ही ग्रहण करना शुरू किया। उनके सुकुमार मन में इन सब की गंभीर रेखा चित्र खिंच गई थी, इसलिए परवर्ती काल में अपने व्याख्यान के प्रसंग में इन सब बातों का उल्लेख कर एवं सुंदर भाषा में उनकी व्याख्या कर श्रोताओं को मुग्ध कर देते थे।
5: रामायण पर उनका इतना अधिकार हो गया था कि कि एक बार घर के पास रामायण गायकों के एक दल द्वारा एक पद विशेष को गाते समय कई पंक्तियां भूल जाने से अशुद्ध रूप से गाने पर नरेंद्र ने पदों को शुद्ध रूप से गाकर सभी लोगों से प्रशंसा पाई थी। गायकों ने भी अपनी भूल मानकर श्रोताओं से माफी मांगी थी और नरेंद्र को मिली थी ढेर सारी मिठाइयां।
0: उनके महाभारत पाठ के संबंध में भी एक मर्मस्पर्शी घटना जानी जा सकती है। सन 1869 में दत्तग्रह के तत्कालीन मुखिया नरेंद्रनाथ के छोटे दादाजी काली प्रसाद दत्त मृत्युशैया पर पड़े थे। आखिरी समय में उनमें एक अंतिम इच्छा जगी कि मृत्यु पूर्व परिवार के बच्चों में से किसी के मुख से महाभारत का पाठ सुनेंगे। लज्जावश कोई भी बालक या बालिका पाठ करने के लिए राजी नहीं हुआ। सबने सबसे छोटे नरेंद्र से पाठ करने के लिए कहा। वे तुरंत अपने छोटे छोटे हाथों में विशाल काय महाभारत को समाहित किए हुए दादाजी के कमरे में आए और अपनी मधुर वाणी में महाभारत के कई पन्ने पढ़कर सुना दिए।
5: केवल अंतिम घड़ी में ही नहीं, उसके पहले भी दादाजी ने नरेंद्र के मुख से कई दिनों तक संपूर्ण रामायण का पाठ सुना था। पाठ के समय माँ भुवनेश्वरी देवी भी उपस्थित रहा करती थी।
0: परलोक की ओर आंखें पसारे हुए वृद्ध ने अपने इस कुल तिलक के महाभारत पाठ से उल्लासित होकर आशीर्वाद दिया।
8: बेटा, समय आने पर तुम निश्चय ही बड़े आदमी बनोगे। हाँ
9: मेरे बेटे को यही आशीर्वाद दें कि वो हमेशा सच के पथ पर चले और मानवता की सेवा करे।
8: तुम्हारी जैसी माँ पाई है इस बालक ने, इसे कौन रोक सकेगा। अवश्य ही ये हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा।
9: बिले बेटा, दादाजी तुम्हें आशीर्वाद दे रहे हैं, उन्हें प्रणाम नहीं करोगे।
1: हाँ माँ, दादाजी प्रणाम।
8: जीते रहो बेटा, जीते रहो, खुश रहो, जुग जुग जियो, जुग जुग जियो।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आलेख डॉक्टर पापिया दास गुप्ता, निर्देशन चैतन्य भट्ट, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वरा संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम आपसे मिलते रहेंगे प्रत्येक बुधवार और रविवार इसी समय अपने इस कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद में।

विवेकानंद के बचपन की कथाओं में उनका साहस, स्वाभिमान, तर्कपूर्ण मस्तिष्क और बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है। बचपन के गुणों को देखकर भावी मंगलमय जीवन का भी एक सुंदर पूर्वाभास पाना संभव होता है। कम से कम नरेंद्रनाथ के संबंध में ये बात निसंकोच कही जा सकती है। नरेंद्र की सुगठित सुंदर देह थी, दोनों नेत्र बड़े बड़े और उज्जवल थे, गौर वर्ण, अंग प्रत्यंग लावण्य मंडित और मुख मंडल पर प्रतिभा की दीप्ति, देखते ही प्यार करने की इच्छा होती।

0: बचपन में नरेंद्र को अपने साथियों के साथ शिव का ध्यान करने का खेल बहुत पसंद था। उनके साथी भी उनके साथ बदन पर राख मलकर आंख बंद करके ध्यान करने बैठ जाते थे। एक दिन सब बच्चे ऐसा ही खेल रहे थे, अचानक एक बच्चे ने आंख खोलकर देखा कि सामने एक काला नाग फन फैलाए हुए है। उस बच्चे के मुंह से चीख निकल गई।
1: सांप, वो देखो सांप, भाग भागो, भागो, भागो, सांप, सांप, भागो, भागो, भागो, भागो।
2: पर नरेंद्र का ध्यान नहीं टूटा, वो वहीं बैठा रहा। बच्चों की चीख पुकार सुन बड़े बुजुर्ग दौड़े आए। उन लोगों ने आकर अत्यंत भयावह दृश्य देखा। आंखें मूंद कर बालक बैठा है और उसके सामने विषैला सांप भयंकर फन फैलाए डोल रहा है। देखकर प्राण सूख गए, सांसें थम गईं। आवाज करने पर सांप बालक को डस सकता था। इस भय से निरुपाय हो सभी चुपचाप खड़े रहे। थोड़ी देर बाद वो सांप स्वयं ही कहीं चला गया। ढूंढने पर भी वो सांप नहीं मिला। माता बेटे से लिपट गई और कहने लगी,
3: बेटा बेटा बिले, तू ठीक तो है ना? हाँ, तेरे दोस्तों ने तुझे इतना जगाया, तू उनके साथ भागा क्यों नहीं? बोल बोल, तू भागा क्यों नहीं?
4: क्या हुआ माँ, तुम सब लोग यहाँ क्यों भीड़ लगाए खड़े हो? तुम लोग रो क्यों रहे हो? ए ए ए निताई, तू इतना डरा हुआ क्यों है? क्या हुआ?
3: बिल्ले, तुझे क्या सचमुच होश नहीं था? हाँ, अरे इतना बड़ा सांप तेरे सामने फुफकार रहा था और तू आंखें मूंद कर बैठा था, बोल।
4: सांप कहाँ? मुझे तो कुछ पता ही नहीं चला।
3: हे भगवान, हे शिव शंकर, आज तुमने मेरे बेटे की रक्षा की है भगवान। ऐसे ही कृपा बनाए रखना देव

0: नरेंद्र बचपन से ही अपने हम उम्र साथियों के साथ नई नई जगह जाने के लिए तैयार रहते थे, चाहे वो मकर संक्रांति के दिन गंगा किनारे जाकर दीप जलाकर पानी में बहा देने की बात हो या कोई मेला देखने जाना हो। दूसरों की मदद के लिए बालक नरेंद्र हमेशा तत्पर रहते थे। एक दिन जब वे सिर्फ 6 साल के थे, अपने दल बल के साथ चैत्र संक्रांति में होने वाले शिवजी का मेला, जिसे गाजन का मेला कहते हैं, देखने गए थे। लौटने में शाम हो गई थी। नरेंद्र मेले से खरीदी हुई शिवजी की मूर्ति हाथ में लिए जल्दी जल्दी घर वापस आ रहे थे। कुछ साथी पीछे रह गए थे। अचानक पीछे शोरगुल सुनकर नरेंद्र ने पीछे मुड़कर देखा। उसका एक दोस्त हक्का बक्का सा सड़क के बीचों बीच खड़ा है और एक बग्घी तेजी से उसकी तरफ बड़ी चली आ रही है। कोचवान घोड़े का रास पकड़कर उसे रोकने की कोशिश भी कर रहा है, पर घोड़ा है कि बड़ा ही चला आ रहा है।
1: ए बच्चा, हट जा रे, हट जा, देख नहीं रहा, घोड़ा बेकाबू हो गया है, हटो सब, हट जाओ यहाँ से।
2: अरे गया ही तो गया,
3: अरे गया,
0: सब चिल्ला रहे थे, पर कोई आगे बढ़कर उस बच्चे को बचाने नहीं आ रहा था। नरेंद्र ने देखा, झट हाथ में धरी मूर्ति को किनारे पर रखा और बीच सड़क पर कूदकर अपने साथी को एक झटके से किनारे खींच लिया। बग्घी तेजी से निकल गई। भीड़ अवाक होकर देखती रही।
4: क्या कर रहा था बीच सड़क में? मरना था क्या? अब रो क्यों रहा है? वो घोड़ा तो गया। चल अब घर चल। ले ले मेरा हाथ पकड़। अरे रुक तो जरा, मेरी मूर्ति तो उठा लूं। अब चल।
0: शाबाश बेटे, तुमने तो उसकी जान बचा ली, ना जाने क्या हो जाता आज।
5: वाह, बहुत बहादुर हो, किसके बेटे हो भाई?
4: विश्वनाथ दत्त का बेटा हूँ, अब खड़ा क्यों है, चल ना।
0: घर आकर नरेंद्र ने माँ को सारी बातें बता दी। माँ सांस रोककर सारी घटना सुनती रही, फिर बार बार भगवान को हाथ जोड़कर धन्यवाद देती रही।
6: हे भगवान, हे शिव शंकर, तुमने आज मेरे बेटे को बचा लिया। भगवान बिले, आज कितना बड़ा अनर्थ हो सकता था, तुझे अंदाजा भी है? तुम दोनों को वो घोड़ा कुचल भी सकता था बेटा।
4: माँ, मैंने अपने दोस्त को बचाकर क्या कोई गलती की?
6: ओह मेरे वीर पुत्र, नहीं बेटा, तुमने कोई गलत काम नहीं किया, पर माँ का दिल है ना, हमेशा डर लगा रहता है। बेटा तुमने तो सच्चे इंसान का काम किया है, हमेशा ऐसे ही इंसान बने रहना। तुम्हें मालूम नहीं बेटा, उस बच्चे की माँ आज तुम्हें कितना आशीर्वाद दे रही होंगी। कितना आशीर्वाद आज मिला है तुझे। ओह बेटा, बेटा मेरा, राजा बेटा, राजा बेटा मेरा।

0: नरेंद्र के साहस और तत्परता के कई किस्से हैं। एक बार जब वे 7-8 साल के थे, अपने दोस्तों के साथ नाव से चांदपाल घाट से मटिया बुर्ज स्थित लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह का चिड़ियाघर देखने गए। लौटते समय एक बच्चे की तबीयत खराब हो गई। उसने नाव में उल्टी कर दी। इससे नाराज होकर मल्लाहों ने उस लड़के को नाव साफ करने को कहा। लड़के ने किसी दूसरे से नाव साफ करवा लेने की बात कही, दुगना भाड़ा देने का वादा भी किया, पर मल्लाहों ने जिद नहीं छोड़ी। गाली गलौच करने लगे और किनारे पर आकर कहा,
1: कोई कुछ नहीं बोलेगा, पहले नाव साफ करो फिर किनारे लगाएंगे, किसी को उतरने भी नहीं दूंगा।
2: बात झगड़ा और मारपीट में बदलने की नौबत आ गई। घाट के दूसरे मल्लाहों को भी इन मल्लाहों का साथ देते देख लड़के घबरा गए। नरेन उन सभी से उम्र में छोटा था, पर वो छलांग लगाकर किनारे पर आ गया और बचने का रास्ता ढूंढने लगा। तभी उसने दो गोरे अफसरों को उधर आते देखा। नरेन बिना घबराए उनकी तरफ दौड़ा और अपनी टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा,
3: कम, save, boat, friends, save.
2: गोरों ने परिस्थिति भांप ली और इस सुदर्शन बालक को स्नेह पूर्वक अंग्रेजी में कहा,
1: Okay, let's see what happened there.
2: गोरों का हाथ पकड़कर नाव की ओर ले चले। गोरों को देखकर ही मल्लाह डर गए और बिना कुछ कहे नाव किनारे लगा दी। बच्चे उतर गए। गोरों ने प्रसन्न होकर नरेन को प्यार से कुछ खिलाने पिलाने के लिए ले जाना चाहा, पर नरेन उसने मना कर दिया और कहा,
1: Okay, kid. Nice to meet you. You are such a brave boy.
3: Thank you. Let mother. Wait. Going.
1: Bye.
3: Thank you.
2: और साथियों के साथ घर लौट आए।
0: एक और घटना का जिक्र करना चाहूंगी। नरेंद्र जब 12 साल के थे, तब इंग्लैंड के भावी राजा प्रिंस ऑफ वेल्स, जो बाद में सम्राट सप्तम एडवर्ड कहलाए, भारत दर्शन के लिए आए थे। उसी समय सिरापिस नाम का एक विराट जंगी जहाज कलकत्ते के बंदरगाह में आ रुका। नरेंद्र और उनके साथियों ने तय किया कि वे उस जहाज को देखने जाएंगे, पर उसे तो यूं ही नहीं देखा जा सकता। चौरंगी क्षेत्र में एक साहब अफसर के दफ्तर से अनुमति पत्र निकलवाना होगा, तभी जहाज में चढ़ा जा सकेगा।
2: नरेंद्र दलबल समेत चौरंगी पहुंचे, दफ्तर ढूंढ निकाला। सामने ही एक विशाल काय मूंछ वाला दरबान बैठा था। उसने बच्चों की टोली से पूछा,
4: यहां भीड़ क्यों लगा रखी है? क्या चाहिए? चलो हटो यहां से, साहब लोगों के आने जाने का रास्ता है ये, हट जाओ वहां से।
3: दरबान जी, हमें अंदर जाने दो ना, हमें साहब से जहाज देखने की पर्ची भी तो निकलवाना है।
4: कह दिया ना नहीं, अभी साहब नहीं मिल सकते, काम कर रहे हैं, जाओ निकल जाओ यहां से, बाद में आना।
3: बाद में मिलकर क्या करूंगा, जहाज तो कल चला जाएगा।
4: तो हम क्या करें, जाएगा तो जाने दो, तुम लोग अभी अंदर नहीं जा सकते, कह दिया ना, चलो चलो जाओ, सभी जाओ यहां से।
3: और लोग भी तो जा रहे हैं, हमें ही क्यों रोक रहे हो?
4: बहस मत करो, बच्चे हो बच्चे की तरह रहो, नहीं जाना है तुम्हें, बस।
0: नरेंद्र आसानी से हार मानने वाला नहीं था। उसने देखा लोग 2 मंजिल के एक कमरे में जा रहे हैं और पर्ची लेकर वापस आ रहे हैं। वह समझ गया, साहब 2 मंजिल के कमरे में बैठे हैं। उसने और भी देखा, उस कमरे तक जाने के लिए मकान के पीछे से लोहे की घुमावदार एक सीढ़ी भी है। उसने साथियों से कहा,
3: चलो चलो चलो सब, दरबान जी मना कर रहे हैं तो चले जाओ।
4: बस
3: तुम लोग कुछ दूर जाकर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आया।
2: दूसरे बच्चे दूर जाकर खड़े हो गए। नरेंद्र चुपचाप पीछे वाली सीढ़ी से ऊपर चढ़ गया और आवेदकों के दल में सम्मिलित होकर पंक्ति में लग गया और बारी आने पर साहब के कमरे में घुस गया। साहब माथा झुकाए आवेदनों पर दस्तखत करते जा रहे थे। नरेंद्र ने आवेदन साहब के सामने रखा, हस्ताक्षर हो गया। वो चुपचाप सामने की सीढ़ी से नीचे उतर आया और दरबान के सामने आवेदन फहरा कर कहा,
3: ये देखो मिल गई ना अनुमति, बड़े आए थे रोकने वाले।
4: ए छोकरा, तुम कैसे ऊपर आ गया बताओ।
3: हम जादू जानता है।
5: सब बच्चे हंसते हुए दरबान को मुंह चिढ़ाते हुए जहाज देखने चले जाते हैं।
0: नरेंद्र नाथ के सोने की क्रिया भी अद्भुत थी। दूसरों की तरह सिर तकिए पर रखते ही वे सो नहीं जाते थे, उन्हें पेट के बल सोने की आदत थी। आंख मूंदते ही वे अपनी भौहों के बीच एक अपूर्व ज्योति बिंदु देखा करते थे। यह बिंदु धीरे धीरे बढ़ता और क्रमशः अंडे का आकार धारण कर लेता और अचानक फटकर रंग बिरंगे तारों की तरह बिखर जाता और चारों दिशाओं को आलोकित कर बालक को ज्योति सागर में डुबो देता था। उस आलोक सागर में डूबते डूबते वे सो जाते।
2: हर रात ऐसा ही होता था। वो सोचते थे कि शायद हर आदमी को नींद ऐसे ही आती है, इसीलिए इस अति साधारण दैनिक घटना का जिक्र उन्होंने किसी से नहीं किया था। बहुत दिनों बाद बड़े होने पर एक बार उन्होंने अपने एक मित्र से पूछा था,
3: क्यों भाई सोने से पहले क्या तुम्हें एक ज्योति दिखाई देती है?
6: नहीं तो?
3: मैं देखता हूँ, रोज देखता हूँ। बिस्तर पर लेटते ही सो मत जाना, कुछ देर आंख मूंद कर ध्यान करना, तुम्हें भी दिखाई देगी।
2: उस मित्र को ज्योति दिखी या नहीं ये तो किसी को नहीं पता, पर बाद में सन 1882 में श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने इस ज्योति दर्शन की बात सुनकर कहा था,
7: जो लोग ध्यान सिद्ध होते हैं

0: और साथियों के साथ मिलकर मंचन करते।
1: हनुमान जी के प्रसंग उन्हें बहुत प्रिय लगते थे। वे अक्सर लंका दहन, गंधमार्दन पर्वत कंधे पर ले आना, अशोक वाटिका में सीता से मुलाकात आदि प्रसंगों का मंचन किया करते थे। और शायद यह बताने की जरूरत नहीं कि वे खुद हनुमान की भूमिका में होते थे। एक लंबी सी पूंछ लगाकर हनुमान जी की नकल करते हुए वे उछलते कूदते रहते थे।
2: अरे दुष्ट रावण, तेरी ये हिम्मत, तूने श्री राम की पत्नी सीता मैया का हरण किया। ठहर, तुझे मजा चखाता हूँ। तुझे अपनी सोने की लंका पर बहुत गर्व है ना? ले, अब बचा ले इसे। आज मैं तेरी सोने की लंका को जलाकर राख कर दूंगा। देखूं कौन रोकता है मुझे।
3: वो देखो कूद कर उधर चला गया। हाय हाय, सबको जला दिया उसने।
2: आओ पकड़ो मुझे। क्यों रावण महाराज, कैसा लग रहा है?
4: मेघनाथ कहाँ है? कुंभकर्ण को बुलाओ। सब वीर योद्धागण क्या सो रहे हैं? अरे कोई तो मेरी लंका को बचाओ, बचाओ, बचाओ।
2: ये रही तेरी जलती हुई पूंछ, रख ले इसे। मैं तो अपनी पूंछ लेके ये चला।
1: और भी कई प्रकार के खेल थे। उन दिनों कलकत्ते में गैस बत्ती आई थी, जिसे पेट्रोमैक्स कहते हैं। अंग्रेजों ने सोडा लेमोनेट बनाना भी शुरू किया था। नरेन को लेमोनेट पीना बहुत अच्छा लगता था, सो उन्होंने घर के आंगन में ही गैस और सोडा लेमन का कारखाना बनाने का मन बना लिया था। फिर क्या था, पूरी सेना इकट्ठी हो गई। कलपुर्जे नुमा कबाड़ इकट्ठा करके कारखाना खुल गया। पुराने जस्ते के नल, मिट्टी की हांडी और घास फूस के साथ गैस घर का निर्माण हुआ। घास फूस के चलते ही धुआं होता और नल से होकर ऊपर उठता। नरेन कमर पर हाथ रखकर कुछ दूर खड़े होकर गंभीर दृष्टि से सब कुछ देखते और अपनी आविष्कार की सफलता पर आत्मतृप्त होते। दूसरे बच्चे भी ताली बजा बजा कर आनंदित होते और नरेंद्र को शाबाशी देते।
5: अरे नरेन, ये तो सचमुच का कारखाना बन गया रे, पर सोडा लेमोनेट कैसे बनेगा?
2: जरा चुप तो रहो, मुझे सोचने दो। इस हांडी में पानी लाओ, इसे गैस के पाइप से बांधो।
5: क्यों नरेन, ये बाजार वाले लेमोनेट जैसा ही होगा ना, मीठा मीठा।
2: होगा तो वैसे ही। अरे अरे, गैस कम क्यों निकल रही है? और आग दो, आग दो, घास डालो और अब फूको, फूंक लगाओ। अरे जोर से लगाओ, जोर से, और जोर से लगाओ।
1: वाह रे नरेन, धन्य है तुम्हारी कल्पना शक्ति।
6: एक बार नरेंद्र ने सर्कस देखने के बाद घर पर ही ट्रेपेज़ बनाने की ठानी। ट्रेपेज़ का खेल उन्हें बहुत पसंद आया था। कैसे खिलाड़ी हवा में झूलते हैं, छलांग लगाकर दूसरे झूले को पकड़ लेते हैं। बस सोचने भर की देर थी। साथियों को बुलाकर कहीं से रस्सी ले आए और बगीचे के पेड़ पर ट्रेपेज का झूला बांधने लगे। जितना काम नहीं हो रहा था, उससे ज्यादा हंगामा मच रहा था। देखते देखते बाहर अच्छी खासी भीड़ जमा हो गई। बच्चों की हरकतें देख लोग मजा ले रहे थे, पर कोई मदद करने नहीं आ रहा था। बच्चे परेशान हो रहे थे, वे ट्रेपेज बांध नहीं पा रहे थे। इतने में नरेंद्र की नजर एक अंग्रेज पर पड़ी। वह हट्टा कट्टा जवान था, शायद किसी जहाज में नाविक का काम करता होगा, क्योंकि वह वैसे ही पोशाक पहने हुए था। नरेंद्र उनके पास जाकर बोला,
2: सेलर।
7: यस सर।

0: हेल्प।
1: ओके।
2: वो अंग्रेज ऊपर चढ़कर झूला टांगने में मदद करने लगा। अचानक उसका पांव फिसला और वो नीचे जमीन पे आ गिरा।
1: माय गॉड।
2: वो बेहोश हो गया था। उसके सिर से खून बह रहा था। सब लोग थोड़ी देर के लिए सकते में आ गए। फिर सब ने एक साथ बोलना शुरू किया।
3: अरे, इसका तो सिर फट गया।
4: मर तो नहीं गया?
3: क्या पता, हिलडुल भी तो नहीं रहा।
4: तो अब क्या होगा?
3: होगा क्या, पुलिस आएगी और इन बच्चों को पकड़कर ले जाएगी।
4: ए पुलिस, अरे भागो भैया, पुलिस के झंझट में कौन पड़ेगा।
3: हाँ हाँ, तुम सच बोलते हो, चलो चलो भागते, भागो भागो भागो।
5: देखते ही देखते सब भाग गए। बच्चे रोने लगे। नरेन आगे आया।
0: ए ए, कोई पानी लाओ। तुम मेरी मदद करो, मैं अपनी धोती फाड़ कर पट्टी बना देता हूँ। जरा इनका सर पकड़ तो लो, मैं पट्टी बांध देता हूँ।
2: बच्चों ने मिलकर उनका घाव धोकर पट्टी बांधी, मुंह पर पानी का छींटा दिया। थोड़ी देर में उस अंग्रेज को होश आ गया। कुछ देर तक आराम करके वह उठ बैठा। नरेन उसे पास वाले कमरे में ले गए, घर के बड़ों को बुलाया और डॉक्टर ने आकर उसकी मरहम पट्टी की। नरेंद्र ने परिवार वालों से मांग कर उसे कुछ पैसे भी दिए। वह धन्यवाद देकर चला गया।

अभी आप सुन रहे थे स्वामी विवेकानंद के विचारों और आदर्शों पर केंद्रित कार्यक्रम युग प्रवर्तक विवेकानंद। आलेख डॉक्टर पापिया दास गुप्ता, निर्देशन चैतन्य भट्ट, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग स्वरा संस्थान संचालनालय की प्रस्तुति।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम में किस क्रांतिकारी की चर्चा की गई। इसका सही जवाब है मोहन किशोर नामदास। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा और महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

भारतीय ज्ञान परंपरा के आकाश में कुछ ऐसे नक्षत्र उदित हुए हैं जिनका प्रकाश समय की सीमाओं को लांघकर पीढ़ियों का मार्ग आलोकित करता रहा है। आयुर्वेद के पुनरुत्थान से जुड़े एक ऐसे ही महान व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति। जब परंपरा और आधुनिकता के बीच संवाद की आवश्यकता थी, तब उन्होंने आयुर्वेद की सनातन चेतना को नए युग की धड़कनों से जोड़ा। उनके लिए आयुर्वेद केवल चिकित्सा पद्धति नहीं थी, बल्कि वो आयुर्वेद को भारतीय संस्कृति की जीवंत आत्मा मानते थे। उसे जीवन को संतुलन, स्वास्थ्य और समरसता प्रदान करने वाली एक संपूर्ण दृष्टि मानते थे। ज्ञान उनकी साधना था, सेवा उनका धर्म और आयुर्वेद का उत्थान उनका संकल्प। वो आधुनिक भारत में आयुर्वेद चिकित्सा और सार्वजनिक स्वास्थ्य के सबसे प्रमुख प्रणेताओं में से एक थे। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति का जन्म 3 मार्च सन 1880 को आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के माधोवरम गांव में एक कृषक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम अचंता रमैया था। परिवार के आध्यात्मिक वातावरण ने उनके व्यक्तित्व की नींव रखी। पिता की प्रेरणा से ही उन्होंने वेद पुराण और संस्कृत भाषा का गहन अध्ययन किया। उनके बाल्यकाल पर उनके दादा सुब्बा रायडू और प्रसिद्ध समाज सुधारक कुंदुकुरी वीरेश लिंगम का गहरा प्रभाव पड़ा। इन दोनों विभूतियों के सानिध्य ने उनके भीतर ज्ञान और समाज सेवा के बीज बोए। इसी बीच एक ऐसी घटना घटी जिसने उनके जीवन की दिशा ही बदल दी। उनकी माताजी गंभीर रूप से बीमार हुई। उपचार के दौरान अचंता लक्ष्मीपति की भेंट राजमहेंद्रम के एक प्रसिद्ध वैद्य डॉक्टर सीतारमैया से हुई। ये केवल एक वैद्य से भेंट नहीं थी, बल्कि आयुर्वेद से उनका पहला सटीक परिचय था। डॉक्टर सीतारमैया ने उन्हें आयुर्वेद के व्यावहारिक सूत्रों से परिचित करवाया और उनके मन में इस भारतीय चिकित्सा परंपरा के प्रति आदर भाव जागृत किया। इस तरह भारत की इस अमूल्य विरासत को नई प्रतिष्ठा दिलवाने का संकल्प उनके मन में जागा।

ये वो समय था जब भारत में आधुनिक चिकित्सा शिक्षा का प्रभाव बढ़ रहा था। अचंता लक्ष्मीपति ने आधुनिक चिकित्सा पद्धति को समझने का निश्चय किया। सन 1904 में उन्होंने बीए की शिक्षा पूरी की तथा छात्रवृत्ति प्राप्त कर मद्रास मेडिकल कॉलेज में प्रवेश लिया। इस तरह सन 1909 में उन्होंने एलोपैथी चिकित्सा में प्रामाणिक डिग्री हासिल की। सन 1910 में उन्होंने मद्रास में अपनी प्रैक्टिस शुरू की और वो वेंकटगिरी के राजा जैसे संभ्रांत वर्ग के पारिवारिक चिकित्सक बने। लेकिन सन 1914 में ब्रिटिश सरकार द्वारा मद्रास मेडिकल रजिस्ट्रेशन एक्ट पारित किया गया, जिसका उद्देश्य आयुर्वेद को गैर मान्यता प्राप्त चिकित्सा पद्धति घोषित करना था। इसके विरोध में डॉक्टर लक्ष्मीपति ने अपना नाम एलोपैथी के मेडिकल रजिस्टर में दर्ज करवाने से इनकार कर दिया। ब्रिटिश सरकार के इस कदम को उन्होंने केवल एक प्रशासनिक निर्णय नहीं माना, उन्होंने इसे भारतीय ज्ञान परंपरा के सम्मान का प्रश्न समझा। ये उनके पेशेवर जीवन के लिए जोखिमपूर्ण समय था, लेकिन इसी समय उनके जीवन में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व का प्रवेश हुआ, वैद्य रत्न पंडित देवी गोपाल चारलू। वो मद्रास के सुप्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान थे जिन्होंने अचंता लक्ष्मीपति की प्रतिभा को पहचाना तथा अपने संरक्षण में उन्हें आयुर्वेद के गहन अध्ययन का अवसर दिया। सन 1914 से 1919 तक अचंता लक्ष्मीपति ने उनसे गहन ज्ञान प्राप्त किया। सन 1919 में विश्व स्पेनिश फ्लू नामक घातक महामारी की चपेट में आ गया। इस महामारी ने दुनिया की एक तिहाई आबादी को अपनी चपेट में ले लिया था। इन्फ्लुएंजा वायरस के कारण ये महामारी फैली थी। ऐसे कठिन समय में डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने आयुर्वेदिक उपचार के माध्यम से हजारों रोगियों को राहत पहुंचाई। इस अनुभव ने उनके इस विश्वास को और भी दृढ़ कर दिया कि भारतीय चिकित्सा पद्धति केवल अतीत की धरोहर नहीं है, बल्कि वर्तमान और भविष्य की आवश्यकता है। इसके बाद उन्होंने एलोपैथी इलाज पूरी तरह से छोड़ दिया और स्वयं को आयुर्वेद के लिए समर्पित कर दिया। सन 1920 में उनके गुरु वैद्य रत्न पंडित देवी गोपाल चारलू का निधन हो गया और गुरु का दायित्व शिष्य के कंधों पर आ गया। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को मद्रास आयुर्वेदिक कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया। सन 1920 से 1928 तक उन्होंने इस संस्था को केवल एक शिक्षण केंद्र नहीं, बल्कि उसे आयुर्वेदिक चेतना का केंद्र बिंदु बना दिया। इस कॉलेज को चलाने के लिए मुंगला के राजा ने भी बड़ी वित्तीय सहायता प्रदान की थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति स्वास्थ्य को जीवन पद्धति का विषय मानते थे। यही कारण है कि उन्होंने सन 1926 में मद्रास के पास स्थित आवड़ी में आरोग्य आश्रम समिति की स्थापना की। ये केवल एक आश्रम नहीं था, बल्कि स्वास्थ्य और प्रकृति के समन्वय का प्रयोग था। एक ऐसा स्वास्थ्य ग्राम जहां उपचार के साथ साथ जीवन जीने की कला सिखाई जाती थी। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने युवा वैज्ञानिक डॉक्टर यल्ला प्रगदा सुब्बाराव की प्रतिभा को पहचान कर उनके प्रारंभिक शोध कार्यों को प्रोत्साहित किया और उनकी उच्च शिक्षा का मार्ग प्रशस्त किया, जिन्हें चमत्कारिक औषधियों का जनक माना जाता है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति पर रमण महर्षि के आध्यात्मिक विचारों का गहरा प्रभाव था, जिन्होंने उनके चिंतन और विचारधारा को एक सार्थक दिशा प्रदान की। वो गांधी जी के विचारों से भी अत्यधिक प्रभावित थे तथा स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई।

सन 1933 में डॉक्टर अजंता लक्ष्मीपति की सेवाओं और नेतृत्व क्षमता को राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हुई। बीकानेर में आयोजित ऑल इंडिया आयुर्वेद महासम्मेलन में उन्हें अध्यक्ष चुना गया। धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे देश में फैल रही थी। लोग उन्हें केवल एक चिकित्सक के रूप में नहीं बल्कि आयुर्वेद का पुनरुत्थान करने वाले मनीषी के रूप में देख रहे थे। लेकिन उनकी सबसे बड़ी यात्रा अभी शेष थी, एक यात्रा जो उन्हें गांधी जी के और निकट ले गई, एक यात्रा जिसने गांव गांव जाकर स्वास्थ्य संदेश पहुंचाया। सन 1938 का साल भारत की स्वाधीनता के स्वप्न से आंदोलित साल था। महात्मा गांधी ग्रामोदय और स्वावलंबन के विचार को जन जन तक पहुंचा रहे थे। इसी समय डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति ने एक अभिनव अभियान आरंभ किया जिसका नाम था आरोग्य यात्रा। वो लगभग 100 चिकित्सकों के साथ पैदल चलते हुए गांव गांव पहुंचे। उन्होंने लोगों को स्वच्छता, संतुलित जीवन शैली और आयुर्वेदिक स्वास्थ्य सिद्धांतों का महत्व समझाया। वो पंच शुद्धि प्रणालिका के 5 नियमों का संदेश लिए आगे बढ़ते रहे। अपने इस अभियान में उन्होंने प्रत्येक गांव में कम से कम 1 एकड़ भूमि पर औषधीय पौधों का उद्यान विकसित करने हेतु लोगों को प्रेरित किया। उनका मानना था कि स्वास्थ्य अस्पतालों से नहीं बनता, वो विकसित होता है स्वच्छ विचारों, संतुलित आहार और प्रकृति के सानिध्य में। डॉक्टर लक्ष्मीपति के इन प्रयासों से गांधी जी अत्यंत प्रभावित हुए। सन 1939 में गांधी जी ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से सेवाग्राम आश्रम आने का निमंत्रण दिया। वर्धा का सेवाग्राम आश्रम उस समय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र था। सेवाग्राम पहुंचकर उन्होंने केवल एक चिकित्सक की भूमिका नहीं निभाई बल्कि उन्होंने स्वास्थ्य और ग्राम विकास के गांधीवादी स्वप्न को मूर्त रूप देने में सहयोग दिया। गांधी जी ने उन्हें आश्रम में एक विशाल उद्यान विकसित करने का दायित्व सौंपा। इस उद्यान का उद्देश्य केवल औषधियां उगाना नहीं था बल्कि ये सिद्ध करना था कि भारत के गांव अपने स्वास्थ्य की रक्षा स्वयं कर सकते हैं। डॉक्टर लक्ष्मीपति की धर्मपत्नी श्रीमती रुक्मिणी लक्ष्मीपति भी राष्ट्र सेवा को समर्पित रहीं। वो एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थीं और सन 1946 में मद्रास प्रांत की सरकार में वो सार्वजनिक स्वास्थ्य मंत्री बनी। इस तरह पति पत्नी ने साथ मिलकर भारतीय चिकित्सा के विकास की एक नई धारा प्रवाहित की। सन 1947 में भारत की आजादी के बाद भी वो राष्ट्र सेवा को समर्पित रहे। गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर वो समाज सुधार के कार्य में भी निरंतर संलग्न रहे। डॉक्टर लक्ष्मीपति अंतरजातीय विवाह के प्रबल पक्षधर थे। यही कारण है कि उन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अपनी जाति से बाहर एक गैर ब्राह्मण युवक से किया। इसके साथ ही वो पृथक आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना के भी पक्षधर थे। सन 1960 में भारत सरकार ने उन्हें योजना आयोग में भारतीय चिकित्सा पद्धतियों का राष्ट्रीय सलाहकार नियुक्त किया जहां उन्होंने रोग प्रतिरोधक चिकित्सा और जीवन शैली सुधार पर विशेष बल दिया। उन्होंने तेलुगु और अंग्रेजी भाषा में चिकित्सा पद्धतियों पर लगभग 100 पुस्तकें लिखीं, जिनमें से 63 पुस्तकें विशुद्ध रूप से भारतीय चिकित्सा प्रणालियों और आयुर्वेद के अनुवादों पर आधारित थीं। उनकी आत्मकथा आयुर्वेद के पुनरुत्थान का प्रामाणिक दस्तावेज मानी जाती है। डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति को देश भर में भिषग रत्न, प्राणाचार्य तथा आयुर्वेद वाचस्पति जैसी कई उपाधियों से विभूषित किया गया था। आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 6 अगस्त सन 1962 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है लक्ष्मण प्रसाद दुबे। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, जबलपुर से वृंदा हिंगनीकर और उज्जैन से संजीव जैन। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

भारतीय स्वाधीनता का इतिहास ऐसे अनेक राष्ट्रभक्तों की कहानी कहता है जो समय की प्रचंड आंधियों के बीच दीप नहीं दिशा बनकर उभरे। भारत की आजादी के लिए अपना सर्वस्व अर्पित करने वाले एक ऐसे ही महान क्रांतिकारी थे गणेश घोष। उनकी यात्रा उस नदी की तरह थी जो चट्टानों से टकरा कर भी अपना मार्ग बनाना जानती है। उनका संकल्प उस अग्नि की तरह था जो स्वयं तप कर भी अपने आसपास उजाला बिखेरती है। गणेश घोष का जन्म 22 जून सन 1900 को अविभाजित भारत के जैसोर नामक स्थान पर हुआ था जो बांग्लादेश के खुलना जिले के पास स्थित है। उनके पिता का नाम विनोद बिहारी घोष था। गणेश घोष बचपन से ही कुशाग्र बुद्धि के थे तथा अपने आसपास की सामाजिक और राजनीतिक स्थिति देखकर बहुत अधिक उद्वेलित हुआ करते थे। उनकी शिक्षा आगे बढ़ती रही और आरंभ में उन्होंने ब्रिटिश रेलवे में काम भी किया, लेकिन 1921 में गांधी जी के असहयोग आंदोलन में शामिल होने के लिए उन्होंने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। इसी दौरान कोलकाता के बंगाल तकनीकी संस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए उन्होंने चिटगांव में एक स्वदेशी कपड़े की दुकान भी खोली थी। उन्होंने जो मैकेनिकल और तकनीकी कौशल की शिक्षा ग्रहण की थी वो शिक्षा केवल आजीविका के लिए नहीं थी, बल्कि इस कौशल का प्रयोग वो देश को आजाद कराने के लिए हथियार और बम बनाने के लिए भी करने का विचार करने लगे। भारत की आजादी उनकी आंखों का पहला सपना था। अंग्रेजों की गुलामी से वो अत्यधिक आक्रोशित रहा करते थे तथा मन ही मन क्रांति पथ पर चलने का उन्होंने संकल्प ले लिया। उन्हें विश्वास था कि भारत बहुत जल्द आजाद होगा।

कलकत्ता में पढ़ाई के दौरान ही गणेश घोष बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी संगठन युगांतर के संपर्क में आ गए थे। वो बहुत जल्द इस संगठन के सक्रिय सदस्य बन गए। चटगांव में रहते हुए ही उनकी भेंट मास्टर सूर्यसेन से हो चुकी थी। सूर्यसेन की सादगी और दृढ़ संकल्प से वो अत्यधिक प्रभावित हुए और उनके सहयोगी बन गए। बहुत जल्द चटगांव में क्रांतिकारियों का समूह बना, जिसमें सूर्यसेन के साथ गणेश घोष, अनंत सिंह और लोकेन बल शामिल थे। इन्हें चटगांव में क्रांतिकारियों की त्रिमूर्ति कहा जाता था। गणेश घोष ने चटगांव के युवाओं को व्यायाम शालाओं के माध्यम से संगठित करना शुरू किया। वो युवाओं को शारीरिक रूप से शक्तिशाली बनाने, लाठी चलाने और अनुशासन सिखाने के प्रभारी थे। वो मास्टर सूर्यसेन द्वारा स्थापित चटगांव रिपब्लिकन आर्मी में सघन रूप से सक्रिय हो गए। ये एक सशस्त्र क्रांतिकारी संगठन था, जिसका उद्देश्य था ब्रिटिश शासन से चटगांव को मुक्त कराना तथा पूरे देश में विद्रोह की चिंगारी भड़काना। इस तरह इस क्रांतिकारी संगठन ने मजबूत आकार ले लिया। सन 1930 आते आते चटगांव की धरती पर एक बड़ी योजना आकार

वहां तक न पहुंच सके। 18 अप्रैल सन 1930 गुड फ्राइडे का दिन था। रात करीब 10 बजे भारतीय रिपब्लिकन आर्मी की वर्दी पहने क्रांतिकारियों ने हमला बोल दिया। गणेश घोष ने पुलिस शस्त्रागार पर हमला करने वाले दस्ते का नेतृत्व किया। उन्होंने बड़े ही साहस और चतुराई से वहां मौजूद पहरेदारों को निष्क्रिय कर दिया तथा भारी मात्रा में बंदूकें और मस्कट जब्त कर लिया। उधर अनंत सिंह के समूह ने सहायक बल शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया। शस्त्रागार पर पूरी तरह कब्जा करने के बाद सभी क्रांतिकारी पुलिस शस्त्रागार के बाहर इकट्ठा हो गए। वहां मास्टर सूर्य सेन ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया, सैन्य सलामी दी गई और अस्थायी क्रांतिकारी सरकार के गठन की घोषणा कर दी गई। गणेश घोष इस नवगठित क्रांतिकारी व्यवस्था में महत्वपूर्ण दायित्वों के साथ संलग्न हुए, लेकिन अंग्रेजी साम्राज्य इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। कुछ ही दिनों में ब्रिटिश सेना ने चटगांव को चारों ओर से घेर लिया। परिस्थिति देखकर क्रांतिकारी दल जलालाबाद की पहाड़ियों की ओर बढ़ चला।

22 अप्रैल सन 1930 को ब्रिटिश सेना ने जलालाबाद की पहाड़ियों को घेरकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। इस युद्ध में गणेश घोष ने युवाओं का ऐसा हौसला बढ़ाया कि क्रांतिकारियों की सटीक फायरिंग के सामने ब्रिटिश सेना टिक नहीं पाई, उसे पीछे लौटना पड़ा। इसके बाद मास्टर सूर्यसेन ने क्रांतिकारियों को छोटी छोटी टुकड़ियों में बंटकर गांवों में छिपने का आदेश दिया। गणेश घोष, अनंत सिंह, लोकेन बल और आनंद गुप्ता हुगली जिले के चंदन नगर में पहुंचे, जो उस समय फ्रांसीसी उपनिवेश था, इसलिए ये स्थान ब्रिटिश पुलिस के सीधे अधिकार क्षेत्र से बाहर था। यहां क्रांतिकारी सुहासिनी गांगुली और शशधर आचार्य ने पति पत्नी होने का नाटक कर एक घर किराए पर ले लिया, जहां गणेश घोष और उनके साथी छिपे हुए थे। ब्रिटिश खुफिया विभाग को इस ठिकाने का पता चल गया। पुलिस ने इसे घेरकर भयंकर गोलाबारी शुरू की। इस मुठभेड़ में गणेश घोष के साथी मखनलाल घोष शहीद हो गए और गणेश घोष को गिरफ्तार कर लिया गया। उन पर मुकदमा चला, उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया गया। अपनी जेल यात्रा में भी वो चुप नहीं बैठे, उन्होंने जेल में दो बड़ी भूख हड़ताल भी की थी। उनकी रिहाई के लिए देशव्यापी आंदोलन चले। महात्मा गांधी, गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर और अन्य शीर्ष नेताओं ने ब्रिटिश सरकार पर लगातार दबाव बनाया और अंततः 1946 में वो रिहा हुए। आजादी के बाद उन्होंने शस्त्र छोड़कर जन आंदोलन और चुनावी राजनीति का रास्ता चुना। वो पश्चिम बंगाल के गरीब और शोषित वर्ग की आवाज बनकर उभरे। आजादी के बाद वो लगातार 3 बार पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य चुने गए। सदन में वो अपनी प्रखर वाणी और शोषितों की आवाज उठाने के लिए जाने जाते थे। सन 1967 में उन्होंने राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखा। वो दक्षिण कलकत्ता की सीट से चुनाव जीतकर 4th लोकसभा के सदस्य बने। अपने जीवन के अंतिम 2 दशकों में उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि चटगांव विद्रोह और उनके शहीदों का इतिहास आने वाली पीढ़ियों तक अवश्य पहुंचे। उन्होंने इसी उद्देश्य से बंगाली और अंग्रेजी में कई संस्मरण, लेख और पुस्तकें लिखीं। उनकी अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है चट्टग्राम विप्लवेर बन्ही शिखा। ये उस दौर का सबसे प्रामाणिक दस्तावेज माना जाता है। वो जीवन के अंत तक कोलकाता के एक छोटे से मकान में बहुत ही सादगी से रहे। उन्हें जो भी पेंशन या भत्ते मिलते थे, उसे वो जन कल्याण हेतु दान कर दिया करते थे। अपने जीवन का पल पल भारत भूमि को समर्पित करते हुए उन्होंने 16 अक्टूबर सन 1994 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसी महान विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि नारायण मल्हार जोशी का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 5 जून। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के 2 भाग्यशाली श्रोता हैं, नोएडा उत्तर प्रदेश से प्रवीण कुमार झा और दमोह से किशन घीवाला। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

भारतीय स्वाधीनता इतिहास में ऐसे अनगिनत महापुरुष हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को एक तपस्या की तरह जिया, जिन्होंने सेवा को साधना माना तथा राष्ट्र प्रेम को जीवन का सर्वोच्च धर्म। उन्होंने स्वतंत्रता को केवल स्वप्न नहीं माना, बल्कि गांव जंगलों में घूम घूम कर उसे जन जन का विश्वास, संघर्ष और संकल्प बना दिया। अपने जीवन का प्रत्येक क्षण राष्ट्र को समर्पित करने वाले ऐसे ही महान स्वाधीनता संग्राम सेनानी थे लक्ष्मण प्रसाद दुबे। वो एक दूरदर्शी शिक्षाविद और समाज सुधारक भी थे। चूंकि उनका पूरा जीवन एक शिक्षक के रूप में बीता और अपने इस कर्तव्य को उन्होंने एक साधना माना, इसलिए वो आम जन में गुरुजी के नाम से प्रसिद्ध हुए। लक्ष्मण प्रसाद दुबे का जन्म 9 जून 1909 को दुर्ग जिले में हुआ था। ये वो समय था जब देश में राष्ट्रवाद की लहरें हिलोरें ले रही थीं। सन 1905 में बंग भंग आंदोलन की आंच से पूरा देश सुलग रहा था। ऐसे वातावरण में लक्ष्मण प्रसाद दुबे का बचपन बीत रहा था। उनकी आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्तर पर ही आरंभ हुई और शिक्षा के साथ साथ वो समाज की विषमताओं को भी देख रहे थे। शोषण और पराधीनता के प्रभाव से वो अत्यंत आहत हो जाया करते थे। विद्यार्थी जीवन से ही उनके भीतर अध्ययन के साथ साथ सामाजिक सरोकारों के प्रति गहरी रुचि थी। यही कारण है कि वो केवल पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित नहीं रहे, बल्कि समाज और राष्ट्र की परिस्थितियों को समझने का प्रयास करते रहे। फिर वो समय आया कि जब देश में महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन नई दिशा प्राप्त कर रहा था। स्वदेशी और सत्याग्रह के विचार लोगों को आकर्षित कर रहे थे। लक्ष्मण प्रसाद दुबे भी इस राष्ट्रीय चेतना से अछूते नहीं रहे। उनके मन में देश की स्वतंत्रता और समाज के उत्थान का भाव निरंतर प्रबल होता गया।

अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद वो शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। वो अध्यापन का कार्य तो करते ही थे, इसके साथ ही उन्होंने अनेक युवाओं को राष्ट्र सेवा हेतु प्रेरित किया। भिलाई में शिक्षक के रूप में कार्य करते हुए उनका संपर्क जिले के वरिष्ठ सत्याग्रही नरसिंह प्रसाद अग्रवाल से हुआ। अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में उन्होंने मद्य निषेध आंदोलन चलाया, स्वदेशी का संकल्प लिया तथा विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया। विदेशी वस्तुओं के साथ साथ उन्होंने जॉर्ज पंचम का चित्र भी जलाया। 1930 का दशक भारतीय स्वाधीनता आंदोलन का अत्यंत महत्वपूर्ण समय था, जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह आरंभ किया। इसी समय लक्ष्मण प्रसाद दुबे सक्रिय राजनीति में शामिल हुए। वो अब राष्ट्रीय आंदोलन की गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। वो जनसंपर्क संगठन निर्माण के साथ ही लोगों के भीतर राष्ट्रीय चेतना जगाने का काम करने लगे। उनका व्यक्तित्व अत्यंत शांत, सरल और कर्मठ था। वो मानते थे कि स्वतंत्रता केवल राजनीतिक परिवर्तन नहीं बल्कि समाज में जागृति और आत्मसम्मान का संचार भी है। यही कारण है कि वो शिक्षा पर अत्यधिक बल देते थे। वो विशेष रूप से नारी शिक्षा और नारी स्वतंत्रता के प्रबल पक्षधर थे। सन 1930 में जब गांधी जी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा आरंभ की, तब इस आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से हुआ। सन 1930 में जब महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के लिए दांडी यात्रा आरंभ की, तब इस आंदोलन का प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी व्यापक रूप से हुआ। चूंकि यहाँ कोई समुद्र तट नहीं था, इसलिए सविनय अवज्ञा की भावना से जुड़ते हुए ब्रिटिश शासन के अन्य दमनकारी कानूनों को चुनौती दी गई। मध्य प्रांत में जंगल सत्याग्रह आंदोलन का प्रमुख रूप बन गया। वन क्षेत्रों में रहने वाले किसानों, जनजातीय समाज के लोगों और ग्रामीणों पर अंग्रेजों ने जंगलों में चराई, लकड़ी, घास और वन उपज लेने पर अनेक प्रतिबंध लगा रखे थे। इसलिए सत्याग्रहियों ने इन कानूनों का उल्लंघन करने का निर्णय लिया। छत्तीसगढ़ का पोड़ी जंगल सत्याग्रह 1930 के जंगल सत्याग्रहों में एक महत्वपूर्ण कड़ी था। छत्तीसगढ़ में ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश वन कानूनों के विरोध में किया गया था। धमतरी के पास स्थित बालोद के ग्राम पोड़ी में हुए जंगल सत्याग्रह का आरंभ जुलाई 1930 में हुआ, जिसका नेतृत्व मुख्य रूप से नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने किया। लक्ष्मण प्रसाद दुबे चूंकि उन्हीं के मार्गदर्शन में काम कर रहे थे, इसलिए जाहिर तौर पर वो इसमें सघन रूप से सक्रिय हुए। सत्याग्रहियों ने आरक्षित वन क्षेत्र में प्रवेश किया, घास और लकड़ी एकत्र की, पशुओं को प्रतिबंधित क्षेत्रों में चराया, इस तरह वन कानूनों का सार्वजनिक रूप से उल्लंघन किया। पोड़ी सत्याग्रह की पूरी रूपरेखा तथा दस्तावेजी काम अग्रवाल जी ने लक्ष्मण प्रसाद दुबे को सौंप दिया था। सत्याग्रह से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेजों को उन्होंने गुप्त रूप से संरक्षित रखा और उसका पूरा लेखा जोखा एक रजिस्टर में दर्ज कर उसे संकलित किया। सत्याग्रह की इन सभाओं में महिलाएं भी आती थीं, जो चरखा लेकर आंदोलन का प्रतिनिधित्व करती थीं।

लक्ष्मण प्रसाद दुबे ने राष्ट्रीय चेतना के प्रसार में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वो लोगों के बीच जाकर उन्हें देश की स्थिति से अवगत कराते, स्वाधीनता आंदोलन के उद्देश्य को समझाते और राष्ट्रहित में लोगों को संगठित होने का संदेश देते। उनका मानना था कि स्वतंत्रता का संघर्ष केवल नेताओं का नहीं बल्कि जन सामान्य का संघर्ष है। सन 1942 में जब गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया तब पूरा देश नई ऊर्जा से भर उठा और एक निर्णायक लड़ाई आरंभ हुई। इस समय भी लक्ष्मण प्रसाद दुबे छत्तीसगढ़ में सक्रिय थे। वो स्वाधीनता आंदोलन और जंगल सत्याग्रह में पूरी तरह से जुटे हुए थे। उनकी गतिविधियों पर अंग्रेजी शासन की नजर रहने लगी, लेकिन नरसिंह प्रसाद अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद भी वो रुके नहीं, वो आंदोलन को हवा देते रहे। परिणाम स्वरूप लक्ष्मण प्रसाद दुबे को गिरफ्तार करने का आदेश जारी हुआ। उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दिया और भूमिगत हो गए और वन्य क्षेत्र में स्वतंत्रता आंदोलन की लौ जलाते रहे। सन 1942 से 1947 तक वो दुर्ग, रायपुर और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय रहे। 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद भी वो चुप नहीं बैठे। वो लगातार समाज सेवा के मार्ग पर चलते रहे। उनके लिए स्वाधीनता का अर्थ केवल अंग्रेजी शासन से मुक्ति नहीं था, वो एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहां शिक्षा, जागरूकता और मानवीय मूल्यों का विकास हो। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान ही उन्होंने शिक्षा के महत्व को बहुत गहराई से समझ लिया था। वो अक्सर कहा करते थे कि किसी भी राष्ट्र का वास्तविक विकास शिक्षित और जागरूक नागरिकों के माध्यम से ही संभव है। यही कारण है कि स्वतंत्रता के बाद उन्होंने किसी भी पद का लालच नहीं किया। आजादी के बाद उनका पूरा ध्यान सामाजिक जागरण और शिक्षा पर ही केंद्रित रहा। लक्ष्मण प्रसाद दुबे ने ग्रामीण अंचलों में शिक्षा के प्रसार और विद्यालयों की स्थापना की भावना को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वो मात्र एक स्वाधीनता संग्राम सेनानी नहीं थे बल्कि वो ग्रामीण शिक्षा जागरण के अग्रदूत भी थे। गुरुजी के रूप में उन्होंने गांव-गांव में शिक्षा की अलख जगाई, अनेक युवाओं को अध्यापन कार्य से जोड़ा और ग्रामीण अंचलों में विद्यालयीन शिक्षा के विस्तार की दिशा में मजबूत नींव रखने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत की आजादी, भारत का उत्थान, भारत की विजय ही उनके जीवन का अनंतिम लक्ष्य था। निस्वार्थ भाव से आजीवन देश और समाज की सेवा करते हुए उन्होंने 23 जुलाई सन 1993 को अंतिम सांस ली। नमन ऐसे महान राष्ट्र सेवी को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा सवाल है कि कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन लें, कार्यक्रम किस क्रांतिकारी पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। इसका सही जवाब है 16 जून। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से सुब्बलक्ष्मी और लखनऊ से डॉक्टर प्रियदर्शनी चक्रवर्ती। आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूरवीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

भारत की स्वतंत्रता का अमृत वृक्ष केवल उन फूलों से नहीं महका जिनकी सुगंध दूर दूर तक पहुंची, बल्कि उसकी जड़ों में अनगिनत अनाम तपस्वियों का रक्त भी समर्पित है जिससे ये फला फूला। ऐसे ही एक महान क्रांतिकारी थे सीतांशु दत्त रॉय। युगांतर दल के इस निर्भीक सेनानी ने स्वाधीनता को केवल स्वप्न नहीं अपना जीवन व्रत बनाया और इस पुण्य यात्रा में उन्होंने अनगिनत कष्ट सहे, लेकिन उनके मन में जलती क्रांति की ज्वाला कभी मंद नहीं पड़ी। सीतांशु दत्त रॉय का जन्म 1 जुलाई सन 1907 को बंगाल प्रेसिडेंसी के मैमनसिंह जिले के ढाकी नामक गांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में पड़ता है। उनके पिता का नाम शिवदत्त रॉय था। ये 20वीं शताब्दी का उषाकाल था। भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य का कठोर शासन था और बंगाल की धरती क्रांति की ज्वाला से धधक रही थी। बंग भंग आंदोलन ने लोगों को झकझोर कर जगा दिया था। स्वदेशी आंदोलन जन जन की चेतना बन चुका था। ऐसे वातावरण में सीतांशु दत्त रॉय बड़े हो रहे थे। उनके पिता स्वयं राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत व्यक्ति थे, इसलिए सीतांशु दत्त रॉय के भीतर भी स्वाभाविक रूप से राष्ट्र चेतना जागृत होने लगी। ढाका, मैमनसिंह और बारिसाल जैसे जिले गुप्त क्रांति गतिविधियों के सबसे बड़े गढ़ बन चुके थे। क्रांतिकारी दल युगांतर की गतिविधियां लगातार जारी थीं। इसी बीच सीतांशु दत्त रॉय का संपर्क युगांतर के क्रांतिकारियों से हुआ और वो युगांतर के उद्देश्य से बहुत अधिक प्रभावित हुए और इस संगठन के सक्रिय सदस्य के रूप में कार्य करने लगे। उनके भीतर केवल एक संकल्प था, संकल्प भारत की आजादी का।

युगांतर सशस्त्र क्रांति की मशाल लिए आगे बढ़ रहा था। इस दल का उद्देश्य केवल शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन नहीं था, बल्कि ये अखाड़ों के माध्यम से युवाओं को शारीरिक रूप से सशक्त बनाता था। इतना ही नहीं, यहां युवाओं को हथियारों का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। ये संगठन क्रूर ब्रिटिश अधिकारियों को अपना निशाना बनाता था। उन दिनों अंग्रेजी शासन की खुफिया पुलिस संगठन की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखती थी। क्रांतिकारियों की एक छोटी सी भूल भी उनके आजीवन कारावास का कारण बन सकती थी। लेकिन भारत की स्वाधीनता का स्वप्न देखने वाले क्रांतिकारियों के मन में किसी भी बात का भय नहीं था। सीतांशु दत्त रॉय ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी निर्भीक होकर क्रांतिकारी गतिविधियों में संलग्न रहा करते थे। वो मैमन सिंह, नेत्रकोना और किशोरगंज के क्षेत्रों में संगठन का विस्तार करने में जुट गए। वो कभी एक स्थान से दूसरे स्थान तक गुप्त संदेश पहुंचाते, कभी क्रांतिकारियों के लिए सुरक्षित ठिकाने की व्यवस्था करते। पुलिस की निगरानी के बीच क्रांतिकारियों तक हथियार पहुंचाना एक कठिन और चुनौतीपूर्ण कार्य था। सीतांशु दत्त रॉय इस काम को भी अत्यंत चतुराई और सतर्कता से अंजाम देते। अत्याचारी अंग्रेज अधिकारियों की वध की योजनाओं में वो इन अधिकारियों की गतिविधियों पर नजर रखकर आवश्यक सूचना दल तक पहुंचाया करते थे। इतना ही नहीं, वो युवाओं से बातें करते, उन्हें युगांतर का उद्देश्य बताकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम में शामिल होने के लिए प्रेरित करते, उन्हें दल से जोड़ते। ये सारे काम तलवार की धार पर चलने जैसे थे, लेकिन ये सभी जोखिमपूर्ण दायित्व वो पूरी निष्ठा से निभाने में जुटे रहते। इसी बीच सन 1930 में मास्टर सूर्यसेन के नेतृत्व में चटगांव शस्त्रागार पर हमला हुआ। इस घटना ने अंग्रेजी शासन की नींद उड़ाकर रख दी। ब्रिटिश सरकार ने बंगाल के क्रांतिकारियों पर अभूतपूर्व दमन चक्र चलाया। अंग्रेजों का गुप्तचर विभाग अब और अधिक चौकस और सक्रिय हो गया था। युगांतर के अनेक क्रांतिकारियों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी, जिनमें सीतांशु दत्त रॉय का नाम भी शामिल था। बिना मुकदमे के गिरफ्तारी, अनिश्चितकालीन नजरबंदी और यातनाएं अंग्रेजी शासन की नीति बन चुकी थी। पुलिस ने बंगाल क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट यानी BCLA के अंतर्गत सीतांशु दत्त रॉय को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन उनके हौसले अब भी बुलंद थे।

पराकाष्ठा थी। हिजड़ी नजरबंदी शिविर की स्थापना सन 1930 में इसी उद्देश्य से की गई थी कि स्वाधीनता संग्राम सेनानियों और क्रांतिकारियों को बिना मुकदमे के यहां कैद किया जा सके तथा उन्हें प्रताड़ित किया जा सके। ये वही जेल थी जहां निहत थे राजनीतिक बंदियों पर ब्रिटिश प्रहरियों ने गोली चला दी थी और संतोष कुमार मित्रा और तारकेश्वर सेन गुप्ता जैसे क्रांतिकारी शहीद हो गए थे। इसी जेल में अब सीतांशु दत्त रॉय कैद थे। उन्होंने यहां असीम शारीरिक यातनाएं सही और अपने साथी क्रांतिकारियों के साहस को निकट से देखा। यहां दी गई हर यातना उनके संकल्प को और दृढ़ करती चली गई। इसी दौरान ब्रिटिश सरकार ने उन पर एक और गंभीर आरोप लगाया। मैमन सिंह के अत्याचारी जिला मजिस्ट्रेट ग्राहम पर क्रांतिकारियों ने जानलेवा हमला किया था। इस हमले में सीतांशु दत्त रॉय को प्रमुख षड्यंत्रकारी बताया गया। आरोप लगाया गया कि उन्होंने इस घटना के लिए हथियार उपलब्ध कराए, योजना बनाई तथा हमले के सूत्रधारों के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन पर मुकदमा चला। नेत्रकोना की विशेष औपनिवेशिक अदालत में उन्हें प्रस्तुत किया गया। अंग्रेज अधिकारी चाहते थे कि सीतांशु दत्त रॉय अपने साथियों के नाम उजागर कर दें। उनसे बार बार पूछताछ हुई, प्रलोभन दिए गए, दबाव भी बनाया गया, लेकिन वो अडिग रहे। उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। अंततः अदालत ने उन्हें 6 वर्ष कठोर कारावास की सजा सुनाई और उनका मनोबल तोड़ने के लिए अंडमान की सेलुलर जेल भेज दिया। यहां की एकांत कोठरी, अल्प भोजन और अमानवीय श्रम के बीच भी उनका संकल्प टूटा नहीं। जब अंडमान की जेल में 24 जुलाई सन 1937 को ऐतिहासिक भूख हड़ताल शुरू हुई तो सीतांशु दत्त रॉय भी इसमें शामिल हुए। कैदियों की मांग थी कि उन्हें राजनीतिक बंदी का दर्जा मिले, अमानवीय व्यवहार बंद हो और उन्हें भारत की मुख्य भूमि में स्थानांतरित कर दिया जाए। इस भूख हड़ताल ने ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। गांधी जी, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर तथा अन्य नेताओं ने हस्तक्षेप किया। सरकार झुकी तथा कैदियों की वापसी की प्रक्रिया शुरू हुई। सीतांशु दत्त रॉय को भी भारत वापस लाया गया और 1938 में वो रिहा हुए। रिहा होने के बाद भी वो शांत नहीं बैठे। भारत छोड़ो आंदोलन में युगांतर और अनुशीलन समिति के क्रांतिकारी भूमिगत रहकर इसमें शामिल हुए। सीतांशु दत्त रॉय को सुरक्षा हेतु खतरा मानते हुए पुनः नजरबंद कर दिया गया था। अंततः देश आजाद हुआ और बंटवारे में उनका गृह जिला मैमन सिंह भारत से अलग हुआ और वो पश्चिम बंगाल आ गए। देश की आजादी के बाद किसी भी प्रकार के राजनीतिक लाभ या पद की लालसा से दूर उन्होंने एक गुमनाम और सादगीपूर्ण जीवन व्यतीत किया। नमन ऐसे महान देशभक्त को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। सवाल एक बार फिर सुन ले, कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।

0: वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, हमारा सवाल था कि कार्यक्रम किस व्यक्तित्व पर केंद्रित था। इसका सही जवाब है डॉक्टर अचंता लक्ष्मीपति। और सही जवाब भेजने वाले हमारे इस बार के दो भाग्यशाली श्रोता हैं, दिल्ली से नरेंद्र देव पांडे और भोपाल से अनीता सक्सेना। आप दोनों ही श्रोताओं को बहुत बहुत बधाई। हम आपको भेज रहे हैं आजादी के दुर्लभ तरानों पर केंद्रित जन गर्जे श्रृंखला से एक ऑडियो एल्बम और आजादी के रणबांकुरों का एक छाया चित्र।
1: भारतीय सेना के शूर वीरों को समर्पित शौर्य स्मारक भोपाल।
2: शौर्य स्मारक, शहीदों की राष्ट्र सेवा से प्रेरित जीवन यात्रा का रूपायन।
1: जीवन के विभिन्न पड़ावों पर अदम्य साहस से जूझते मातृभूमि की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान करते शूर वीरों की शौर्य गाथा का चित्रांकन।
2: हर शाम 6 बजे से भारतीय जल, थल और वायु सेना पर लघु फिल्मों का प्रदर्शन और भी बहुत कुछ।
1: शौर्य स्मारक भोपाल, समय दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक। आप सब परिवार सादर आमंत्रित हैं। ध्यान रहे, बुधवार

ऐसे घने जंगलों के बीच कोई शांत सी नदी चुपचाप बहती हुई जीवन को सींचती रहती है, जैसे अंधेरी रात में दूर कहीं टिमटिमाता दीपक दिशाओं को भरोसा देता है। वैसे ही कुछ व्यक्तित्व अपने समय से आगे बढ़कर समाज की चेतना में उजास भरते हैं। ऐसी ही एक दीपशिखा का नाम है मंगेई गोमांगो, जिन्होंने स्वयं जलकर अपने जनजातीय समाज की ज्ञान परंपरा, सभ्यता और संस्कृति को संरक्षित कर उसे उजालों का संसार सौंपा। उनकी जीवन यात्रा ये बताती है कि वो केवल एक भाषाविद नहीं थे, बल्कि वो एक महान मानवतावादी थे, जिन्होंने सुदूर वनों में रहकर अपनी तपस्या और लगन से अपने समाज को एक नई लिपि दी, अक्षरों की रोशनी दी और उन्हें आत्मगौरव के साथ जीना सिखाया। मंगेई गोमांगो का जन्म 16 जून 1916 को ओडिशा के रायगढ़ जिले के मरिचगुड़ा नामक एक सुदूर पहाड़ी गांव में हुआ था। घने जंगलों और जलप्रपातों से समृद्ध प्रकृति की गोद में बसे इस क्षेत्र में सोरा जनजाति की घनी आबादी थी। मंगेई गोमांगो का जन्म इसी सोरा समाज के एक अत्यंत संभ्रांत और कुलीन परिवार में हुआ था। सोरा समाज में गोमांगो का अर्थ होता है मुखिया या प्रधान। उनके पूर्वज और पिता गांव के मार्गदर्शक थे। परिवार में आध्यात्मिक चेतना और जड़ी बूटियों का पारंपरिक ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी बह रहा था। प्राकृतिक सौंदर्य के बीच फले फूले सोरा जनजातीय समाज में एक गहरा सन्नाटा भी था। आधुनिक शिक्षा से वो सभी बहुत दूर थे। युवा मंगेई ने देखा कि उनके समाज की अपनी एक समृद्ध और संगीतमय भाषा तो है, लेकिन लिपि के अभाव में उनका इतिहास, उनके लोकगीत और औषधीय ज्ञान मौखिक परंपरा में ही हैं, जो समय के साथ विलुप्त हो रहे हैं। इस भाषाई पिछड़ेपन और बाहरी दुनिया के शोषण ने उनके भीतर एक वैचारिक क्रांति को जन्म दिया।

सन 1936 के शुरुआती महीनों में मात्र 20 वर्ष की आयु में मंगेई गोमांगो ने सोरा संस्कृति के संरक्षण के लिए एक कठिन मार्ग चुना। वो मरिचगुड़ा के पास स्थित एक पवित्र पहाड़ी में एकांतवास के लिए चले गए। मन में अपनी भाषा को एक स्वरूप देने का विचार था और इसी विचार के साथ वो कठिन साधना और ध्यान में लीन हो गए। बताया जाता है कि 18 जून सन 1936 की सुबह ध्यान की गहरी अवस्था में उन्हें अंतः प्रेरणा हुई। उन्होंने महसूस किया कि हवा की सरसराहट, पक्षियों की चहचहाहट कुछ विशिष्ट आकृतियों में बदल रही है। उन्होंने उन आकृतियों को ताड़ के पत्तों और पत्थरों पर उकेरा। इस तरह 24 अक्षर उनके पास थे। इसे सोरांग सोमपेंग लिपि का नाम दिया गया। यूं सोरा भाषा की ध्वनि को एक आकार मिला और ये लिपि उच्चारण की दृष्टि से बहुत सटीक और वैज्ञानिक थी। अक्षरों का ये अवतरण केवल एक लिपि का जन्म नहीं था, बल्कि ये सोरा अस्मिता का पुनर्जन्म था। उनके इस महान आविष्कार को समाज में फैलाने के लिए सबसे पहले उनके बेटे और दामाद उनके शिष्य बने। लेकिन असली चुनौती सामने थी, इस नई लिपि को जन जन तक पहुंचाना था। लेकिन मंगेई गोमांगो केवल एक विचारक नहीं थे, वो एक कर्मयोगी थे। उन्होंने एक ऐसा आंदोलन चलाया जिसने सोरा समाज की तस्वीर ही बदल दी। उन्होंने मरिचगुड़ा के साथ साथ आसपास के दर्जनों गांवों में अक्षर स्कूल खोले। चूंकि दिन में सोरा समुदाय के लोग खेतीबाड़ी और जंगलों में काम करने जाते थे, इसलिए ये स्कूल सूर्यास्त के बाद रात्रि पाठशालाओं के रूप में चलते थे। मंगेई गोमांगो हाथ में जलती हुई मशाल और ताड़ के पत्तों पर लिखी वर्णमाला लेकर गांव गांव जाते और बच्चों, महिलाओं, पुरुषों, वृद्धों को अपनी मातृभाषा में लिखना पढ़ना सिखाते थे। उनका ये रास्ता आसान नहीं था। उन्हें दो मोर्चों पर संघर्ष करना पड़ा। एक तरफ ब्रिटिश प्रशासन और रूढ़िवादी तत्व इस भाषाई साक्षरता को संदेह की दृष्टि से देख रहा था, तो दूसरी तरफ खुद सोरा समाज के कुछ लोग इसका विरोध कर रहे थे। ये लोग इसे एक जादुई और अस्वाभाविक घटना के रूप में रेखांकित कर रहे थे। लेकिन मंगेई गोमांगो ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने तर्कों, अपनी विनम्रता और दृढ़ संकल्प से सबको झुका दिया। उनका उद्देश्य केवल एक नई लिपि का प्रचार प्रसार नहीं था, वो सोरा समाज के नैतिक और सामाजिक ढांचे को भी बदलना चाहते थे। उन्होंने देखा कि ताड़ी और मदिरा के सेवन ने सोरा समाज को खोखला कर दिया है। इसके लिए उन्होंने एक व्यापक व्यसन मुक्ति अभियान चलाया। उन्होंने अंधविश्वास, चिकित्सा की जगह तंत्र मंत्र और पशुओं की बलि देने की कुप्रथाओं के खिलाफ तार्किक तथा आध्यात्मिक चेतना का युद्ध लड़ा। उनके इस असाधारण ज्ञान, नैतिक आचरण, समाज सुधार और निस्वार्थ सेवा के भाव को देखकर सोरा समाज और अन्य विद्वानों ने उन्हें अत्यंत आदर के साथ पंडिता की उपाधि से विभूषित किया। लेकिन उनकी ये साधना लगातार जारी रही।

पंडिता मंगेई गोमांगो का आयुर्वेद और पारंपरिक जड़ी बूटियों का ज्ञान भी अद्भुत था। उन्होंने रायगढ़ा, कोरापुट और नियमगिरी की पहाड़ियों के घने जंगलों में भ्रमण करके सैकड़ों दुर्लभ जड़ी बूटियों की पहचान की। उन्होंने इनके औषधीय गुणों और मिश्रण की विधियों को अपनी लिपि में लिखकर इस ज्ञान को संरक्षित भी किया। उन्होंने अपने निवास स्थान मरिचगुड़ा को एक चिकित्सा केंद्र में बदल दिया। उन दिनों ऐसे सुदूर क्षेत्रों में अस्पताल या डॉक्टर नहीं होते थे। उन्होंने मलेरिया, गंभीर त्वचा रोग, सर्पदंश और पेट की घातक बीमारियों का सफल इलाज किया। और विशेष बात ये कि उनका ये काम पूरी तरह निशुल्क और सेवा भाव से प्रेरित था। इसके साथ ही उन्होंने सोरा जनजाति के बौद्धिक पोषण पर भी ध्यान दिया तथा साहित्य रचना की। सबसे पहले तो उन्होंने सोरांग सोमपेंग लिपि की पहली प्रामाणिक वर्णमाला की पुस्तक और बुनियादी व्याकरण की रचना की, ताकि भाषा की शुद्धता हमेशा बनी रहे। इसके साथ ही उन्होंने सोरा भाषा में उच्च कोटि के भजनों और कविताओं की रचना की। इन रचनाओं में उन्होंने निराकार ईश्वर की स्तुति, प्रकृति के प्रति कृतज्ञता और मानवीय मूल्यों को पिरोया। उनके द्वारा रचित प्रार्थनाएं आज भी सोरा समाज के विद्यालयों और मंचों पर अत्यंत श्रद्धा के साथ गाई जाती हैं। सोरा समाज में उनके पूर्वजों का इतिहास, उनके शौर्य की गाथाएं और अनगिनत लोक कथाएं प्रचलित थीं। ये सारी धरोहर मौखिक परंपरा में तो मौजूद थी, लेकिन लिखित रूप से ये कहीं भी उपलब्ध नहीं थी। मंगेई गोमांगो ने सोरांग सोमपेंग लिपि में इसे लिखकर संरक्षित किया। निरंतर शारीरिक श्रम, गांव-गांव की कठिन यात्राएं और ढलती हुई उम्र, इन सारी बातों ने उनके स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव डाला। उनका स्वास्थ्य कमजोर होने लगा और वो बिस्तर पर आ गए। लेकिन अब भी वो थके नहीं, रुके नहीं। वो बिस्तर पर लेटे लेटे भी मानसिक रूप से सक्रिय थे। वो अपने बेटों, दामाद और अन्य युवाओं को अपने पास बुलाते और सोरांग सोमपेंग लिपि के प्रचार प्रसार के लिए रणनीतियों पर चर्चा करते। इसी तरह सक्रिय रहते हुए सन 1980 में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके द्वारा बोया गया बीज आज वटवृक्ष बन चुका है। सरकार और भाषाविदों ने सोरांग सोमपेंग लिपि की वैज्ञानिकता को स्वीकार किया और आज भी प्राथमिक शालाओं में सोरा बच्चों की शिक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके साथ ही इसे आज डिजिटल फॉन्ट में परिवर्तित करके डिजिटल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया गया है और आज भी सोरा समाज के लोग 18 जून को लिपि दिवस के रूप में मनाते हैं। नमन ऐसी विलक्षण विभूति को।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वतन का राग, मार्गदर्शन शिवशेखर शुक्ल, संकल्पना संतोष कुमार वर्मा और संकल्पना संयोजन अदिति गौड़, प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश की। और दोस्तों, अब बारी है आज के सवाल की। हमारा आज का सवाल है कि मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। सवाल एक बार फिर सुन ले, मंगेई गोमांगो का जन्म कब हुआ था। आपके जवाब 10 दिनों के भीतर हमारे पास पहुंच जाने चाहिए। जवाब भेजने के लिए हमारा ईमेल एड्रेस है watankaraag@gmail.com और radioazadhind@gmail.com। सही जवाब के साथ आप अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना ईमेल एड्रेस अवश्य लिखें।